इस गाने को गाया है और कंपोज किया है विशाल मिश्रा ने और लिरिक्स लिखे हैं राजशेखर ने। फिल्म टॉक्सिक से सुनते रहिए तबाही ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

कहा है टाइम इज मनी, शत प्रतिशत सही कहा है। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, वणक्कम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आफरीन, आपके साथ राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और वक्त आजकल के जिंदगी में, दुनिया में इतनी अहम चीज़ हो गई है, मतलब सही है जिसने भी कहा है टाइम इज़ मनी इज़ एब्सोल्युटली राइट। और मुझे बताइए, ऐसे कितने ही लोग हैं आपके ज़िंदगी में जो बेवक्त जब आपको ज़रूरत हो आपके लिए बिल्कुल हाजिर हो जाए, गिन सकते हो ना आप उंगली पर। आई एम श्योर ऐसे लोग ना जिंदगी में बहुत कम ही होते हैं। तो अगर आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपके लिए उनके पूरे बिजी डे रूटीन से, शेड्यूल से, जिंदगी से आपके लिए कुछ वक्त निकाल सकते हैं, तो बॉस यू आर एब्सोल्युटली लकी माय फ्रेंड। तो बस ऐसे लोगों को ना हमेशा से अपने पास रखना, अपने करीब रखना, और उनके लिए भी ना हमेशा अपनी जिंदगी से कुछ ना कुछ वक्त हमेशा निकाल देना। मैं हूँ आफरीन, आपके साथ इस खूबसूरत ख्याल के साथ शो की शुरुआत करते हैं राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और मेरे पास तो आपके लिए वक्त ही वक्त है, स्पेशली अगले 4 घंटे अरे बहुत बातें करेंगे और बहुत टाइम स्पेंड करेंगे राइट हियर ऑन दिस शो मिर्ची मॉर्निंग्स ऑन 89.6 मिर्ची 1। इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Murga, murga. La viva la murga. Mirchi, murga.
2: Hello.
3: Hello, madam. Good evening.
2: Hi.
3: Bank se bol le ho na, hamari nayi scheme hai ye. मैडम ताजी स्कीम है, बढ़िया स्कीम है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल कम।
2: तो सब्जी बेच रहा है या लोन के लिए?
3: पहले सब्जी बेचता था।
2: अगर अगली बार फोन आ गया ना।
3: मैडम तमीज से बात करो वरना यहीं से चपेट मारूंगा सारे दांत बात कर।
2: हेलो
3: मैडम, अगर ये स्कीम लोगी तो धनिया साथ फ्री दे दूंगा वे।
4: प्रीति, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि लड़कियों से ज्यादा पंगे लेने नहीं चाहिए, अपने ऊपर पड़ जाती है यार। आप रेडियो मिर्ची में इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? आपका मुर्गा बन गया
3: मेरा, आपका तो मुर्गा बन गया है।
4: प्रीति, ये जो बीप बीप हो रहा था ये बीप हटा दूं मैं एक बार दिल्ली को सुना दूं?
2: नहीं,
4: से सॉरी,
2: सॉरी नवीन, सॉरी।
4: प्यार से बोल दीजिए कुकड़ो को।
2: कुकड़ू को।
5: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक।
6: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड। She is coming for the very first time.
7: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar. This 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah.

0: वेल दर्शन रावल की आवाज असीस कौर का साथ और जुड़ गई है आपके साथ। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, मिर्ची मॉर्निंग्स पर सिंपली आफरीन है आपके साथ। एंड सुबह आते ही आप लोगों के गुड मॉर्निंग मैसेजेस देखते ही यार दिल एकदम से लाइक गार्डन गार्डन सा हो जाता है। सो लेट मी टेल यू गुड मॉर्निंग टू ईच एंड एवरीवन जिन्होंने यहाँ पर मैसेज किया है। जैसे गुड मॉर्निंग आरजे आफरीन, हैप्पीनेस इज लाइक अ रेडियो स्टेशन, इट ब्रॉडकास्ट ऑल द टाइम, यू जस्ट हैव टू लर्न हाउ टू ट्यून योर लाइफ एंड रिसीव योर फेवरेट चैनल। हाउ ब्यूटिफुल थॉट इज दिस इमरान। वैसे अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग आफरीन, हैव अ वंडरफुल एंड हैप्पी डे, खालिद का भी यही कहना है। Then I have और कौन है ये, कौन है कौन है, अपना नाम ज़रूर बताइएगा। नाज़नीन जी का मैसेज है गुड मॉर्निंग कहते हुए, एंड गुड मॉर्निंग आफरीन, हैव अ नाइस डे। अलीशान का मैसेज है, अलीशान है ना ये, हाँ शायद अपना नाम ना अगली बार से लिख लिया करे। सो वेल 5000186 इज माई व्हाट्सएप नंबर, यहाँ पर आकर हम गुड मॉर्निंग शुड मॉर्निंग कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले ज़रा वेदर का हाल चाल देखे।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
2: वेदर अपडेट।
0: वेल देखो वेदर ये कह रहा है कि आज का जो मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा वो 41 रहेगा, 33 मिनिमम रहेगा, लेकिन एक्चुअल फील्स जो है वो तो 48 के आसपास ही रहेंगे। लेकिन ह्यूमिडिटी जो है बहुत सा अभी ही 73% दिखा रहा है, विच इज लाइक अ ह्यूज ह्यूज ह्यूज डिफरेंस फ्रॉम येस्टरडे एंड बिफोर, के बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट ये कहा जा रहा है कि अगले दो दिन, मतलब ये कल से लेके परसों से ही स्टार्ट हो गया था, इनफैक्ट कतर में ह्यूमिडिटी अपने चरम पर रहने वाली है, जिसकी वजह से ना विजिबिलिटी जो है वो भी कम हो जाएगी। सो ऐसे में क्या है ना, आपको बिल्कुल सेफली ड्राइव करना है जहां पर भी आप जा रहे हैं। जल्दी हमें बिल्कुल भी नहीं है, है? नहीं है ना फिलहाल जल्दी है अगले गाने की। बादशाह पायल देव की आवाज में ये अगला गाना, और उसके तुरंत बाद लेकर आती हूँ कोई 90s का मजेदार गाना राइट हियर माइक से दिल तक आफरीन के साथ ऑन मिर्ची थॉट।
3: चले जब तू लटक मटक, लौंडों के दिल पटक पटक, सांसें जाए अटक अटक, आता माझी सटक सटक, बम तेरा गुदे खाए, कमर पे तेरी बटरफ्लाई, बॉडी तेरी मक्खन जैसे, खाने में बस तू बटर खाए। बेबी टिकट टिकट काटू तेरी टिकट टिकट, खेलता नहीं क्रिकेट विकेट, पर ले लूं तेरी विकेट विकेट।

0: सा ढंग तेरा मुझसे चोरी चोरी बातें करे अंग अंग तेरा तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा लगे मीठी जैसे शक्कर शक्कर आजा चला ले चक्कर चक्कर बाकी के लौंडे पकड़ पकड़ I am the baddest motherfucker
1: yeah.

0: Hollywood, Bollywood, Boulder.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: अर्जुन, आलिया के बारे में एक ऐसी बात बताओ जो हमें नहीं पता।
3: मैं आपको एक बात बताऊं, लोगों ने मुझे फोन करके बोला प्लीज कॉन्ग्रेचुलेट आलिया भट्ट फॉर हाईवे। तो आई सेड मेरी भी पिक्चर लगी थी पिछले हफ्ते गुंडे। हाँ, वो है, पर हाईवे में क्या काम किया लड़की ने?
4: पर अर्जुन ने तो हाईवे देखी नहीं है,
3: जैसे
4: तो
3: आलिया ने गुंडे देखी नहीं है। शी डजंट लाइक टू बी एंटरटेन्ड। और एक्चुअली सच बात बताऊं तो जो मैंने उसे सिखाया, फाइनली शी इज बीन एबल टू इनकल्केट इट इन हर डेली लाइफ। और इतना डिसिप्लिन लाया है इसकी जिंदगी में मैंने, बात कर करके समझा के इसके दिमाग में जो चीजें मैंने घुसाई है ताकि ये जिंदगी भर याद रख सके कि एक्टिंग इज प्राइमरी एंड इम्पोर्टेंट।
2: सम रियली इम्पोर्टेंट लाइफ लेसन अर्जुन कपूर। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Boulder.
1: Only on Mirchi, it's hot.

सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज में ये खूबसूरत सा गाना फ्रॉम द मूवी रेफ्यूजी। और बॉलीवुड में ये वाली लाइन ना बिल्कुल अप्लाई नहीं होती, दैट फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक सिंपली आफरीन को आप सुन रहे हो राइटर और मिर्ची मॉर्निंग। और अभी जो गाना अभी आपने सुना रेफ्यूजी मूवी का था, जहां करीना कपूर और अभिषेक बच्चन ये दो स्टार किड्स लॉन्च हुए थे एंड जबरदस्त हाइप था, लेकिन फिल्म जो थी बॉक्स ऑफिस पर बिल्कुल एवरेज रही, एवरेज से भी मेरे ख्याल से कम ही कह सकते हैं। एंड देखिए, इस एक फिल्म ने दोनों का फ्यूचर डिसाइड नहीं किया, राइट? मतलब आफ्टर दिस मूवी हु कुड हैव सेड कि वेयर करीना कपूर का करियर कहां उन्हें लेकर गया। वैसे बॉलीवुड में ये लिस्ट काफी इंटरेस्टिंग है, रणबीर कपूर और सोनम कपूर, इनका भी जो डेब्यू हुआ था इन द मूवी सांवरिया, इवन दैट फेल फ्लैट आई वुड से। क्या आपको सही में लगता है कि बिकॉज ऑफ नेपोटिज्म के इनके फर्स्ट फ्लॉप के बजाय भी इन्हें कई सारी मूवीज मिलती रही और इनका करियर कहीं ना कहीं बचाने के लिए पूरा का पूरा बॉलीवुड खड़ा हो जाता है, एंड दैट डज नॉट अप्लाई टू एनी आउटसाइडर? ऐसा होता है क्या? वैसे ये जो लिस्ट है ना, डिजास्टर वाली लिस्ट, काफी लंबी है। इनफैक्ट श्रद्धा कपूर की भी फर्स्ट मूवी थी तीन पत्ती, वो भी नहीं चली। इनफैक्ट माधुरी दीक्षित, इनका भी डेब्यू अबुद If I'm right, हाँ ऐसे ही कुछ है, ये भी कोई खास कमाल नहीं कर पाया। So perhaps Bollywood का असली रूल यही होता है कि it's not where you start, it's what you do after the start. Well, talking about श्रद्धा कपूर, इनका जो करियर है कहाँ से टेक ऑफ हुआ था, दैट वॉज फ्रॉम आशिकी 2, जहाँ आदित्य रॉय कपूर के भी डेब्यू मूवी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ एज अ मेन लीड डेब्यू मूवी ये जरूर थी। जहाँ आशिकी 2 की हमने बात की है, अंकित तिवारी की आवाज में ये गाना तो बनता ही है बॉस, राइट? ऑन मिर्ची माइक से दिल तक आफरीन के साथ, इट्स हॉट।

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन
1: जी। बिल्कुल, बताइए सवाल क्या है।
0: कॉल सेंटर वालों से कंटाल गया हूँ, पूरे दिन लोन के लिए इतने कॉल आते हैं, क्या करूँ।
1: अरे तो सिंपल है ना, लोन भर दे, फिर फोन ही नहीं आएगा।

0: Mirchi Mornings.
1: Mirchi Mornings with Mirchi Afreen. It's hot.
2: 89.6
3: Mirchi One. It's hot.
4: वेल मिर्ची मॉर्निंग्स पर आफरीन है आपके साथ और मिर्ची घड़ी का इशारा हो रहा है सुबह के 7 बजे की तरफ. अगला गाना संजय राठौर की आवाज में राइट अराउंड मिर्ची इट्स हॉट.
5: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर.

बलदेव नेगी पलक मुशाल की आवाज में ये गाना राइटेड ऑन मिर्ची आपने सुना ऑन 89.6 मिर्ची वन। और देखते ही यहाँ पर हमारे बच्चों की स्कूल की छुट्टियां खत्म होने के करीब है। यस, इट इज ऑलरेडी 18th ऑफ अगस्त एंड आई एम श्योर मुझे सुनने वाले बहुत सारे लोग ऐसे हैं या फिर ऑलरेडी स्कूल पहुंच चुके होंगे। टीचर्स जो है कुछ स्कूल्स की उनके स्कूल्स ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। मेरे ख्याल से संडे से शुरू हो चुके थे, किसी के आज से शुरू हो रही है एंड देन दे आर गोना गो एंड प्रिपेयर फॉर द न्यू एकेडमिक ईयर। मतलब इंडियन स्कूल्स की अगर बात करें तो हाफ टर्म था, और अगर दूसरे करिकुलम स्कूल्स की बात करें तो न्यू ईयर शुरू होने वाला है। एंड ऑफ कोर्स अब एट दिस पॉइंट मुझे मेरे बचपन के दिन याद आते हैं जब हमारा न्यू ईयर शुरू होने वाला रहता था। द खुशबू ऑफ न्यू बुक्स एंड द एक्साइटमेंट ऑफ आ न्यू बैग, आ न्यू टिफिन, आ न्यू बॉटल, मतलब एक अलग ही एक्साइटमेंट रहता। एंड सबसे बड़ी एक्साइटमेंट क्या होती थी पता है, कि हमारे जो प्रीवियस क्लास के फ्रेंड्स हैं वो ये क्लास में हमारे साथ होंगे या नहीं। सी बैक दोज डेज के कहाँ पता चलता ना, थोड़ी टेक्नोलॉजी थी कि पहले ही आपके स्कूल के पोर्टल पर आपके ग्रेड्स जो है, मतलब जो नेक्स्ट क्लासेस है वो अनाउंस हो जाए। नो, यू जस्ट हैड टू वॉक इनटू द क्लास एंड लुक अराउंड के अरे मेरे फ्रेंड है, नहीं है, कौन है, क्या है। आई मीन गुड ओल्ड डेज, आई थिंक सो। अभी बहुत सारी चीजें उसमें से जो एक्साइटमेंट था वो सारी चीजें अब ये अब के ज़माने में नहीं है। किड्स ऑल नो कि नहीं नहीं हमने पोर्टल पर चेक कर लिया, ये हमारे क्लास में है, ये हमारे क्लास में नहीं है। एंड डू यू रियली थिंक जो अटैचमेंट हमें बचपन में हमारे दोस्तों के साथ में था, अभी के बच्चे मुझे ऐसा लगता है बहुत इजीली मूव ऑन कर लेते हैं कि हाँ प्रीवियस क्लास में ये थे, अब नहीं है, ओके फाइन, वील गो ऑन एंड वील मेक न्यू फ्रेंड्स और एल्स वील जस्ट इन्जॉय। ऐसा मुझे लगता है, क्या ये सच है कहीं ना कहीं? पेरेंट्स डू शेयर दिस विद मी 5000196 एंड आई एम श्योर तैयारियां तो बच्चों की जोरों शोरों से चल रही होगी अब स्कूल की। हमारे दोस्तों के साथ में था, अभी के बच्चे मुझे ऐसा लगता है बहुत इजीली मूव ऑन कर लेते हैं कि हाँ प्रीवियस क्लास में ये थे, अब नहीं है, ओके फाइन, वील गो ऑन एंड वील मेक न्यू फ्रेंड्स और एल्स वील जस्ट इन्जॉय। ऐसा मुझे लगता है, क्या ये सच है कहीं ना कहीं? पेरेंट्स डू शेयर दिस विद मी 5000196 एंड आई एम श्योर तैयारियां तो बच्चों की जोरों शोरों से चल रही

0: Mirchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Na vietva la burka. Mirchi, burka.
2: Hello.
3: Hi. ये पे आपकी फ्री कॉल है। अगर आप अकेले बैठे हुए हैं और चाहते हैं किसी को अपना बनाना, किसी से अभी बात करना, तो हैश दबाइए। कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल उस तक पहुंचा रहे हैं जिससे आप बात करना चाहते हैं।
4: हेलो।
2: हेलो,
4: कौन बोल रही हैं
2: आप? कौन बोल रही हैं?
4: बोल नहीं रही हूँ, मैं बोल रहा हूँ यार, मेरी लड़की से बात करानी थी, फोन आया था मेरे पास।
2: तो भाई मेरे पास भी तो फोन आया था।
4: तो यार आप कहाँ से बीच में आ गए? वो कह रहे थे लाइफ पार्टनर, मैं लड़की से बात करना चाह रहा हूँ।
2: टाइम पे दोनों को भी, आपको भी करा होगा फोन, उन्होंने मुझे भी करा होगा, तो मैंने भी मिला दिया।
4: मैं क्या पागल हूँ यार, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, मुझे भी तो टाइम पास करना है, लड़की का इंतजार कर रहा था मैं यार। मेरे पास फोन आया था, आप अपनी चला रहे हैं, मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ क्या?
2: ये तो वहाँ से मेरे पास, अरे यार जैसे आपके पास आया कि अगर आप खाली बैठे,
4: हो सकता है, हो सकता है।
3: हाय, आप दोनों की कॉल गलती से मिल गई है, कृपया लाइन होल्ड रखें, आप दोनों को अपने अपने पार्टनर तक पहुंचा दिया जाएगा।
4: हेलो।
2: हेलो,
4: कौन बोल रही? अरे भाई यार, मैं लड़की के चक्कर में यार, कहां से आ रहे हो यार बीच में? मैं मेरी लाइन, मैं कहां से लाइन पे आ रहा हूँ यार? तू लाइन में आ रहा है? लाइन में आ रहा हूँ। अच्छा, एक घंटे से मैं एक लड़की से बात करने के लिए चाह रहा हूँ यार, तू मुझ पर चिल्ला रहा है, मेरे पास कॉल आई है यहाँ पे। हाँ तो दो मिनट रुक, तू कर ले, तेरा कुछ जा रहा
2: है
4: या बदतमीजी? बदतमीजी मत कर, तू बड़ा शरीफ आदमी है जो यहाँ पे इस लाइन में आया हुआ है, इस सर्विस में।
3: हाय, कृपया करके लड़ाई बंद करें, अब आपकी लास्ट फाइनल कॉल, हम उस लड़की तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन लाइन तक पहुँचने के लिए आप कहिए मेरे साथ कुकड़ू कू। सर, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दुनिया आपको सुन रही है, कम से कम इतनी तमीज होनी चाहिए यार, आप लड़की से बात करना चाह रहे हैं, किस तरह का टाइम पास करना चाह रहे थे?
2: तो वो आ रहा जा रहा, मुझे लग रहा भाई मुझे भी टाइम पास करना था, मुझे

देखिए, साल 2027 आपको दूर लग रहा होगा, लेकिन अगर आपने हज की नियत की है तो ये इतना भी दूर नहीं है। क्योंकि हमारे कतर में तैयारियां ऑलरेडी शुरू हो गई है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को। और ये न्यूज पढ़ के मुझे थोड़ा सा अपना हज प्रेप टाइम याद आ गया है, बिकॉज इसी साल 2026 में आई वाज ऑन दिस ब्यूटीफुल सेक्रेट जर्नी माई सेल्फ। तो अब आई नो एग्जैक्टली हाउ दिस फीलिंग इज जब नियत हो चुकी है और धीरे धीरे प्रेपरेशन जो है हमारी स्टार्ट होती है। जो भी हज 2027 की तैयारी कर रहे हैं, अल्लाह आप सबका सफर आसान करे और हज कबूल फरमाए। लेकिन अब काम की इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो PHCC ने हज 2027 के लिए मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट्स इशू करना स्टार्ट कर दिए हैं ऑलरेडी। और आपने रजिस्टर्ड PHCC, जो भी आपके रजिस्टर्ड है, वहां पर जाकर आप फैमिली मेडिसिन क्लिनिक में विदाउट प्रायर अपॉइंटमेंट जा सकते हैं। वेल, नॉन कतरी रेजिडेंट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट फाइन प्रिंट ये है दैट 45 ईयर्स और अबव कतर में एटलीस्ट 15 ईयर्स रेजिडेंसी और पहले हज परफॉर्म ना किया हो या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स में ये सारी चीजें शामिल है। सो नियत कर ली है तो डॉक्यूमेंट्स भी चेक कर लीजिए, क्योंकि हज की जर्नी दिल से शुरू होती है, बट प्रिपरेशन जो है ये सारी चीजों से भी शुरू होती है, जैसे पेपर वर्क होता है एंड सो मेनी मोर थिंग्स। मैं हूँ आफरीन आपके साथ, माइक से दिल तक, राइट ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: कभी प्यार का एहसास और कभी खुद को दिया हुआ एक खूबसूरत तोहफा. फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स इज बैक एट तनिष्क. रोज पहनने के लिए स्टाइलिश डिजाइंस हो या किसी खास मौके के लिए स्टनिंग डायमंड ज्वेलरी, हर पीस में है तनिष्क का भरोसा और बेहतरीन क्राफ्ट्समैनशिप. यही नहीं, गेट अ फ्री गोल्ड कॉइन ऑन एवरी 3,000 रियाल्स स्पेंट ऑन डायमंड परचेसेस. तो आज ही विजिट करें तनिष्क एट लुलु हाइपरमार्केट, डी रिंग रोड एंड दोहा फेस्टिवल सिटी टुडे. टीएनसी सप्लाई.
1: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड. She is coming for the very first time.
2: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar this 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and Aasi. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah.

0: What crazy energy this song had. Urmila ka dance, Salman Khan ka pagalpan, and of course, Hema Sardesai and Anu Malik ka combination. I just love it, yeah. पर जानब समझा करो, अब तो गेम खेलने का वक्त आ गया है ना. वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. सिंपली आफरीन का साथ है राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. और यस, आज एक ऐसा सीन लेकर आई हूँ जो सीन मेरे ख्याल से पूरी मूवी की कहानी ही वो बस डायलॉग में है. ये 10-15 सेकंड के डायलॉग में यू विल अंडरस्टैंड कि अच्छा ये तो ये मूवी है. ठीक है, इतना बड़ा हिंट मैंने अभी दे दिया, अब बस आप सीन सुन लो और बता दो मुझे कौन सी मूवी की बात कर रही है आखिर आफरीन. सो हियर इट गोज, लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट.
1: लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट. सीन टेस्ट.
2: क्या डाला मेरी आंखों में? क्या डाला? इसे ठीक करो, इसे ठीक करो. मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलो, अभी डॉक्टर के पास लेकर चलो. ये तो मैं सबको बता दूंगा.
3: तो जाओ बता दो सबको, प्रेस के पास जाओ, पुलिस के पास जाओ, एक और बयान लिखाओ कि सिमी सिन्हा ने प्रमोद सिन्हा का मर्डर कर दिया और मुझे अंधा भी बना दिया. और देख लेना कौन यकीन करता है तुम्हारा.
0: कहा था ना मैंने कि ये 20 सेकंड के डायलॉग में आपको पूरी मूवी की कहानी पता चल जाएगी. 5000196 एंड आई वुड से वन ऑफ द अंडररेटेड मूवीज. एंड ये जो एक्टर है ना हमारे महाशय, ये इनकी मूवीज की जो थीम होती है, इनकी मूवीज के जो टॉपिक होते हैं, मतलब ये कुछ अलग ही लेकर आते हैं. ऑफ लेट ही इज डूइंग quite repetitive roles, but I miss this old person. I don't want to get into much details now. बस नहीं तो नहीं, मैं मेरे मुंह से तो नाम ही निकल जाना है मूवी का. 5000196 is my number. So फटाफट से यहाँ पर आओ, WhatsApp करो, वॉइस मैसेज भेज सकते हो या टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हो. लेकिन यार बंधु, नाम भेजो ना अपना, तो मुझे पता चले यार कौन है उस पार जो मुझे सुन रहा है, जो यहाँ पर जवाब दे रहा है. ठीक है, दिलजीत पाजी शुरू हो जाओ.

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: विक्रांत, गेटिंग इनटू अ कैरेक्टर क्या आपके लिए चुटकियों का खेल है या फिर बहुत ज्यादा मेहनत लगती है?
3: नहीं यार, मेहनत तो है, मेहनत तो है एंड आई लव इट, आई लव एक्टिंग एंड मजा आता है अलग अलग पार्ट्स प्ले करने।
2: किसी दिन वरदाना के पूछे पापा एक्टिंग या मैं?
3: ये क्या सवाल है?
4: पापा बच्चे ऐसे ही सवाल पूछते हैं।
5: ये थे विक्रांत मैसी ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोलडाल, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
6: हर बार वही रेगुलर रिचार्ज क्यों? अपने हाला नंबर के लिए ओरेडो का योर स्पेशल ऑफर पाइए। मोर वैल्यू मेड फॉर योर नीड्स। अभी ओरेडो ऐप पर चेक करें या करीबी रिटेलर से मिलें। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडो।

0: उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग फ्रॉम द मूवी जोश, जहां पर शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय भाई बहन थे। अब कौन से एंगल से ये दोनों भाई बहन नजर आते हैं? नहीं नजर आ रहे थे ना, तो फिर क्या कर दिया फिल्म मेकर्स ने कि चलो शाहरुख खान तुम ना ब्लू लेंसेज पहन लो, तो आंखों में लेंसेज लगा लेंगे तो ऐसे थोड़ा सा लगेगा चलो भाई बहन है, थोड़ी आंखें तो सेम है। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक सिंपली आफ्टरनून का साथ है राइट ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट का सिलसिला यहाँ चल रहा था, जहाँ पर सीन सुनाया था बॉस, गेस करना था दैट्स इट, कौन सी मूवी का सीन है ये।
1: लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट, सीन टेस्ट।
2: क्या डाला मेरी आंखों में, क्या डाला, इसे ठीक करो, इसे ठीक करो, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलो, अभी डॉक्टर के पास लेकर चलो, नहीं तो मैं सबको बता दूंगा।
3: तो जाओ बता दो, सबको प्रेस के पास जाओ, पुलिस के पास जाओ, एक और बयान लिखाओ कि सिमी सिन्हा ने प्रमोद सिन्हा का मर्डर कर दिया और मुझे अंधा भी बना दिया,
0: और देख लेना कौन यकीन करता है। चलिए उनके नाम बता देती हूँ, चार्ली है, मोहम्मद यूसुफ खान है, देन आई हैव मोहसिन यार, मोहम्मद हनीफ, इमरान अहमद शेख, एंड देन कौन है ये, अपना नाम लिखा करो, अंकित है। सो यस, ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने हमें मैसेज करके बताया कि आफरीन, there are no wrong answers, surprisingly, कि ये movie है अंधाधुन, ऐसे अंधाधुन आपने मैसेज कर दिया कि हाँ भाई ये एकदम पत्ता ही चे हमको मूवी। और अगर आपने ये मूवी नहीं देखी ना, आई एम टेलिंग यू, यू आर मिसिंग आउट ऑन सच अ इम्पॉर्टेंट, आई मीन ऐसी एक्टिंग तबू और आयुष्मान खुराना की, लाइक गूज़बम्स। दिस मूवी इज सो अनप्रेडिक्टेबल, दिस मूवी इज सो टेरिफिक, राधिका आप्टे एज वेल। सो आई थिंक सो, अगर नहीं देखिए ना, वीकेंड प्लान बना लो और ये मूवी देख लो। एंड म्यूजिक हैज टू बी गुड यार, अमित त्रिवेदी की आवाज़ और अमित त्रिवेदी की म्यूजिक इन दिस मूवी, अंधाधुन से ये गाना, एंजॉय इट ऑन मिर्ची।

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: जी बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन, बता बेटा सवाल क्या है।
0: सर, मैंने 3 अलग अलग बिजनेस किए, उनके लिए मार्केटिंग भी किया, पर कुछ बिक नहीं रहा, मैं क्या करूं? कुछ सोल्यूशन बताओ ना।
1: अरे बेटा, सिंपल सा सोल्यूशन है, तू एक काम कर, दुकान ही बेच दे।
2: I'm joking, mama।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: Mirchi Mornings.
2: Mirchi Mornings with Mirchi Afreen. It's hot.
1: 89.6 Mirchi घड़ी का इशारा सुबह के 8 बजे की तरफ और आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स इट्स हॉट
3: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर
2: मिर्ची फ्रेश माल
4: इमरान हाशमी के सॉन्ग्स और प्लेलिस्ट हिट्स दोनों का रिश्ता पुराना है उनकी अगली म्यूजिकल ऑफरिंग है ये आवारापन

0: इस गाने को आवाज दी है अरिजीत सिंह ने, म्यूजिक दिया है अमाल मलिक ने और लिरिक्स लिखे हैं रश्मि विराग ने। आवारापन 2 से सुनते रहिए ये आवारापन, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: देखिए दोस्तों, आजकल AI से हम सबका एक ही रिलेशनशिप है, काम भी उसी से करवा रहे हैं और डर भी उसी से रहे हैं। हाँ नहीं तो क्या, मतलब कहीं जाकर आगे हमारा ये काम ना खा ले। वैसे कतर के लिए AI की स्टोरी थोड़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रही है। वही गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को।
2: क्या खबर कतर?
1: और खबर ऐसे है कि वर्ल्ड बैंक की लेटेस्ट असेसमेंट में कतर को सिंगापुर, स्वीडन और UAE जैसे इकोनॉमीज के साथ मेंशन किया गया है व्हेन इट कम्स टू बिल्डिंग द फाउंडेशंस नीडेड टू बेनिफिट फ्रॉम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखो इंटरेस्टिंग पार्ट सिर्फ ये नहीं है कि कतर AI में आगे बढ़ रहा है, वर्ल्ड बैंक के फ्रेमवर्क को सिंपल लैंग्वेज में समझे तो AI रेडी होने के लिए सिर्फ ChatGPT यूज करना इनफ नहीं होता है। बस यू नीड द 4 C's, कनेक्टिविटी, कंप्यूट, कॉन्टेक्स्ट एंड कॉम्पिटेंसी। मतलब स्ट्रॉन्ग डिजिटल कनेक्टिविटी होनी चाहिए, सीरियस कंप्यूटिंग पावर, रिलेवेंट डेटा और सबसे इम्पॉर्टेंट पीपल विद द स्किल्स टू एक्चुअली यूज इट। एक फैसिनेटिंग पर्सपेक्टिव मेरा ये भी है दैट वर्ल्ड बैंक लिटरली डिस्क्राइब्स कंप्यूट एज द न्यू इलेक्ट्रिसिटी ऑफ द AI एरा। सो कतर का नाम इस कॉन्वर्सेशन में आना बेसिकली सिग्नल समथिंग बिगर। AI इज नो लॉन्गर जस्ट अ टेक स्टोरी, इट्स बिकमिंग एन इकोनॉमिक स्टोरी। और हम कतर रेसिडेंट्स के लिए टेक अवे सिंपल है दैट AI से कंपीट करने की टेंशन छोड़ो, AI के साथ कॉम्पिटेंट होना स्टार्ट करो। बिकॉज फ्यूचर में शायद सवाल ये नहीं होगा दैट डू यू नो AI, सवाल ये होगा कि हाउ वेल डू यू नो टू यूज इट। माइक से दिल तक आफ्रीन है आपके साथ, राइट इट ऑन विद शी, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Escabana, escabana, sacabana. Grabana. Murga, murga. La vieja la murga. Mirchi, murga.
2: Hello.
3: Hello, Mr. Vipul, ma'am. से बोल रहा हूँ आपका कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए आपके मोबाइल का इनबॉक्स, तो मैं अपना आदमी भेज दूँ या आप यहाँ पे आके जमा करा देंगे?
2: इनबॉक्स चाहिए? इनबॉक्स कैसा मतलब?
3: मैं आपको वही समझा रहा हूँ, एक्चुअली हमारी कंपनी अपना सर्वर चेंज कर रही है, तो सर्वर में जो डेटा होता है, अब वो सर्वर हटाएंगे तो सारा डेटा हमें कहीं तो रखना पड़ेगा ना, तो हम आपके इनबॉक्स में रखेंगे कुछ दिन तक वो डेटा, अब वो जब हमारा सर्वर नया लग जाएगा तो हम आपको इनबॉक्स आपका वापस कर देंगे, तो मैं यहाँ से कंप्यूटर में फीड कर रहा हूँ, आपका इनबॉक्स अपनी तरफ खींच रहा हूँ, ठीक है सर?
2: नहीं, बात तो सुनो भाई साहब।
3: हाँ बताइए।
2: नहीं तो जो

0: इनबॉक्स है मेरा, वो तो मेरा अपने फोन मेमोरी में है ना।
1: नहीं वो हम खींच लेंगे, आप उसकी फिक्र मत करिए।
0: नहीं तो आप कैसे उसको अपलोड करेंगे?
1: मैं कुछ भी करूँ यार, आप ज्यादा बहस करते क्यों? एक तो सर्वर वो उतार रहे हैं, आप मुझसे बहस कर रहे हैं।
0: बहस वाली बात नहीं, मतलब मैं खुद मालूम तो करूँ ना, अगर आप मेरे से कोई बात पूछ रहे हैं तो
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं।
0: जा कहाँ रहा है?
1: नहीं वो जा कहाँ रहा है, जा यहीं रहा है, आपकी कंपनी में जा रहा है। और मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपका कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए। अब उसमें आपको टेंशन क्या है, हम आपके मैसेजेस रखेंगे, उसको पढ़ेंगे सही से।
0: मेरे प्राइवेट एसएमएस है उसमें, मैं ऐसे किस तरह से दे दूँ उसको?
1: वैसे आप बुरा मत मानना, आपके मना करने से मुझे लग रहा है कि आप मैंने उसमें सारे नॉन वेज मैसेजेस रखे हुए हैं उसमें।
0: यार क्या बात कर रहा हूँ, मतलब
1: नॉन वेज एसएमएस क्यों रखे हुए हैं यार आपने उसमें? बेकार की बातें कर रहे हैं, आप कंपनी को जरूरत है? क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप उसपे? मैं तो मुझे सिर्फ इनबॉक्स नहीं चाहिए, मेरी बात सुनिए।
0: चल
1: नहीं नहीं आपने फॉर्म भरा था, सेकंड पेज पे मेरे हाथ में है, रुकिए रुकिए, सेकंड पेज पे लिखा हुआ है कि कंपनी आपका इनबॉक्स कभी भी ले सकती है, उसमें कस्टमर को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा, यहाँ तक कि आपके घर की बाल्टी, आपके बर्तन, आपके कपड़े तक उतरवा सकती है।
0: कंपनी ये कर सकती है, वो कर सकती है,
1: क्या कर सकती है, मतलब कपड़े। क्या बात कर रहे हैं यार, मेरी बात सुनिए आप पूरी। हेलो
0: हेलो
1: भाई साहब, आपने फोन काट दिया यार, इनबॉक्स लेने की बात कर रहा था मैं, आप फोन काट रहे हैं यार।
0: फोन मत करो,
1: क्या क्या क्या यार, बात सुनिए आप मेरी। मैं आपसे सिर्फ एक बात, एक बार विपुल, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, कोई तुम्हारा इनबॉक्स नहीं चाहिए, मैंने मुर्गा बनाया है तुम्हारा, तुम रेडियो मिर्ची पे हो।
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: घर बैठे चाहिए नया कार्ड, स्मार्ट चॉइस है ओरिरो मनी कार्ड, अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर। एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल, और सुनो हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू आईफोन 17 प्रो मैक्स। लेट मत करो, ऑर्डर योर ओरिरो मनी कार्ड स्ट्रेट अवे। TNC अप्लाई।
4: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड। She is coming for the very first time.
3: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and Aasi. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah.

वेल, जबरदस्त राइड चल रही है आपकी और गाने भी एंजॉय कर रहे हैं, तो चलिए थोड़ा सा गाने से हटकर इम्पोर्टेंट बातों की तरफ भी आ जाते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को, और मनी टॉक से ज्यादा हाँ, कुछ इम्पोर्टेंट हो सकता है क्या बॉस? देखो आज के एक्सचेंज रेट कह रहे हैं 31 रियाल के बदले मिल रहे हैं इंडियन रुपीज 26.18, वहीं जना पाकिस्तानी रुपीज इज एट 76.18। अगर बांग्लादेशी टाका की बात करें तो इट इज एट 33.66, वेयर एज श्रीलंकन रुपीज इज एट 91.23 एंड नेपाली रुपीज इज एट 41.90। ये थे आज के एक्सचेंज रेट, घर भेजे पैसे, ढेरों सारी खुशियां एंड खुशियों का नंबर वन फॉर्मूला, वन एंड ओनली 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: ड्रिवन बाय शैकमैन ट्रक्स, जबरदस्त पावर और क्लीनर एनर्जी का नया चैप्टर। शैकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स एंड बूम ट्रक्स, पावर दैट सेव्स, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कार्मेल ग्रुप।
1: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड। She is coming for the very first time.
0: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah live in

विशाल शेखर, शिल्पा राव और मेलो की आवाज में ये गाना राइट हियर ऑन मिर्ची। मैं हूँ आपके साथ वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। मिर्ची मॉर्निंग्स पर स्वागत है आपका। एंड रेडी हो, फ्रेश हो भाई। देखिए हफ्ते का ये दूसरा दिन, नहीं यार तीसरे दिन पे आ गए हम। एक्चुअली इट्स 18th of August, ट्यूजडे है। और अब मैं लेकर आई हूँ मेरा गेम, जिसे मैं कहती हूँ मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स। देखिए पब्लिक डिमांड पर वो वाला गेम इसमें से मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स में से निकला है, जहाँ पर तीन कनेक्शन, मतलब थ्री चेन लिंक मैं कह सकती हूँ, जहाँ पर मैं एक मूवी से लिंक करके दूसरी मूवी बताती हूँ, तीसरी मूवी बताती हूँ, आपने गेस करना होता है ये तीन मूवीज कौन सी है जो आफरीन बात कर रही है। सो रेडियो सेट्स के वॉल्यूम करो हाई और ध्यान से सुनो, ठीक है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा नहीं यार, आप लोग कंफ्यूजिंग नहीं, आप लोग तो एकदम हीरो है, आप लोग को पता चल जाएगा। चलो सो हियर इट गोज। वो कौन सी मूवी है जिसमें शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय लवर्स नहीं है बल्कि भाई बहन बने थे, और उसी यही कपल जो है कोई और मूवी में, जहां पर जो हीरो है लंदन से लौटता है और हीरोइन का ये बचपन का प्यार होता है, लेकिन इनकी शादी नहीं हो पाती है, और इस मूवी में उसके प्यार में पड़ी एक और औरत का रोल करने वाली एक्ट्रेस किसी और मूवी में, जहां वो अमेरिका से लौटती है इंडिया अपना डांस थिएटर बचाने के लिए एज अ डांस टीचर। कुछ समझ आया? तीन मूवीज बताई मैंने यहाँ पर, 5000196 मेरा नंबर है, फिर से मैं बताती हूँ। चलिए बताइए वो कौन सी मूवी है जिसमें शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय लवर्स नहीं होते बल्कि भाई बहन बने थे, और यही दो कपल जो है, यही दोनों किसी और मूवी में ऐसा ये किरदार निभाते हैं जहां पर बचपन का प्यार होता है, लंदन से लौटता है लेकिन इनकी शादी नहीं हो पाती है, एंड इसी मूवी में हीरो के प्यार में पड़ी एक और औरत का रोल करने वाली एक्ट्रेस किसी और मूवी में डांस टीचर का किरदार करती है, जो अमेरिका से इंडिया लौटती है अपना डांस थिएटर बचाने के लिए। वाओ, 5000196 इज माय नंबर। बताइए ये तीन कौन सी मूवी का नाम यहाँ पर आफरीन ने बात की और बताई है, और जो तीनों का सही जवाब देता है, यार मेंशन तो इनका होगा यहाँ पर जरूर। दीवान और जावेद अली की आवाज में अगला गाना आपका इंतजार कर रहा है वन मिर्ची।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: आलिया, आपकी मम्मी सोनी राजदान बड़ी क्यूट है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं राजी के सेट पे वर यू नर्वस और एक्साइटेड टू वर्क अलोंग विद योर मॉम, व्हाट वाज द फीलिंग?
3: यू नो, आई वाज वेरी नर्वस, क्योंकि पहले तो मम्मी भी है, बट नंबर वन फर्स्ट माय को एक्टर ऑन सेट, वो मेरी पहली को एक्टर है, मेरी मम्मी नहीं बन सकती, तो मैं नर्वस थी, क्योंकि मुझे लगा कि अगर वो नर्वस है तो मैं ज्यादा नर्वस हुई होगी, अगर उनको लाइनें शायद नहीं आते हैं तो मैं कैसे कहूंगी कि उनको नहीं आ रहे हैं, तो आई वाज लाइक, मुझे ऐसा लग रहा है मैं दो लोगों के लिए एक्टिंग कर रही हूं, यू नो, मैं जब वो पहली बार सेट पे आई, बट तब मुझे ऐसे रियलाइज हुआ कि वो एकदम बिंदास है, शी इज एक्चुअली एग्जैक्टली लाइक मी।
2: आलिया, वो आपके जैसी नहीं, आप उनके जैसी हैं। चिकन और एग, व्हाट केम फर्स्ट? मेरे हिसाब से चिकन। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: कभी प्यार का एहसास और कभी खुद को दिया हुआ एक खूबसूरत तोहफा। फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स इज बैक एट तनिष्क। रोज पहनने के लिए स्टाइलिश डिजाइन हो या किसी खास मौके के लिए स्टनिंग डायमंड ज्वेलरी, हर पीस में है तनिष्क का भरोसा और बेहतरीन क्राफ्ट्समैनशिप। यही नहीं, गेट अ फ्री गोल्ड कॉइन ऑन एवरी 3,000 रियाल्स स्पेंट ऑन डायमंड परचेसेस। तो आज ही विजिट करें तनिष्क एट लुलू हाइपरमार्केट, ईरिंग रोड एंड दोहा फेस्टिवल सिटी टुडे। Supply.
5: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
6: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम, एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट SCT Snuno. टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स। द मेंटलिस्ट सुहानी शाह।

0: हाँ कमाल तो मैं भी हूँ और कमाल मेरा सवाल भी है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक सिंपली आफरीन का साथ है राइट ऑन विच मॉर्निंग्स। और आज का सवाल इतना पेचीदा था कि यार कुछ लोग हैं जिन्होंने सही जवाब तीनों दिए हैं, क्योंकि क्या होता है ना यहाँ पर मैं तीन मूवीज पूछती हूँ आप लोगों से। सो जो लोग अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं तो बता दो हम खेल रहे हैं यहाँ पर मिस्ट्री बॉक्स। व्हाट इज द मिस्ट्री बिहाइंड दीज थ्री मूवीज। फिलहाल मैंने आपको यहाँ पर इंटरलिंक करके तीन मूवीज की हिंट दी थी, आपने गेस करना था कि आखिर ये मूवीज है कौन सी। तो रेडियो सेट्स के वॉल्यूम करो हाई और ध्यान से ये मूवीज सुनो। सो वो कौन सी मूवी है जिसमें शाहरुख खान और ऐश्वर्या लवर्स नहीं बल्कि भाई बहन बने थे। ठीक है, अब यही दोनों किसी और मूवी में बचपन का प्यार थे, लंदन से ये लौटे थे लेकिन इनकी शादी नहीं हो पाती थी। और इस मूवी में इनके प्यार में, शाहरुख खान के प्यार में पड़ी एक और लेडी थी जो कोई और मूवी में अमेरिका से लौटी थी इंडिया और अपना पुराना डांस थिएटर बचाने की कोशिश कर रही थी। कौन सी मूवी है ये तीनों? ओके इट्स लिटिल कंफ्यूजिंग लेकिन लेट्स सी अदर आंसर्स।
1: गुड मॉर्निंग। हाँ जी, शाहरुख खान का ये पहला मूवी है जोश है।
0: ओके
1: और दूसरा है देवदास है।
0: राइट,
1: लंदन से पढ़ के आता है, शायद शादी नहीं होता है।
0: बिल्कुल सही,
1: तो इसका देवदास है। तीसरा मूवी मेरे ख्याल से अनुभव प्रदेश होगा। शाहरुख खान महिमा चौधरी होगा, प्रदेश होगा जी।
0: नहीं, गलत।
2: लेट्स हियर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सवाल बहुत ही खूबसूरत
0: था। थैंक यू।
2: मगर इसका जवाब ये है कि
0: okay.
2: जो तीन फिल्मों के नाम आपने कहे हैं,
0: हाँ,
2: एक फिल्म का नाम है जोश,
0: दूसरी
2: फिल्म का नाम है मोहब्बतें और तीसरी फिल्म का नाम है आजाना चले।
0: आपका भी जवाब जो था वो पार्शली करेक्ट था क्योंकि आपने भी तीन में से दो सही बताए हैं। सो जिन्होंने तीनों सही बताए हैं, जो थी फर्स्ट मूवी जोश, सेकंड मूवी देवदास और तीसरी मूवी थी आजा नचले, बहुत लोगों ने मोहब्बतें बताए हैं जो बिल्कुल गलत है। सो किसने सही आंसर दिया है यहाँ पर? ताहिर का बिल्कुल सही जवाब आया है। देन आई हैव मोहम्मद यूसुफ खान सेइंग ऑल द राइट आंसर। देन आई हैव दीपेश राय गिविंग All the right answers, और बस इसी के साथ जिन्होंने दो सही जवाब दिए हैं, जैसे अब्दुल राशिद है, then I have Zahid, then many more here. चले बहुत ही सही है, because yes, थोड़ा सा tricky तो बन गया था ये। Well, on this note, तीन movies जहां देवदास, जोश और आजा नचले, तीनों में गाने इतने अच्छे हैं, कौन सा गाना बजाऊं, थोड़ा सा tricky तो मेरे लिए भी हो गया था, लेकिन I chose this one. अभिजीत की आवाज में जोश का ये गाना, I love the song. I hope you do also. Enjoy it on Machine Mike's Dil Tak Afreen ke saath.

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: हाय देयर, व्हाट्स अप, टेल मी।
0: सर मैं नोटिस पीरियड पे हूँ और हाथ में दूसरी जॉब भी नहीं है, क्या करूँ?
1: वेल, ये बात तुझे पहले नोटिस करनी चाहिए थी सेनोरिटा। अब सेम जॉब ना मिलेगी दोबारा।

well, देखो हमारा जनरेशन का ना मैं एक नाम देना चाहूंगी, वो है डोर स्टेप जनरेशन। हाँ ऑब्वियसली देखो खाना डोरस्टेप पे आ जाता है, ग्रोसरीज डोरस्टेप, कपड़े डोरस्टेप्स पे, मतलब बस कोई सुबह की चाय भी बना के डोरस्टेप से अंदर ला दे, लाइफ और भी सॉर्टेड हो जाएगी। अब इसी कन्वीनियंस लिस्ट में कार्ड्स भी आ गए हैं। यस यू हर्ड इट राइट, ओरिडो मनी कार्ड के लिए आप घर बैठे अप्लाई कर सकते हो और क्यू पोस्ट उसे कतर में आपके डोरस्टेप तक डिलीवर कर देगा। एक्टिवेट करने के बाद लोकल हो या इंटरनेशनल शॉपिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं। व्हाट मोर डू यू वांट इसमें। लेकिन मुझे और एक इंटरेस्टिंग बात ये लगी कि देखिए हर एप्लीकेशन के साथ ब्रांड न्यू आईफोन 17 प्रो मैक्स जीतने के चांसेस भी है। मतलब कार्ड मंगवाया था, किस्मत अच्छी हुई तो पार्सल की कहानी आईफोन तक पहुंच सकती है। तो बस व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। मैं हूं आफरीन, आपके साथ माइक से दिल तक ऐसे ही काम की बात लेकर आती रहूंगी। और मिर्च की इट्स हॉट।

0: Mirci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. La vieva la burga. Mirci, burga.
1: Hello.
2: Oh, madam, good evening.
1: Hi.
2: Bank se bolle ho na hamari nayi scheme aaye madam taazi scheme hai badhiya scheme isme rate of interest bilkul kam
1: hai sabzi bech rahe hai ya loan ke liye
2: pehle sab pehle sabzi bechta tha
1: agar agli baar phone aa gaya na
2: madam tamiz se baat karo warna yahi se chapet maru aur sare daant baat kar do मेरा अगर ये स्कीम लोगी तो धनिया साथ फ्री दे दूंगा वे
1: वही आके ऐसा तेरे पैर तो मारूंगी ना
3: प्रीति मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि लड़कियों से ज्यादा पंगे लेने नहीं चाहिए अपने ऊपर पड़ जाती है यार आप रेडियो मिर्ची में इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं आपका मुर्गा बन गया
2: मेरा आपका तो मुर्गा बन गया
3: प्रीति ये जो बीप बीप हो रहा था ये बीप हटा दूं मैं एक बार दिल्ली को सुना दूं
1: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं
3: से सॉरी
1: आई एम सॉरी नवीन आई एम सॉरी
3: प्यार से बोल दीजिए कोकड़ो को
1: कुकड़ू गो
4: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
5: शी कैन रीड योर माइंड शी विल ब्लो योर माइंड She is coming for the very first time.
6: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar this 25th September at QNCC and to add the double bonanza of entertainment. Get ready to watch music and dance duo Charan and Aasi. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at STT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah live

यस माय बंधु ओ टेशर और जस्टिन डेरोलो की आवाज में ये गाना जलेबी बेबी। और मुझे ये जलेबी सुनकर इतनी जोरों की भूख लग रही है। वैसे बताइए आपने क्या किया है बाय द वे नाश्ते में आज? वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। सिंपली आफरीन का साथ है राइट रन विद शी मॉर्निंग्स। और देखिए भाई, मिर्ची का जब इवेंट आता है ना, तो मिर्ची के ऑफिस में तो वह कहीं ना कहीं मुझे लगता है कोई शादी का माहौल ही रहता है। इतनी तैयारियां होती है, इतना एक्साइटमेंट होता है। एंड दिस टाइम इट इज समथिंग विच इज यूनिक, जो कतर में कम ही होता है शायद। देखा जाए तो हमारे इंडियन कम्युनिटी में ऐसे बहुत कम इवेंट्स आते हैं, देसी कम्युनिटी में कह सकती हूँ, जो एक मेंटलिस्ट का शो है। यस, गाने के इवेंट्स बहुत होते हैं, सिंगिंग होता है, डांसिंग होता है, लेकिन टॉकिंग अबाउट अ मेंटलिस्ट शो, जो सुहानी शाह हमारे कतर आ रही है पहली बार। एंड सुहानी शाह के बहुत सारे वीडियोज आई एम श्योर आपने देखे होंगे सोशल मीडिया पे, फॉर श्योर। मतलब धोनी के साथ है, सलमान खान, आमिर खान, एंड वेयर शी इज एक्चुअली रीडिंग पीपल्स माइंड, एंड यू आर गोना बी फ्लैबरगास्टेड फॉर श्योर कि ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। यू ऑलवेज वंडर्ड ना कि चलो वीडियो में तो कुछ ना कुछ ये लोग कारस्तानी करते होंगे, बट रियलिटी में कैसा होता होगा? तो आइए खुद विटनेस कीजिएगा। 25th of September इज द डेट, QNCC इज द प्लेस, एंड टिकट्स जो है स्नूनो सिटी यानी एस सिटी पर तो मिल ही रही है, लेकिन नाउ वी आर लाइव ऑन क्यू टिकट्स एज वेल। आप क्यू टिकट्स जाकर भी इसकी टिकटें जरूर खरीद सकते हैं। वेल, तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? मंथ एंड का इंतजार कर रहे हैं? तो कोई बात नहीं, मंथ एंड पर भी मैं आपको रिमाइंड कर दूंगी। तब तक के लिए अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं, दिलजीत पाजी और बादशाह की आवाज में।

0: घर बैठे चाहिए नया कार्ड, स्मार्ट चॉइस है ओरिरो मनी कार्ड। अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर। एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल, और सुनो हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू आईफोन 17 प्रो मैक्स। लेट मत करो, ऑर्डर योर ओरिरो मनी कार्ड स्ट्रेट अवे। TNC अप्लाई।
1: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
0: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट एसटीटी स्नोनो। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स। द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव।

0: अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो की आवाज में ये गाना द टाइटल ट्रैक ऑफ दिस मूवी हम तुम फीचरिंग सैफ अली खान एंड रानी मुखर्जी। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स एंड दिस इज अ टाइम जहां पर आफरीन जनरली अपने किताब से अपनी डायरी से आपके लिए चंद अल्फाज लेकर आती है और आज के अल्फाज कुछ ऐसे हैं।
1: आफरीन की डायरी से शायरी।
0: आता नहीं था हमें इकरार करना, आता नहीं था हमें इकरार करना, न जाने कैसे सीख गए प्यार करना। दो पल भी ना रुकते थे किसी के लिए, दो पल भी ना रुकते थे किसी के लिए, न जाने कैसे सीख गए इंतजार करना। देखिए कोई भी रिलेशनशिप में एक चीज अगर कुछ हमें सिखाती है तो वो है पेशेंस, है ना। अगर आपके दिल के अजीज है वो शख्सियत तो आपकी जिंदगी में बहुत पेशेंस आएगा, बिकॉज यू डोंट वॉन्ट टू वर्क आउट ऑफ इट, यू वॉन्ट टू होल्ड ऑन टू इट। तो बस यही ख्याल था मेरा आज का। अगला गाना कैलाश खेर की आवाज में, वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स, माइक से दिल तक। आप आफरीन के साथ बने रहिएगा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नंदीश संधु टीवी एक्टर, बालों में क्या लगाते हैं ये बता के आप चले जाइए। इतने सुंदर बाल तो हो ही नहीं सकते।
2: अपनी आंखें वैसे बहुत सुंदर हैं।
1: मैं अपनी आंखों में कुछ नहीं लगाती सिवाय
2: जुनून के। आंखों में खुदी खोजा सिवाय किस जुनून के।
1: अगर ये अपार शक्ति खुराना और नंदीश संधू और सिद्धांत गुप्ता के बीच के ओ आ में आप सुन नहीं पाए, मैंने कहा मैं अपनी आंखों में जुनून के अलावा कुछ नहीं लगाती। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: जस ने सोचा था सिर्फ वाइफ क्यों, लंदन में एक गॉर्जियस गर्लफ्रेंड भी रख लूं। जस को लगा है जवानी तो इश्क होना है, पर जब पुराने रिश्ते नए सीक्रेट से टकराए तो एक लाई छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़े। एक लड़का, दो लव स्टोरीज और अनलिमिटेड केओस। है जवानी तो इश्क होना है, स्ट्रीम इट नाउ ओनली ऑन Z5। डाउनलोड द ऐप नाउ।
4: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड। She is coming for the very first time.
3: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and Aasi. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah.

अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की आवाज में ये गाना राइट हियर ऑन मिर्ची। मैं हूँ आफरीन आपके साथ। और वक्त की रफ्तार बाबू मशाए, ये मुझे अभी महसूस होती है जब 4 घंटे निकल जाते हैं, मतलब यहाँ पर बातों में, गानों में एंड स्पेशली गेम्स में, आई वुड से कि ये जो 4 घंटे ना बड़े खूबसूरती से निकल जाते हैं। वेल, अगर आपने भी मेरे साथ में यहाँ पर थोड़ा वक्त गुजारा है और दिन बहुत ही पॉजिटिव नोट के साथ में, बस उम्मीद करती हूँ कि आपने शुरू किया होगा, तो बस ऐसे ही आपका दिन आगे बरकरार रहे, आप खुश हो, ऐसे ही खुश रहिए। आपके आसपास के लोग देखना कितने ज़्यादा खुश रहते हैं, कहीं ना कहीं ये जो वाइब और ऑरा, ये दिस इज रियल थिंग, ठीक है। इफ़ देर इज समथिंग अनकंफर्टेबल यू आर फीलिंग एंड यू आर समवेयर डाउन, आपके चेहरे पर नहीं होगा लेकिन कहीं ना कहीं आप वो एनर्जी है वो आप दे ही देते हो, तो बस खुश रहो हमेशा। और जाते जाते बस इतना ही रिमाइंडर देना चाहूंगी कि भाई सुहानी शाह के हमारे जो शो के टिकट्स हैं वो SCT सुनू सिटी पर तो मिल ही रहे थे, लेकिन नाउ वी आर अवेलेबल ऑन क्यू टिकट्स एज वेल। तो बस इंतजार किस बात का, पहले तो मुझे ये बताइए कि आपने कोई मेंटलिस्ट का शो देखा है क्या लाइव? टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, मैंने नहीं देखा है, मैंने बस वीडियोज में ही देखे हैं। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ मेंटलिस्ट टू कम हियर एंड सी, मतलब मैजिशियन के शो बहुत देखे हमने कि कहीं से रुमाल निकाल रहे हैं तो कहीं से परिंदा निकाल रहे हैं तो कहीं से कुछ, बट नो, मेंटलिस्ट इज समथिंग डिफरेंट, जो आपके दिमाग में जाकर आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो बताए। That is something interesting. You should not miss it. 25th of September, QNCC is the place and date 25th of September. तो मैंने बताई दिया है. तो इजाजत है. कल आऊँगी फिर से. Same time, same show. Tata, bye bye, sayonara. Mike से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा हमेशा. It's hot.

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: यस ऑफ कोर्स, मिर्ची हेल्पलाइन बोलिए।
0: मेरा बॉस एआई पे ज्ञान देता रहता है और मुझे डांटता रहता है कि मुझे एआई से रिप्लेस कर देगा, क्या करूं?
1: अरे तू सिंपल है ना, उसको बोल तुझे रिप्लेस कर देगा तो डांटेगा किसे, एआई को।
2: खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़।

0: बेनी दयाल की आवाज़ शिफाली अल्वारेस का साथ एंड व्हाट अ पावर पैक ट्रैक इट इज फ्रॉम द फिल्म यारियां। भाई ये गाने जो है ना जेन्युइनली अगर मुझे किसी दिन की याद दिलाते हैं तो वो मेरे कॉलेज टाइम की। हैविंग सेड दैट, मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 10:08।
1: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: यार सच कह रही हूँ, मतलब ये एक ऐसी फिलॉसफी है जिसे जेन्युइनली जब से मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू किया है ना, जिंदगी को जीने का, अपने काम को करने का पूरा तरीका जो है ना बदल चुका है।
2: मिर्ची अंशु
0: हेलो, वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू। वेल, आपकी जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए एक नए दिन की शुरुआत में नए शो के साथ, हाय, फिर से नए जोश नून जज्बे के साथ मैं आ ही चुकी हूँ। पता है क्या, इनिशियली जब भी मैं कोई भी काम किया करती थी, मेरे लिए हर एक प्रोसेस जो है ना एक काम ही हुआ करता था। यार घर साफ करना है, यार कपड़े घड़ी करना है, यार ये बुक पढ़नी है, यार ऑफिस जाके शो करना है, बहुत सारा लॉग मैनेज करना है। सो एवरीथिंग यूज्ड टू बी हवा। हवा ये टर्म कभी सुना होगा ना, जैसे बड़ा सा पहाड़ जैसे आपके आंखों के आगे लगे कि भाई ये काम करना है, पैसे कमाने हैं, पैसे जमा करने हैं, फ्यूचर का क्या होगा। सी ये सारे सवाल, ये सारे क्वेश्चन ना हम सबकी ज़िंदगी में, और ये सारे काम चाहे आप हवा के तौर पे करो या हाहा के तौर पे करो, करना तो है ही ना। फिर एक बार ना मेरे पापा ने मुझे एक बात सिखाई, बहुत अच्छी बात समझाई, कि जिंदगी में तुम जो भी करो, चाहे वो काम स्ट्रेसफुल हो, चाहे वो काम बहुत इजी हो, चाहे मोनोटोनस हो, रूटीन का एक पार्ट हो, उसे ना एंजॉय करते हुए करो। देखो शुरू शुरू में ना अगर कोई तुमसे बात कहता है ना तो सुन के लगता है यार कहना बहुत आसान है, कपड़े घड़ी करने को कौन एंजॉय कर सकता है। नहीं, इवेंचुअली व्हेन यू स्टार्ट प्रोग्रामिंग योर ब्रेन, रीट्वीट दिस पॉइंट टाइम एंड अगैन, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर रूटीन एंड बिलीव मी, आप इवेंचुअली उस काम को एंजॉय करने लगते हो। तो अभी भी सारे मसले हैं, फ्यूचर की टेंशन है, क्या होगा, सिक्योरिटी का मुद्दा है, इवेंट्स है, सब कुछ है, सारा है, लेकिन हर एक प्रोसेस को ना, रूटीन के हर एक काम को जब से मैंने एंजॉय करना शुरू किया है, यार वही काम जो है ना मेरी लाइफ में इन दिनों बहुत डिफरेंट रोल प्ले करते हैं। गिव इट अ ट्राई जहां भी जा रहे हो। चलो मैं कहती हूँ एक छोटा सा असाइनमेंट, इस वक्त तुम जहां भी जा रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, यू नो किसी मीटिंग के लिए जा रहे हो, किसी से मिलने जा रहे हो, कहां पर भी हो, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को आज डिसाइड करना, कितना भी स्ट्रेसफुल क्यों ना हो आप उसे एंजॉय करोगे, एंड आफ्टरवर्ड्स वी लुक एट द रिजल्ट्स। मीनवाइल इफ यू आर कनेक्टेड विद मी, डू ड्रॉप अ गुड मॉर्निंग मैसेज 5000 1896 5000 1896, ईगरली वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। परंपरा टंडन की आवाज में अगला गाना मीनवाइल, हबीबी, एंजॉय।

0: Mirci. Iskabana, puskabana, sakabana. Yabana. Burga, burga. La virtua la burga. Mirci, burga.
1: Mirci.
2: Navid.
1: बोल रहा हूँ।
2: अगर किसी का वो जो बनाते हैं आप उल्लू, उसके लिए क्या करना पड़ेगा?
1: वो आपको मुझे बताना होगा।
2: तो मैं अभी बता दूँ?
1: एक सेकंड, ये फॉर्म भर देते हैं। क्या नाम है आपका?
2: संजना।
1: संजना, किसका मुर्गा बनवाना है आपको?
2: अपने हस्बैंड का।
1: क्या बात कर रही हैं, और कोई नहीं मिला आपको?
2: फिलहाल अभी कोई और दिमाग में नहीं आ रहा।
1: अच्छा संजना, मुझे प्लीज आप ये बता देंगे कि ये इनको कितना गुस्सा आता है, ताकि मैं उसी हिसाब से इनसे बात करूँ फिर मुर्गा बनाऊँ। बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं?
2: भड़क भी जाते हैं।
1: अरे बाप रे। तो मुझे संजना प्लीज बता देंगे किस तरह भड़कते हैं ये?
2: अब्यूजिंग वे में। थोड़ा
1: अब्यूजिंग वे में, जैसे कि कैसे?
2: आप मुझे शुरू कीजिए फिर मैं बताता
1: हूं। ओके चलिए।
3: हेलो सर, मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ, फलाना बैंक से। सर आपको लोन देना है, 2 मिनट दे सकते हैं?
2: नहीं, मेरे पास अभी टाइम नहीं है।
3: सर थोड़ा सा 2 मिनट दे दीजिए यार, क्या बात जाती है आपकी?
2: दिमाग खा रखा है।
3: अरे शर्म किस बात की यार, हम लोन बेच रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए। सर आप एक तो तमीज से बात करिए, आप लोन लेना है ले लीजिए, तमीज से बात करिए, बदतमीज कहीं का।
1: मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं इस तरीके से किसी का मुर्गा बनाऊं। और संजना मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा था कि तुम्हारा मुर्गा बन चुका है। रेडियो मिर्ची पे।
2: मैंने अपना बनवाने के लिए फोन दे दिया था।
1: हम तो किसी का ही बना देते हैं, आपके हस्बैंड से ज्यादा हमदर्दी हो गई, किस दिन उनका ही बनाएंगे। फिलहाल आपका बन गया है। मेरे साथ प्यार से कह दो एक बार, कुकड़ू कु।
2: थैंक यू।
4: मिर्ची मुर्गा।

भाई साहब, जोश बारन, परंपरा टंडन की खूबसूरत सी आवाज। अगर फिल्म बागी 4 की बात करूं, पूरी स्टोरी ने हमारे साथ भागी पंती जो है ना वो कर ही थी, भागने का मन किया थिएटर से, लेकिन हाय ये गाना जो है हमें पूरी तरह से बांध के रख लिया। मिर्ची अंशु। वैसे अगर बांध के रखने की बात करूं तो सच करूं, जिसने कल का मैच देखा है ना, ये बात आप और हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरह से हमारी निगाहें स्क्रीन से पूरी तरह से थ्रू आउट द गेम बंधी हुई थी। वो जितने भी लोग बैडमिंटन खेलते हैं, बैडमिंटन के फैन हैं, इतना बता दूं बैडमिंटन की दुनिया में इस वक्त एक बड़ा टूर्नामेंट चल रहा है, आई एम टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड चैंपियनशिप्स। सबसे खास बात ये इस वक्त भारत यानी कि नई दिल्ली में हो रहा है, जहां दुनिया के बेस्ट बैडमिंटन प्लेयर्स एक दूसरे का सामना कर रहे हैं। अब यहां पे आती है कड़के वाली, तड़ाके वाली बात। अगर कल के एक मैच को देखने की कोशिश करें तो भारत का 21 साल का खिलाड़ी यानी कि आयुष शेट्टी ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसने पूरी की पूरी दुनिया को चौंका के रख दिया। भाई साहब, इनका आमना सामना हुआ दुनिया के नंबर 1 प्लेयर एंड डिफेंडिंग वर्ल्ड चैंपियन, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट शी यू की, एक ऐसा नाम जिसके आते ही कोर्ट में अच्छे अच्छे प्लेयर्स जो है वो थर्राने लगते हैं। आप अगर बैडमिंटन फॉलो करते हैं तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि वर्ल्ड नंबर 1 से पहले ही राउंड में सामना हो जाना, भाई ये जो है ना कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन देखिए मैच किस तरह से आगे बढ़ा। अगर पहले सेट की बात करें तो आयुष ने पहला गेम जीता 21-14 से, लेकिन मैच की अगर सेकंड सेट की बात करें, वर्ल्ड नंबर वन यूं ही थोड़ी ना बता है भैया, एक रोरिंग कमबैक के साथ सेकंड सेट अगर किसी के नाम गया तो वो शी यू के नाम। लेकिन थर्ड सेट जो है, यहाँ पे आया मेन कमाल। थर्ड सेट आयुष जो है 17-6 से आगे, इमेजिन करिए 11 पॉइंट का फासला। लेकिन वर्ल्ड नंबर वन यूं ही वर्ल्ड नंबर वन तो नहीं बना ना, शियू की ने कमबैक किया और देखते ही देखते स्कोर जा पहुंचा 20-19। मतलब जरा सोचें शियू का क्या प्रेशर हैंडलिंग होगा। लेकिन अब आयुष के दिमाग में एक पॉइंट पे कितनी सारी बातें चल रही होंगी, सामने दुनिया का नंबर 1 प्लेयर, इतनी बड़ी लीड उनकी ऑलमोस्ट हाथ से निकल चुकी है और अब सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट का फासला। कहते हैं ना, बड़े बड़े स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट एक ही बात कहते हैं, जब भी ऐसा कोई मोमेंट हो उस वक्त आपको एक ही काम करना है, आपको ओपोनेंट के साथ नहीं खेलना है, आपको अपनी अगली शटल के साथ खेलना है, उस अगले बॉल के साथ खेलना है। एंड एग्जैक्टली आयुष ने वही किया, आखिरी पॉइंट लिया एंड उसके बाद 21-19 से अगर जीत किसी के नाम दर्ज हुई तो वो है आयुष शेट्टी। भाई बात इतनी ना कि अगर जिंदगी को आप देखने की कोशिश करोगे तो कई बार सिचुएशन जो है हमारे आगे काफी मुश्किल, काफी टफ होती है, इतना ही कहना चाहूंगी। ऐसी सिचुएशन में आप इंसान जो आपके साथ जो भी कर रहा है उसे देखना बंद कर जो सिचुएशन है अगर उस पर फोकस करेंगे ना तो गेम ऑर्गेनिकली बाय डिफॉल्ट आपके कब्जे में, आपके हाथ में आ ही जाएगी। आयुष शेट्टी ने कल अपने गेम के जरिए हमें ये बात जो है सिखाई और तगड़ी तरह से सिखाई। बधाई जी, लख लख बधाई। अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं, अभिजीत की आवाज़, अलका याग्निक का साथ, एंड हम तो कल के गेम के दीवाने हुए।

Well, Harshit Saxena ki ye power pack awaaz and I just absolutely love this track. Now these are the songs jinhone mere college times ko high kya khas kya special banaye. Mirchi Anshu. देखो यार बात इतनी है कि गाने जो होते हैं ना कहीं आपकी किसी खूबसूरत याद से ज़रूर जुड़े होते हैं. कुछ ख़ास गाने ऐसे होते हैं जिनसे आपको एक अलग सा अटैचमेंट होता है और उसका रीज़न ये होता है कि उन गानों के ज़रिए आपने अपने ज़िंदगी का कोई तो खास मोमेंट लम्हा है जो ज़रूर जिया है. अब अगर मैं हाले दिल इस ट्रैक की बात करूँ, ज़रा सा दिल में दे जगह तो, यू नो, इन सब गानों की बात करूँ, ये सारे गाने तब आए थे जब मैं अपने कॉलेज टाइम्स में थी एंड अपने दोस्तों के साथ वो बाइक में बैठकर कॉलेज जाते वक्त एक कान में हेडफोन लगाकर दूसरे कान को खुला रख ताकि हॉर्न की आवाज़ आए रास्ते में ज़ोर ज़ोर से ये गाने गाते हुए, यू नो, कॉलेज की तरफ जाना, उसी मोड में रहना, एंजॉय करना, जब तक प्रिंसिपल या टीचर का वो स्पेसिफिक प्रोफेसर का लुक ना मिले तब तक शराफत के मोड में ना आना. क्या बेफिक्री के दिन थे, है ना यार. जब हम छोटे होते हैं ना तो ऐसा लगता है ना जाने कब हम जल्दी बड़े होंगे यार, बस जल्दी से ये फेज निकल जाए, हम पैसे कमाने लगे. आज की डेट में जब हाथों में पैसे हैं, आज की डेट में जब इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, कभी कभी लगता है यार उस समय पढ़ाई जो थी ना वो बोझ नहीं थी, कॉलेज जो था वो सिर्फ एक असाइनमेंट नहीं था. असल बेफिक्री किसे कहते हैं, ये तो वो दिन थे यार, स्कूल एंड कॉलेज के दिन. यार सच कहूँ, अगर आपके बच्चे इस वक्त लाइफ के इस फेज से गुजर रहे ना, देखिए ज़रूरी है कि आप उन्हें सिंसेयर रखें, ये ज़रूरी है कि आप उन्हें फोकस्ड रखें, बट इतना ही कहना चाहूँगी, आप खुद जानते हैं कि ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत दौर में अगर आपकी लाइफ में कोई नाम दर्ज है ना तो वो है आपके स्कूल एंड कॉलेज का वक्त, और ये पल दोबारा लौट के लाइफ में ना कभी नहीं आता है. तो बच्चों को फोकस्ड रखना, सिंसेयर रखना, लेकिन उन्हें ज़िंदगी के इस गोल्डन एरा को दिल से जीने देना यार, क्योंकि ये वक्त और ये पल जो है ना दोबारा नहीं आते. ऑलराइट, अगर कॉलेज टाइम की कोई बहुत खास मेमोरी है, कोई ऐसा पल जो आपने अपने दोस्तों के साथ बिताया या कुछ किया है, डू शेयर. यू नो इट्स सो नाइस लिसनिंग टू योर स्टोरीज एक्चुअली. 5000 1896 5000 1896. आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेजेस. इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु. मीनवाइल नविंदर एंड बादशाह की आवाज़ में अगला पावर पैक गाना हो जाए. हबीबी.

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: पूजा भट्ट, हमने सुना है कि आपके समय में इतनी पार्टियां आपके टेरेस पे होती थी, एक किस्सा तो सुनाइए यार।
3: पर आई रिमेम्बर वन सच पार्टी जहां पे मनोज बाजपेयी और आशुतोष राणा आए थे और राहुल बोस मेरे दोस्त थे और वो पहली बार मेरे टेरेस पे मिले थे। तो आई रिमेम्बर आई थिंक 5:30-6 बजे तक मैं वापस आई थी एंड आई सॉ इन अ कॉर्नर मनोज बाजपेयी, आशुतोष राणा और राहुल बोस, तीन एक लाइन में, मतलब ऐसे तीनों सो गए, वन हेड ऑन द अदर पर्सन शोल्डर। सो वो मैंने देखा, मैंने बोला कि वाह क्या कवर बनता है ये।
2: मनोज बाजपेयी, आशुतोष राणा एंड राहुल बोस नीड टू डू अ फिल्म टुगेदर। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड। She is coming for the very first time.
5: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar this 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and Aasi. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah.

0: विशाल मिश्रा की खूबसूरत सी आवाज, सचिन जिगर की कॉम्पोजिशन, फिल्म का नाम स्त्री। मुझे पता है ये आपके दिल के जज्बात हैं जो मेरे लिए निकले हैं, एंड हाय कितने ग्रेशियसली मैं इसे एक्सेप्ट भी कर रही हूँ।
1: मिर्ची अंशु
0: होला। अगर खूबसूरत की बात करूँ तो ये तो पूरा का पूरा एक्सपीरियंस होने वाला है। किसी का अंदाज, किसी का एक्सपीरियंस इतना मैजिकल कैसे हो सकता है? ये बात जो है ना आप बहुत जल्द कहने वाले हैं टू ऑल द ब्यूटीफुल पीपल, आवाम, जनता, जनार्दन। ना ना, ये अल्फाज मेरे नहीं है, ये तो उस बंदी के हैं जो हर एक लाइन के बाद आपसे ऐसा कुछ जरूर कहेगी, एंड बस कहते कहते आपको सुनते सुनते आपके दिमाग तक पहुँच कर उसमें क्या चल रहा है इसे पकड़ ही लेगी। एब्सोल्युटली, अगर दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट की बात करूँ, यानी कि सुहानी शाह, मैजिशियन की बात करूं सुहानी शाह, तो अपना मैजिक दिखाने, अपनी कलाकृति हम तक पहुंचाने ये आ रही हैं 25th ऑफ सितंबर को एट कतर नेशनल कन्वेंशन सेंटर। बड़े बड़े जिनके दिमाग को कोई पकड़ ना पाया, ये बंदियों ने एक जरा से छूकर उनके बारे में सब कुछ पहचान गई। अब बारी है आपकी, बहुत कुछ सीखने की, समझने की, खुद को एंटरटेन करने की। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर यार? टिकट्स जो है हर एक प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है, चाहे क्यू टिकट्स हो, स्नूनू सिटी हो। इतना ही कहना चाहूंगी, फटाफट से जाएं, अपनी टिकट सिक्योर करें। अभी चल रहे अर्ली बर्ड डिस्काउंट्स, जहां पे हर एक कैटेगरी में आपको मिलेगा 20% तक का ऑफर, एंड इसके अलावा 160 रियाल्स में आप 2 टिकट्स भी अवेल कर सकते हैं। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? कितनी बार समझाऊं, जाके टिकट ले लो, बाद में पछताने की बारी आएगी। अरिजीत सिंह की आवाज श्रेया घोषाल के साथ, यानी अगला प्यारा सा गाना आपके लिए, एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।
2: मैं तनु

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन?
1: नहीं नहीं हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है?
0: आजकल जिसे देखो इन्फ्लुएंसर बन के घूम रहा है, और एक मैं हूँ, मुझे रील बनानी भी नहीं आती, मैं क्या करूँ?
1: तो तू एक काम कर, मैंने रील डाला है, तू फटाफट लाइक कमेंट और शेयर तो कर दे।

0: ये गाना absolutely love this track man. ये प्यारा सा गाना तो मैंने आपको सुना दिया, लेकिन लेकिन कोई तो प्यारी सी बात है जो इस वक्त अब आप तक पहुंचा दी जाए. क्या कहती पब्लिक?
1: मिर्ची अंशु
0: भाई सब देखो, ये एक ऐसी डिश है अगर आप इसे ना पहचाने तो सच कह रही हो, फूडी कहलाने के लायक ना रह जाओगे. ये बात तो तय है. एवरी सिंगल फूड लवर अपने कान जो है पूरी तरह से खोल के खड़े हो जाओ, क्योंकि अब जिसकी दास्तान मैं आपके बीच पेश करने वाली हूँ, हाय सुबह शाम दोपहर रात सच कह रही हूँ, टाइम पास की बात हो तो बस इसका साथ हो एंड दो तीन दोस्त तैयार हों, और चाहिए तो क्या ही चाहिए, लेकिन कौन सब मैं बता दूँ तो तुम क्या बताओगे, खाओगे तो सही. ऑलराइट, तो अब एक पहेली फिर से मैं आपके बीच पेश करूंगी जो किसी खाने के आइटम की कहानी को बयां करेंगी. आपको ध्यान से सुनना है, आइडेंटिफाई करना है, फटाफट से करेक्ट आंसर मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है, विच इज 5000 1896 5000 1896, कि अगर ये है तो है किसकी दास्तां. एंड आई रियली लुक फॉरवर्ड टू रिसीविंग योर मैसेज. इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु. सो हियर वी गो. तीन कोने हैं मेरे पर मैं कोई ट्रायंगल नहीं. मेरे अंदर छुपा है राज पर मैं कोई डायरी नहीं. गर्मा गर्म मिलूं तो चेहरे पे मुस्कान आ जाए, और अगर चाय के साथ मिलूं तो मान लो महफिल ही बन जाए. तीन कोने हैं मेरे पर मैं कोई ट्रायंगल नहीं. अंदर छुपा है राज पर मैं कोई डायरी नहीं. गर्मा गर्म मिलूं तो चेहरे पे मुस्कान आ जाए, चाय के साथ मिलूं तो हाय महफिल में जान ही आ जाए. फटाफट से बताओ ये हैं तो हैं कौन. 5000 1896 ईगली वेटिंग फॉर योर मैसेजेस. इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु. मीनवाइल अरिजीत सिंह की आवाज में एक पावर पैक ब्रांड न्यू ट्रैक हो जाए. एंजॉय. बंदी का नाम अंशु.
2: मिर्ची फ्रेश माल.
3: इमरान हाशमी के सॉन्ग्स और प्लेलिस्ट हिट्स दोनों का रिश्ता पुराना है. उनकी अगली म्यूजिकल ऑफरिंग है ये आवारापन.

इस गाने को आवाज दी है अरिजीत सिंह ने, म्यूजिक दिया है अमाल मलिक ने और लिरिक्स लिखे हैं रश्मि विराग ने। आवारापन 2 से सुनते रहिए ये आवारापन, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

0: Mirci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na vid bala burga. Mirci, burga.
1: Hello.
2: Hello, Mr. Vipul, ma'am. से बोल रहा हूँ आपका कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए आपके मोबाइल का इनबॉक्स तो मैं अपना आदमी भेज दूँ या आप यहाँ पे आके जमा करा देंगे
1: इनबॉक्स चाहिए इनबॉक्स कैसा मतलब
2: मैं आपको वही समझा रहा हूँ एक्चुअली हमारी कंपनी अपना सर्वर चेंज कर रही है तो सर्वर में जो डेटा होता है अब वो सर्वर हटाएंगे तो सारा डेटा हमें कहीं तो रखना पड़ेगा ना तो हम आपके इनबॉक्स में रखेंगे कुछ दिन तक वो डेटा अब वो जब हमारा सर्वर नया लग जाएगा तो हम आपको इनबॉक्स आपका वापस कर देंगे तो मैं यहाँ से कंप्यूटर में फीड कर रहा हूँ आपका इनबॉक्स अपनी तरफ खींच रहा हूँ ठीक है सर
1: नहीं बात तो सुनो भाई साहब
2: हाँ बताइए
1: नहीं तो जो इनबॉक्स है मेरा वो तो मेरा अपने फोन मेमोरी में है ना
2: वो हम खींच लेंगे आप उसकी फिक्र मत करिए
1: नहीं तो आप कैसे उसको अपलोड करेंगे
2: मैं कुछ भी करूं यार आप ज्यादा बहस करते क्यों एक तो सर्वर वो उतार रहे हैं आप मुझसे बहस कर रहे हैं
1: बहस वाली बात नहीं है मतलब मैं खुद मालूम तो करूं ना अगर आप मेरे से कोई बात पूछ रहे हैं तो कम
2: बिल्कुल,
1: से मुझे
2: बिल्कुल, से, बिल्कुल सही कह रहे हैं
1: जा कहां रहा है
2: नहीं वो जा कहां रहा है जा यहीं रहा है आपकी कंपनी में जा रहा है और मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपको कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए अब उसमें आपको टेंशन क्या है हम आपके मैसेजेस रखेंगे उसको पढ़ेंगे सही से
1: मेरे प्राइवेट एसएमएस है उसमें मैं ऐसे किस तरह से दे दूं उसको
2: वैसे आप बुरा मत मानना आपके ये मना करने से मुझे लग रहा है कि आप मैंने उसमें सारे नॉन वेज मैसेजेस रखे हुए हैं उसमें
1: यार क्या बात कर रहा
2: है
1: मतलब
2: नॉन वेज एसएमएस क्यों रखे हुए यार आपने उसमें बेकार की बातें कर रहे हैं आप कंपनी को जरूरत है क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप उसपे मैं तो मुझे सिर्फ इनबॉक्स नहीं चाहिए मेरी बात सुनिए
1: चल
2: नहीं नहीं आपने फॉर्म भरा था सेकंड पेज पे मेरे हाथ में है रुकिए रुकिए सेकंड पेज पे लिखा हुआ है कि कंपनी आपका इनबॉक्स कभी भी ले सकती है उसमें कस्टमर को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा यहाँ तक कि आपके घर की बाल्टी आपके बर्तन आपके कपड़े तक उतरवा सकती है
1: बिल्कुल
2: क्या बात कर रहे हैं मेरी बात सुनिए आप पूरी हेलो
1: हेलो
2: हेलो भाई साहब आपने फोन काट दिया यार इनबॉक्स लेने की बात कर रहा था मैं आप फोन काट रहे हैं यार
1: आपको से फोन मत करियो मैं हाँ? इनबॉक्स बना दूंगा दिमाग खराब कर दिया
2: क्या क्या क्या क्या यार बात सुनिए आप मेरी मैं आपसे सिर्फ एक बार विपुल मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ कोई तुम्हारा इनबॉक्स नहीं चाहिए मैंने मुर्गा बनाया है तुम्हारा तुम रेडियो मिर्ची पे हो
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट शी कैन रीड योर माइंड She will blow your mind. She is coming for the very first time.
4: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar this 25th September at QNCC and to add the double bonanza of entertainment. Get ready to watch music and dance duo Charan and Aasi. शाम एक स्टेज और दो कमाल बुक योर टिकट्स नाउ एट एसटीटी स्नूनो टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स द मेंटलिस्ट सुहानी शाह

0: अरिजीत सिंह की खूबसूरत सी आवाज एंड गर्मा गर्म हाय, ये प्लेट हमारी आंखों के सामने आ ही जाए तो दिल जो है ना लुटपट हो ही जाता है। ये बात जो है 100% तय।
1: मिर्ची अंशु
0: Now this is something which is so tough to say no to. मतलब no ये शब्द इसके साथ resemble करता ही नहीं है यार। वैसे आपसे कुछ देर पहले इसी चीज़ की पहली मैंने आपके बीच पेश की थी और यही कहा था कि अगर पक्के वाले सच्चे वाले फूड लवर हो तो फटाफट से बताओ कि ये डिश है तो है कौन सी। चलो एक काम करते हैं, फॉर द सेक ऑफ पीपल हु हैव जस्ट जॉइन, जल्दी से ये पहली मैं फिर से सुनाती हूँ। सुनते सुनते लगे कि अभी भी करेक्ट आंसर पहचान लिया तो मुझे बस भेज देना 5000186 पर, 5000186। इस पहेली के पीछे है एक डिश का नाम छुपा, बताओ ये कौन है। तीन कोने हैं मेरे पर मैं कोई ट्राइंगल नहीं, मेरे अंदर छुपा है राज पर मैं कोई डायरी नहीं, गर्मा गर्म मिलूं तो चेहरे पे मुस्कान आ जाए एंड हाय चाय के साथ जो मिलूं तो बस महफिल बन ही जाए। ये हैं तो हैं कौन, फटाफट से तुम जो है अपने दिमाग की बत्ती जलाओ, लोगों ने क्या कहा है ये बता दूं।
2: हाय दिस इज अ समोसा।
3: हाय अंशु गुड मॉर्निंग, द आंसर इज समोसा विद
4: हे मिर्ची अंशु। ये अभी जो आपने सवाल पूछा इसका जवाब है समोसा।
5: हाय अंशु गुड आफ्टरनून, दिस इज प्रदीप हियर। आई थिंक ये जो आपने पहली पूछी है इसका आंसर समोसा है।
6: अस्सलामुअलैकुम, दिस इज सतीजुल अंसारी, इट्स मीन समोसा।
7: अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, खैरियत से। ये जो आपने पहली भोजी है ये खाने का जो फूड है इसको बोलते हैं समोसा।
8: गुड मॉर्निंग अंशु, दिस इज पीयूष फ्रॉम मुंबई। करेक्ट आंसर इज समोसा, चाय और समोसा बेस्ट कॉम्बिनेशन।
0: हैव
8: ग्रेट डे अंशु,
0: थैंक यू,
8: लव यू मिर्ची, बाय।
0: नहीं लव यू अंशु भी चलता था वैसे। वेल आप सबने चुका ये पूरी तरह से सही, अगर सही जवाब को देखें सो इट इज समोसा। एंड कोई समोसे को ना पहचाने तो फिर दुनिया में क्या ही जाने। वैसे ना जितने लोगों ने जवाब दिया मैंने बीच में किसी संजय लीला भंसाली का भी नाम सुना, मुझे लगा हाँ ये यहाँ पे कैसे आ गए, कोई ना कोई बड़ा सा सेट होगा इनके घर तो जाके देखना पड़ेगा। बिल्कुल यार समोसा जो है कलेजे को ठंडक भी देता है, जब गर्मा गर्म मिले तो हाय तन मन बदन जो है ना वो लुटपुट हो ही जाता है। वैसे आपको पता है इंदौर में खाऊ गली है जहाँ पे तकरीबन 52 तरह के समोसे मिलते हैं, 52 वैरायटीज ऑफ समोसा। इनफैक्ट कतर में भी मैंने बहुत सारे समोसे देखे हैं यार, पंजाबी समोसा होता है, आलू का समोसा, काजू वाला, चॉकलेट समोसा भी होता है। अच्छा चलो तुम अब मुझे बताओ कि अगर मुझे कतर में समोसा खाना है तुम्हारे हिसाब से बेस्ट समोसा मुझे कहाँ मिलेगा। आई एम रियली क्रेविंग सम समोसास टुडे। 5000186, लेट्स गेट कनेक्टेड देयर। मीनवाइल संजू राठौड़ की पावर पैक आवाज़ है अगला गाना आप तक, एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: भाई सुरेश वाडेकर की पावर पैक आवाज देखा भरद्वाज का साथन, क्या गजब का गाना। लेकिन इतना बता दूं, रात के 2:30 बजे इस वक्त से कोई तो कहानी मुझे जरूर याद है।
1: मिर्ची अंशु।
0: वेल, बात है मेरे स्कूल टाइम की। जब मैं और मेरा कजन, मेरे मासी का बेटा जो कि बिल्कुल हमम्र हुआ करता था, हम दोनों जब भी वेकेशन के टाइम में इकट्ठे एक घर पे आए, तो ये बात तो तय थी कि रात के 2:30 बजे घर से भागना है एंड कहीं ना कहीं पहुंचना है। एंड दैट यूज टू बी अ पोहा वाले की दुकान, जिसकी दुकान जो है पूरी रात खुला करती थी। एंड भाई क्या गजब पोहा उसका मिलता था। एंड ये फिक्स था कि घर वाले जो है ना, दिन में तो उतनी शरारतें करने देना, और ये स्पेसिफिकली रात के वक्त उसका ठेला लगता था, तो रात के 2:30 बजे ही निकलना है, जरूर निकलना है और इस लाइफ के एक्सपीरियंस को शामिल करके आना है। क्या दिन थे यार, मतलब वक्त जो है बीतता गया। लेकिन सच कहूँ, अगर आज अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दौर की मैं बात करूँ ना, तो स्कूल कॉलेज टाइम के आगे सब कुछ फीका यार। तो अगर आपके बच्चे उम्र के उस पड़ाव में हैं, तो मैं इतना कहना चाहूँगी, उन्हें फोकस्ड रखें, सिंसेयर रखें, लेकिन जिंदगी के सारे मजे हैं ना, उन्हें दिल से लेने दें। चले जी, मजे तो इस वक्त वैसे उनके भी हैं जिनके अकाउंट में पैसे हैं। तगड़ा एक्सचेंज रेट हो तो मजे तो हो ही जाते हैं। वैसे अगर आज आप ट्रांसफर करना चाहेंगे तो 1 रियाल के अगेंस्ट आपको मिलेंगे इंडियन रुपीज 26.19, पाकिस्तानी रुपीज 76.20, लंकन रुपीज मचाते हुए बजाते हुए डंका 91.15, नेपाली रुपीज 41.90 एंड बांग्लादेशी टका 33.66। घर भेजो पैसे, ढेर सारी खुशियां, थोड़े पैसे अंशु के अकाउंट में। नो थैंक यू यार, यू आर सो क्यूट। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: आलिया, आपकी मम्मी सोनी राजदान बड़ी क्यूट है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं राजी के सेट पे were you nervous or excited to work along with your mom? What was the feeling?
2: You know, I was very nervous, क्योंकि पहले तो मम्मी भी है, पर number one, first my co-actor. On set वो मेरी पहली co-actor है, पहली मम्मी नहीं बन सकती. तो मैं nervous थी, क्योंकि मुझे लगा कि अगर वो nervous है तो मैं ज्यादा nervous हो जाऊंगी. अगर उनको लाइने शायद नहीं आते हैं तो मैं कैसे कहूंगी कि उनको नहीं आ रहा है. तो आई वॉज लाइक, मुझे ऐसा लग रहा है मैं दो लोगों के लिए एक्टिंग कर रही हूँ. यू नो, मैं जब वो पहली बार सेट पे आई, पर तब
1: आलिया वो आपके जैसी नहीं, आप उनके जैसी हैं. चिकन और एग, व्हाट केम फर्स्ट? मेरे हिसाब से चिकन. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
0: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
3: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड. She is coming for the very first time.
4: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and Aasi. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at STT Snoo Noo. Tickets available in all leading ticketing platforms.

0: देखो एक बात मैं साफ साफ कह दूं कि बातें जो हैं वो बहुत हो गई, अब ना थोड़े सीरियस एक्शन की बारी है।
1: मिर्ची अंशु।
0: और हाँ, एक बार जो मैंने कह दिया सो बस कह दिया। अरे भाई, एक बार फिर से जब कतर वर्ल्ड चैंपियनशिप होस्ट करे तो सीरियस एक्शन ना हो तो फिर क्या ही हो। एंड अब की बार बारी है अंडर 17 वॉलीबॉल बॉयज वर्ल्ड चैंपियनशिप की। बिल्कुल ठीक सुना आपने, 19th ऑफ अगस्त को शुरू हो रहा है महासंग्राम, चलेगा 29th ऑफ अगस्त तक एट अल अरबी स्पोर्ट्स क्लब एंड लेडीज स्पोर्ट्स हॉल, एंड वी कुडंट बी मोर एक्साइटेड अबाउट इट। भाई वो सारे मेगा इवेंट्स एंड टूर्नामेंट्स जिनके बारे में हम कभी अखबारों में पढ़ा करते थे, टेलीविजन स्क्रीन में देखा करते थे, आज के डेट में ठीक वो हमारी आंखों के सामने। वेल, इतना कहना चाहूंगी इस टूर्नामेंट में जरूर जाएं, एंट्री जो है पूरी तरह से फ्री है, एंड अपने बच्चों को साथ में लेकर जाएं। देखिए, एक पंथ दो काज होगा, बच्चे जो हैं जेन्युइनली रेजिलियंस किसे कहते हैं, हार्डवर्क किसे कहते हैं, ये सारी बातें सीखेंगे, जुनून के बारे में सीखेंगे, एंड आप जो है कह पाएंगे बड़े आराम से, अरे ये तो वही बच्चे हैं जो हमारी आंखों के सामने खेल कूद के बड़े हुए हैं, क्या पता कल के दिन ओलंपिक्स पहुंच जाएं, किसी वर्ल्ड चैंपियनशिप में पहुंच जाएं, हम ये क्रेडिट तो ले पाएंगे। जस्ट सेइंग। स्टेडियम टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु, एंजॉय।

0: गाने को गाया है सुबोध शर्मा ने, म्यूजिक दिया है मिथुन ने और लिरिक्स लिखे हैं सईद कादरी ने। फिल्म आवारा पंटू से सुनते रहिए बेजुनून, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: यार पता है, मुझे ऐसा लगता है कि सक्सेस का जो राज है ना कहीं इस एक शब्द में छुपा हुआ है।
2: मिर्ची अंशु
1: और जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट एंड ये सबसे खूबसूरत लव्स है कोशिश। पता है क्या, हम ना जिंदगी में हार अक्सर तब नहीं मानते जब हम हार जाते हैं, हम हार तब मानते हैं जब हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। यार एक इंटरव्यू नहीं निकला, शायद मेरे लिए बना ही नहीं है, ये बिजनेस भी नहीं चला यार, शायद मुझसे हो ही नहीं सकता, ये ऑडिशन फिर से खराब हो गया यार, शायद मैं इसके लिए बना ही नहीं हूं, है ना। कितना आसान है हार मान लेना यार। लेकिन बात इतनी है ना कि अगर पहली कोशिश में ही सारे के सारे फैसले होने लगे तो दूसरी कोशिश नामक ये टर्म दुनिया में आया तो आया क्यों? कोशिश की सबसे खूबसूरत बात बस यही तो है कि हर बार जरूरी नहीं कि वो आपको आपकी मंजिल तक बस ले जाए, कभी वो आपको आपकी मंजिल के थोड़ा और करीब लाती है, कभी कुछ सिखा जाती है तो कभी कुछ बदल जाती है और कभी आपको पहले से बेहतर बना जाती है। तो अगर कोई काम आज ना हो ना तो कल परसों करते रहना, लेकिन तब तक ना छोड़ना जब तक तुम जो है ना अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं जाते। क्योंकि किसी ने कहा है ना, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब बताओ ये किसने कहा है? 5000 1896 waiting for your messages, Instagram मिर्ची 1 कतरिया मिर्ची अंशु। इसका जवाब WhatsApp में ही मिलेगा। Meanwhile, stay tuned to मिर्ची, बंदी का नाम अंशु।

0: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. La vieux bala burka. Mirchi burka.
1: Hello.
2: Hi. ये पे आपकी फ्री कॉल है। अगर आप अकेले बैठे हुए हैं और चाहते हैं किसी को अपना बनाना, किसी से अभी बात करना, तो हैश दबाइए। कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल उस तक पहुंचा रहे हैं जिससे आप बात करना चाहते हैं।
3: हेलो।
1: हेलो,
3: कौन बोल रही हैं
1: आप? कौन बोल रही हैं?
3: बोल नहीं रही हूँ, मैं बोल रहा हूँ यार, मेरी लड़की से बात करानी थी, फोन आया था मेरे पास।
1: तो भाई मेरे पास भी तो फोन आया था।
3: तो यार आप कहाँ से बीच में आ गए? वो कह रहे थे लाइफ पार्टनर, मैं लड़की से बात करना चाह रहा हूँ।
1: टाइम पे दोनों को भी, आपको भी करा होगा फोन, उन्होंने मुझे भी करा होगा, तो मैंने भी मिला दिया।
3: मैं क्या पागल हूँ यार, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, मुझे भी तो टाइम पास करना है, लड़की का इंतजार कर रहा था मैं यार। मेरे पास फोन आया था, आप अपनी चला रहे हैं, मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ क्या?
1: ये तो वहाँ से मेरे पास,
3: अरे यार
1: जैसे आपके पास आया कि भी अगर आप खाली बैठे,
3: हो सकता है।
2: हाय, आप दोनों की कॉल गलती से मिल गई है, कृपया लाइन होल्ड रखें, आप दोनों को अपने अपने पार्टनर तक पहुंचा दिया जाएगा।
3: हेलो।
1: हेलो,
3: कौन बोल रही? अरे भाई यार, मैं लड़की के चक्कर में यार, कहां से आ रहे हो यार बीच में? मैं मेरी लाइन,
1: भाई ये नंबर क्या है, तू बता, तू क्यों लाइन में आ रहा है?
3: मैं कहां से लाइन पे आ रहा हूं यार? तू लाइन में आ रहा है? मैं लाइन में आ रहा हूं। अच्छा, एक घंटे से मैं एक लड़की से बात करने के लिए चाह रहा हूं यार, तू मुझ पर चिल्ला रहा है, मेरे पास कॉल आई है यहां पे। हाँ तो दो मिनट रुक, तू कर ले, तेरे को जा रहा
1: है,
3: बदतमीजी मत कर, तू बड़ा शरीफ आदमी है जो यहाँ पे इस लाइन में आया हुआ है, इस सर्विस में।
2: हाय, कृपया करके लड़ाई बंद करें, अब आपकी लास्ट फाइनल कॉल हम उस लड़की तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन लाइन तक पहुँचने के लिए आप कहिए मेरे साथ कुकड़ू कू।
1: हेलो
2: सर, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद।
3: हाँ तो दो मिनट रुक, तू कर ले, तेरे को जा रहा
1: है,
3: बदतमीजी मत कर, तू बड़ा शरीफ आदमी है जो यहाँ पे इस लाइन में आया हुआ है, इस सर्विस में।
2: हाय, कृपया करके लड़ाई बंद करें, अब आपकी लास्ट फाइनल कॉल हम उस लड़की तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन लाइन तक पहुँचने के लिए

0: It ke saath only on Mirchi. It's hot.
1: Yep, again.
2: Driven by Shackman Trucks, zabardast power aur cleaner energy ka naya chapter. Shackman Heavy Duty Trucks and Boom Trucks, power that saves. Distributed by Carmel Group. घर बैठे चाहिए नया कार्ड, स्मार्ट चॉइस है ओरिजो मनी कार्ड. अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर. एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल. और सुनो, हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू आईफोन 17 प्रो मैक्स. लेट मत करो, ऑर्डर योर ओरिजो मनी कार्ड स्ट्रेट अवे. TNC अप्लाई.
3: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड. She is coming for the very first time.
2: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and Aasi. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah.

0: देखो बड़ी किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिन्हें सीधा इस दरबार से बुलावा आता है।
1: मिर्ची अंशु।
0: अरे अल्लाह ऊपर वाला तुम्हें अपने दरबार में बुलाए, तुमसे खुद मुलाकात करे, अपने घर पे बुलाए। सोचो जिंदगी में इससे बड़ी खुशी की बात कोई हो सकती है? तो बहुत सारे लोगों के अरमान जो हैं इस साल जरूर पूरे हुए, कईयों के अरमान जो हैं आने वाले साल में भी पूरे होंगे। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट हज 2027। तो अगर आपको लगता है कि बिल्कुल आपने भी इसकी तैयारी कर ली है, तो आपकी सेहत फिट है, पूरी तरह से फिटनेस सर्टिफिकेट आपके पास है, या आपको अवेल करने की तैयारी कर चुका है प्राइमरी हेल्थ केयर कॉर्पोरेशन यानी कि PHCC। बिल्कुल एप्लीकेंट्स जो हैं जिन्हें भी फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए, वो किसी भी फैमिली मेडिसिन क्लिनिक जो कि PHCC से अफिलिएटेड है वहाँ पर थ्रू आउट द वीक विजिट कर सकते हैं। इनफैक्ट बिना किसी अपॉइंटमेंट के भी आप विजिट कर सकते हैं। एंड बेसिक टेस्ट के बाद आपको सर्टिफिकेट जो है वो हैंड ओवर हो जाएगा। एंड एक बार शारीरिक तौर से आप पूरे मजबूत हैं, उसके बाद तो आप तैयारी शुरू करेगा। अल्लाह का बुलावा आया है, उस दरबार में जाएंगे, झूमते नाचते गाते। एंड बस यही दुआ है कि आपकी जो भी मुरादें हों वो जरूर पूरी हों। चलिए जी, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। टिक के बने रहें, सुनते रहें कतर का नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची। इट्स हॉट, एंजॉय।

0: नहीं, ये बात तो तुमने सुनी है ना कि बच्चे जो हैं बोलने से ज्यादा देखकर सीखते हैं।
1: मिर्ची अंशु
0: नहीं, मतलब ये ज्ञान तुमने अपने बच्चों को कितनी बार दिया होगा कि बेटा सुनो, काम जो है ना ये कभी टालना नहीं है, प्रोक्रेस्टिनेशन को अपनी जिंदगी में शामिल ही नहीं करना है। जो काम तुमको कल करना है वो आज करो, एंड आज करना है तो अब करो। हर दिन हम ये भाषण जरूर देते हैं लेकिन ना अपनी जिंदगी में हम जो है ये इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। नहीं सोच रहे हो ना, अरे ठीक है बहुत टाइम है। सुहानी शाह लाइव इन कतर 25th of September को होने वाला है कतर नेशनल कन्वेंशन सेंटर में। इसकी टिकट अभी क्या यार, बाद में बुक कर लेंगे। देखते देखते वो कल आएगा, तुम्हें लगेगा कोई नहीं जी आज कर लेंगे, फिर लगेगा कोई नहीं शाम तक तो ऑफर भी खत्म हो गया है, अब करें तो क्या करें। इसीलिए कह रही हूँ, इससे पहले कि अर्ली बर्ड डिस्काउंट खत्म हो, फिजिबिलिटी पूरी तरह से हाथ से निकल जाए, जाओ और अपनी टिकट्स अभी के अभी सिक्योर करके आओ। हर एक प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है, चाहे मैं स्नूनू सिटी की बात करूँ, क्यू टिकट्स की बात करूँ। अर्ली बर्ड डिस्काउंट फर्स्ट एंड लास्ट टाइम आपकी जिंदगी में आया है। 20% तक का ऑफर है अक्रॉस ऑल टिकट कैटेगरीज। इनफैक्ट 160 रियाल्स में 2 टिकट्स भी मिल रही हैं। सो काल करे तो आज कर, आज करे सो अब, अभी अभी बुक करो। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु। एंजॉय।

0: Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: अर्जुन, आलिया के बारे में एक ऐसी बात बताओ जो हमें नहीं पता।
3: मैं आपको एक बात बताऊं, लोगों ने मुझे फोन करके बोला प्लीज कांग्रेचुलेट आलिया भट्ट फॉर हाईवे। तो आई सेड मेरी भी पिक्चर लगी थी पिछले हफ्ते गुंडे सर। हाँ हाँ वो है, पर हाईवे में क्या काम किया लड़की ने?
4: पर अर्जुन ने तो हाईवे देखी नहीं है,
3: जैसे
4: तो
3: आलिया ने गुंडे देखी नहीं है। शी डजंट लाइक टू बी एंटरटेन्ड। और एक्चुअली सच बात बताऊं तो जो मैंने उसे सिखाया फाइनली शी इज बीन एबल टू इनकल्केट इट इन हर डेली लाइफ। और इतना डिसिप्लिन लाया है इसकी जिंदगी में मैंने, बात करके समझा के इसके दिमाग में जो चीजें मैंने घुसाई है ताकि ये जिंदगी भर याद रख सके कि एक्टिंग इज प्राइमरी एंड इम्पोर्टेंट।
2: सम रियली इम्पोर्टेंट लाइफ लेसंस अर्जुन कपूर। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
5: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
6: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and Aasi. शाम एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट SCT Snoo Noo. टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स।

0: जिंदगी का असल मजा तो बस इसी बात में है।
1: मिर्ची अंशु
0: कि जिंदगी के हर पल को हम मजेदार बनाएं। यार मेरा ना लाइफ का फंडा एंड फिलॉसफी जो है इन दिनों काफी सिंपल एंड काफी क्लियर हो चुकी है। चाहे मैं जो भी करूं, मैं ऑफिस का काम करूं, मैं घर का काम करूं, फिर चाहे मैं कपड़े भी क्यों ना समेटूं, लेकिन जो भी काम को मैं कर रही हूं ना उसे मैं मस्ती में मजे में एंजॉय करते हुए करूंगी। यार देखो दो तरीके हैं, एक तो काम को करना है सड़ सड़ के करो यार, ये भी करना है वो भी करना है ऐसा भी हो गया भाई, इवेंचुअली तुम्हें ही करना है ना। तो दूसरा तरीका है जब पता है कि हमें करना है तो उसे दिल से जीते हुए मस्ती में खुशी से करो यार। एंड एक पॉइंट के बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली ना तुम्हें लाइफ का हर मोमेंट हैपनिंग लगने लगेगा क्योंकि तुमने अपनी जिंदगी को हैपनिंग बनाने का ठान लिया है। तो बस अभी मैं जा रही हूँ लंच करने। लंच तो मैं वैसे भी बड़ी खुशी से करती हूँ लेकिन पूरी तरह से फोन से डिस्ट्रैक्टेड, सोशल मीडिया से दूर, अपने खाने की प्लेट में फोकस्ड होकर उस खाने को एंजॉय करते हुए खाना है। एंड आज का मेरा यही टारगेट है। How about you? 5000 1896. Look forward to hearing from you. Instagram, Mirchi1Kataria, Mirchi Anshu. Meanwhile, stay tuned to Mirchi Bandi ka naam Anshu. Enjoy.

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: जी बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन, बता बेटा सवाल क्या है।
0: सर, मैंने 3 अलग अलग बिजनेस किए, उनके लिए मार्केटिंग भी किया, पर कुछ बिक नहीं रहा। मैं क्या करूं, कुछ सोल्यूशन बताओ ना।
1: अरे बेटा, सिंपल सा सोल्यूशन है, तू एक काम कर, दुकान ही बेच दे।
2: I'm joking.

0: कभी कभी कुछ ऐसा होता है ना कि आप कुछ पढ़ लेते हो और वो चीज जो है वो आपके दिमाग में जाकर एकदम सही जगह पर पिंच करती है। ऐसा ही कुछ मैंने कल पढ़ा और जब मैंने पढ़ा ना तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया। मैंने कहा यार ये तो मैं आपको सुना के रहूंगी।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tuned in with me on Mirji. और मैंने ना चंद लाइन्स पढ़ी और मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो कितना रेजोनेट करता है यार लाइफ से। मैंने कहा कि यार आप बड़े शौकीन हो इन सारी चीजों के तो आपको भी सुनाती हूँ ये चीज। तो बात कुछ ऐसी है कि एक बचपन का जमाना था जिसमें खुशियों का खजाना था, चाहत चांद को पाने की थी पर दिल तितलियों का दीवाना था, थक कर आना स्कूल से फिर भी खेलने जाना था, बारिश में कागज की नाव थी हर मौसम सुहाना था, रोने की वजह ना थी ना हंसने का बहाना था, क्यों हो गए हम इतने बड़े इससे अच्छा तो बचपन का जमाना था। देखा लगा ना, वाकई में लगा ना, मतलब हम अपनी लाइफ में अलग ही अडल्टिंग का जोन जो है वो लेकर बैठे हुए होते हैं, अपनी लाइफ चल रही होती है, कट रही होती है, फिर एकदम से आप कुछ पढ़ लेते हो, आप कुछ देख लेते हो और फिर आपको लगता है ओ नो, हाँ यार वो भी क्या जमाना था और बचपन हमें जरूर याद आना था। तो चलो फिर थोड़ा और याद करते हैं 90 के जमाने को और मिड्डे मोहब्बत की गाड़ी को उसी तरफ घुमाती हुई 90s के गियर में डालती हुई आपसे कहती हूँ स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iscabana, uscabana, sacabana. Rambala. Murga, murga. La vieja la murga.
2: Mirchi, murga.
3: Hello.
4: Oh, madam, good evening.
3: Hi.
4: बैंक से बोल रहे हो ना, हमारी नई स्कीम आई है मैडम, ताजी स्कीम है, बढ़िया स्कीम है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल कम।
3: सब्जी बेच रहे हैं या लोन के लिए?
4: पहले सब पहले सब्जी बेचता था।
3: अगर अगली बार फोन आ गए ना
4: मैडम, तमीज से बात करो वरना यहीं से चपेट मारूंगा सारे दांत। बात कर दो।
3: हेलो
4: मैडम, अगर ये स्कीम लोगी तो धनिया साथ फ्री दे दूंगा। वे
3: वहीं आके ऐसा तेरे पैर तो मारूंगी ना।
5: प्रीति, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे पहली बार ही एहसास हुआ कि लड़कियों से ज्यादा पंगे लेने नहीं चाहिए, अपने ऊपर पड़ जाती है यार। आप रेडियो मिर्ची में इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? आपका मुर्गा बन गया।
4: मैडम आपका तो मुर्गा बन गया।
5: प्रीति, ये जो बीप बीप हो रहा था, ये बीप हटा दूं मैं एक बार दिल्ली को सुना दूं?
3: नहीं,
5: से सॉरी।
3: I'm sorry, no, I'm sorry.
5: प्यार से बोल दीजिए कोकड़ो को है।
3: कुकड़ू गो।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, only on मिर्ची, it's hot.
7: Yep, yeah,
8: जस ने सोचा था सिर्फ वाइफ क्यों, लंदन में एक गॉर्जियस गर्लफ्रेंड भी रख लूं। जस को लगा है जवानी तो इश्क होना है, पर जब पुराने रिश्ते नए सीक्रेट से टकराए तो एक लाई छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़े। एक लड़का, दो लव स्टोरीज और अनलिमिटेड केयर्स। है जवानी तो इश्क होना है। स्ट्रीम इट नाउ ओनली ऑन Z5। डाउनलोड द ऐप नाउ।
9: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड. She is coming for the very first time.
8: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar, this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and Aasi. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah live in

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: मेरा ना समीर सोनी पर बहुत बड़ा क्रश था एंड आई न्यू ही इज अ मॉडल क्योंकि मैंने ना उनकी एक झलक दूध दूध दूध दूध वो वाले एड में देखी थी और मैं जब भी देखती थी ना देख देख कर उछल जाया करती थी। तो जब उनकी मूवी चाइना गेट आई उसे मैं कैसे मिस कर सकती थी यार।
0: मिर्ची VCR।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड नहीं, मैं इतना डिसीजन मेकिंग में नहीं थी कि सबको उठा के थिएटर लेकर चली जाती कि नहीं नहीं मुझे चाइना के थिएटर में देखनी है। नहीं नहीं, इतनी हम लोगों की औकात नहीं हुआ करती थी एज किड्स। ये तो केबल पर जब मूवी आई तो मैंने उसको मिस नहीं किया। एंड वेल, ये समीर सोनी की डेब्यू फिल्म तो थी ही थी लेकिन टेक्निकली समीर सोनी वॉज नॉट अ हीरो इन द फिल्म, ही वॉज एक्चुअली डूइंग अ सपोर्टिंग रोल क्योंकि मेन लीड्स तो यार अमरीश पुरी, नसीरुद्दीन शाह, डैनी डोंगजप्पा, ओम पुरी ये सब थे और इस फिल्म में समीर सोनी के ऑपोजिट थी ममता कुलकर्णी। लेकिन क्या आपको पता है कि जो चाइना गेट का पोस्टर बना था ना उस पर ममता कुलकर्णी कहीं नजर नहीं आई थी। और इसके पीछे रीजन ये है कि ममता कुलकर्णी और राजकुमार संतोषी के बीच में एक मेजर फॉल आउट हुआ था। हालांकि इस लड़ाई के बाद वो वापस मूवी करने के लिए आई तो सही लेकिन उसके बाद राजकुमार संतोषी ने उन्हें अपनी फिल्म में ज्यादा प्रमोट नहीं किया और जो पोस्टर बना चाइना गेट का उसमें बाकी सारे एक्टर्स के साथ उर्मिला मातोंडकर की पिक्चर लगाई गई ना कि ममता कुलकर्णी की। हालांकि उर्मिला वॉज इन द फिल्म फॉर जस्ट वन सॉन्ग एंड दैट वॉज छम्मा छम्मा। लेकिन ऑनेस्टली आई मीन पूरी फिल्म करने के बाद भी ममता को इतना नाम नहीं मिला जितना कि उर्मिला मातोंडकर को एक गाना करने के बाद मिला था। लेकिन क्या आपको पता है इस पूरी कास्ट में एक ऐसे एक्टर थे जिन्होंने अपना रोल निभाने के लिए न जाने कितने दिनों तक नहाया ही नहीं था। बताऊंगी आपको आगे थोड़ी देर में। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: मेरे मन को भाया मैं कुत्ता काट के खाया। बोलो ये कौन सी मूवी का डायलॉग है?
0: मिर्ची चैट रूम।
1: हाय दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और सही जवाब है चाइना गेट। मतलब चाइना गेट में न जाने कितने सारे ऐसे डायलॉग्स थे जो कि आज तक मुझे याद है। एक तो ये डायलॉग, एंड देन देयर वाज दिस वन और डायलॉग जिसमें कि प्लेटफॉर्म का सीन होता है और एक जनाब दूसरे जनाब से पूछ रहे होते हैं कि भाई साहब आपके बजे में कितने घड़े हैं। अगला इंसान कहता है नौने पौं। I still use this dialogue in my life. अगर पौने नौ बज रहे होते हैं और कोई मुझसे पूछ ले कि कितने बज रहे हैं तो मैं नौने पौ ही बोलती हूँ, पौने नौ नहीं बोलती। लेकिन कमिंग बैक टू चाइना गेट, हाँ ये जो फिल्म बनी थी इसके अंदर जो जगीरा का रोल प्ले करने वाले मुकेश तिवारी थे, जिनकी की ये पहली ही फिल्म थी, उन्हें न जाने कितने सारे अवार्ड्स में नॉमिनेट किया गया था फॉर हिज विलेनियस रोल। हाँ, और किया भी क्यों ना जाना चाहिए था, इतना सराहा गया था उनका ये कैरेक्टर बिकॉज उन्होंने काम ही ऐसा किया था। लेकिन लोगों को ये नहीं पता है कि अपने कैरेक्टर को बरकरार रखने के लिए, उसका लुक मेंटेन करने के लिए और जगीरा जैसा फील करते रहने के लिए मुकेश तिवारी ने न जाने कितने दिनों तक नहाया ही नहीं था। हाँ जी, वो बिल्कुल अपना परफ्यूम इस्तेमाल किया करते थे, एंड ही डिड नॉट टेक अ शावर जस्ट सो दैट ही लुक्स एज गंदा एज जगीरा। इसे कहते हैं मेथड एक्टिंग। सर्दियों में हम भी यही करते हैं। हाँ, वी ऑल्सो टेक अप अ कैरेक्टर एंड वी वॉन्ट टू लुक लाइक दैट कैरेक्टर, एंड दैट इज एग्जैक्टली द रीजन कि बहुत सारे लोग शावर नहीं ले रहे होते हैं सर्दियों में। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का बता रहा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: हाय देयर, व्हाट्स अप, टेल मी।
0: सर मैं नोटिस पीरियड पे हूँ और हाथ में दूसरी जॉब भी नहीं है, क्या करूँ?
1: वेल, ये बात तुझे पहले नोटिस करनी चाहिए थी सेनोरिटा। अब सेम जॉब ना मिलेगी दोबारा।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: आपको दूरदर्शन का गुमशुदा की तलाश सेगमेंट याद है?
0: मिर्ची पे टीवी दर्शन.
1: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा. डीडी वन पर रोज शाम को जब न्यूज आया करती थी तो उसमें एक सेगमेंट हुआ करता था गुमशुदा की तलाश. याद तो हो गई यार, जो आज हमारे लिए अपने दोस्तों के लिए एक ताना बन के रह गया है कि हम अब उनके लिए कहते हैं कि तुम आते नहीं हो इसलिए हमें गुमशुदा की तलाश है. लेकिन ये कभी एक सीरियस सेगमेंट हुआ करता था जहां गुमे हुए लोग जो है उन्हें ढूंढने की कोशिश की जा रही होती थी वाया द टेलीविजन. बट एक राज की बात बताऊं मैं आपको, जब इस सेगमेंट में गुमशुदा लोगों की पिक्चर स्क्रीन पर दिखाई जाती थी ना, तो ऑनेस्टली अगर वो इंसान मेरे पास भी बैठा होता ना तो मैं भी उसे नहीं पहचान पाती. वैसे तो आज भी किसी लड़की का फोटो देखकर उसे ढूंढना मुश्किल हो जाए, क्योंकि बिना मेकअप ऑफ कोर्स किसी का चेहरा समझ नहीं आता और बिना मेकअप कोई आजकल फोटो नहीं खिंचवाता. बट एनीवेज, जोक्स अपार्ट, हम बच्चे ना इस सीरियस सेगमेंट को मजाक बना दिया करते थे. जब कोई फोटो स्क्रीन पर दिखती थी ना तो हमारा बोलना शुरू हो जाता था एक दूसरे की टांग खींचते हुए और एक दूसरे को छेड़ते हुए कि अरे देख तेरी फोटो दिखा रहे हैं टीवी पर. और पता नहीं इसमें छेड़ने वाली बात क्या थी और छिड़ने वाली बात क्या थी कि छेड़ने वाला छेड़ता था और छिड़ने वाला भी बुरी तरीके से तुनक जाता था और छिड़ जाया करता था. बट जो भी था भाई, बात ये भी कितनी सही है ना कि आज किड्स हम सीरियस चीज में भी फन ढूंढ लेते थे. एंड आई होप कि आप आज भी इस प्रथा को फॉलो करते हो, बिकॉज़ लाइफ को हम सीरियसली नहीं ले सकते बाबू मुशाए. क्यों? क्योंकि लाइफ इटसेल्फ इज यूज्ड टू क्रैकिंग जोक्स ऑन अस. इसी बात पर ताल से ताल मिला. कमिंग अप दिस नेक्स्ट ट्रैक, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Mirchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Na vidva la burka. Mirchi, burka.
2: Mirchi.
3: It's Navid.
2: बोल रहा हूँ.
3: अगर किसी का वो जो बनाते हैं आप उल्लू, उसके लिए क्या करना पड़ेगा?
2: वो आपको मुझे बताना होगा.
3: तो मैं अभी बता दूँ.
2: एक सेकंड, ये फॉर्म भर देते हैं. क्या नाम है आपका?
3: संजना.
2: संजना, किसका मुर्गा बनवाना है आपको?
3: अपने हस्बैंड का.
2: क्या बात कर रही हैं, और कोई नहीं मिला आपको?
3: फिलहाल अभी कोई और दिमाग में नहीं आ रहा.
2: अच्छा संजना, मुझे प्लीज आप ये बता देंगे कि ये इनको कितना गुस्सा आता है, ताकि मैं उसी हिसाब से इनसे बात करूँ फिर मुर्गा बनाऊँ. बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं?
3: भड़क भी जाते हैं.
2: अरे बाप रे. तो मुझे संजना प्लीज बता देंगे किस तरह भड़कते हैं ये?
3: अब्यूजिंग वे में. थोड़ा
2: अब्यूजिंग वे में, जैसे कि कैसे?
3: आप मुझे शुरू कीजिए फिर मैं बताऊं.
2: ओके चलिए. हेलो सर, मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ, फलाना बैंक से. सर आपको लोन देना है, दो मिनट दे सकते हैं?
3: नहीं मेरे पास अभी टाइम नहीं.
2: सर थोड़ा सा दो मिनट दे दीजिए यार, क्या बात जाती है आपकी? अरे शर्म किस बात की यार, हम लोन बेच रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए. सर आप एक तो तमीज से बात करिए, आप लोन लेना है ले लीजिए, तमीज से बात करिए, बदतमीज कहीं का. मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं इस तरीके से किसी का मुर्गा बनाऊं. और संजना मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा था कि तुम्हारा मुर्गा बन चुका है. रेडियो मिर्ची पे.
3: मैंने अपना बनवाने के लिए फोन दे दिया था.
2: हम तो किसी का ही बनाए थे, आपके हस्बैंड से ज्यादा हमदर्दी हो गई, किस दिन उनका ही बनाएंगे. फिलहाल आपका बन गया है. मेरे साथ प्यार से कह दो एक बार, कुकड़ू कू. थैंक यू.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
4: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड. She is coming for the very first time.
5: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and Aasi. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snoo Noo. Tickets available in all leading ticketing platforms.

0: ये वो गाना है जो आपको ऑफिस में वायरल कर सकता है। मोहित चौहान ने गाया इतनी मस्ती में ना इस गाने को, आई स्वेयर। यू नो व्हाई आपको वायरल कर सकता है? क्योंकि अगर इस गाने को आप ईयरफोन्स पे सुन रहे हो ना, तो आप आसपास की दुनिया जो है ना उसको तो भूल ही जाओगे, और फिर आसपास की दुनिया को भूलने के बाद जो आप अपने आप में खो जाओगे और नाचते हुए नजर आओगे और अजीब अजीब सी आप क्रियाएं करते हुए नजर आओगे ना, तो ऑफकोर्स वायरल होना तो बनता है ना बॉस। ये गाना ही वही है जो आपको दुनिया भुला देता है, आपकी करंट प्रॉब्लम्स जो हैं वो भुला देता है, और आपको सिर्फ और सिर्फ जिंदगी की ताल पर नहीं इस गाने की ताल पर नचा देता है।
1: सारा जमाना है सारा का दीवाना।
2: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और हम जो म्यूजिक के इतने दीवाने हैं मेरे यारा, वही तो आ जाते हैं रोज रोज ये कहने के लिए कि मान ना मान करो गानों की पहचान। अब सिंस मुझे पता ही है कि आप म्यूजिक के इतने फैन हो और म्यूजिक आपके लिए थेरेपी है, तो यहीं पर मैं एक दाव खेल जाती हूँ और रोज आपके लिए एक सवाल गाने की सूरत में चलाती हूँ और दो गानों की धुनों को मिक्स करके आती हूँ और आपसे पूछती हूँ कि बताओ यार ये दोनों गाने कौन से हैं। तो आज की जो दो धुनों का मिक्स है वो है कुछ यूं, गिव इट अ लिसन।

बस जी, अब आपको डीएम करना है ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा, और बता देना है कि ये दो कौन से गाने हैं जो अभी आपने सुने। मिर्ची सारा इज माई इंस्टाग्राम हैंडल, याद रखिएगा। एंड स्टे ट्यून्ड रहिए विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: I'm not too sure आपने अर्जुन रामपाल और मनीषा कोइराला की मोक्ष देखी है कि नहीं, क्योंकि ये फिल्म कब आई कब गई पता ही नहीं लगा, लेकिन मैंने जरूर देखी है, क्योंकि यार केबल पे जो फिल्म आती थी ना रात के 12 बजे के बाद वो मैं डेफिनेटली देखा करती थी।
2: मिर्ची टग्स ऑफ फिल्मिस्तान।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड वेल, ये फिल्म नहीं लेकिन इस फिल्म का एक गाना ऐसा है जिसकी पूरी की पूरी धुन, यानी कि जो म्यूजिक है इस पूरे पूरे गाने का, वो कट कॉपी पेस्ट है, थैंक्स टू मिस्टर राजेश रोशन जिनका म्यूजिक इस गाने में दिया गया है। द गाना इज दिस वन।

और इसे उठाया गया है फ्रॉम एन आर्टिस्ट जिनका नाम है वैंगेलिस, और इन्होंने ये म्यूजिकल कॉम्पोजिशन बना के बस छोड़ दिया था शायद इसी दिन के लिए कि एक दिन राजेश रोशन आए, यही म्यूजिक ऐसा का ऐसा उठाएं और इसको अपने गाने के बेड पे लगाएं और गाना चलाते जाएं।

फिलहाल के लिए डेफिनेटली नॉट दिस ट्रैक, लेकिन कमिंग अप अनदर वन आपके लिए, झूम जाओगे। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolder.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: नंदीश संधु टीवी एक्टर
3: बालों में क्या लगाते हैं ये बता के आप चले जाइए इतने सुंदर बाल तो हो ही नहीं सकते
4: आपकी आंखें वैसे बहुत सुंदर हैं
3: मैं अपनी आंखों में कुछ नहीं लगाती सिवाय
4: जुनून अपनी आंखों में खुदी खोजा सिवाय किस
5: जुनून के
2: अगर ये अपार शक्ति खुराना और नंदीश संधू और सिद्धांत गुप्ता के बीच के ओ आ मैं आप सुन नहीं पाए मैंने कहा मैं अपनी आंखों में जुनून के अलावा कुछ नहीं लगाती आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट
0: बॉलीवुड बोल्डर बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डर
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
6: शी कैन रीड योर माइंड शी विल ब्लो योर माइंड She is coming for the very first time.
7: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar this 25th September at QNCC and to add the double bonanza of entertainment. Get ready to watch music and dance duo Charan and Aasi. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Tickets available in all leading ticketing platforms.

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन?
1: नहीं नहीं हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है?
0: आजकल जिसे देखो इन्फ्लुएंसर बन के घूम रहा है, और एक मैं हूँ, मुझे रील बनानी भी नहीं आती, मैं क्या करूँ?
1: तो तू एक काम कर, मैंने रील डाला है, तू फटाफट लाइक कमेंट और शेयर तो कर दे।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: हम आपके एक और एक ऐसी फिल्म है जिसको मैंने 175 बार देख लिया होगा और आज भी देर इज अ डे जब मूड बनता है और हम एक दूसरे को कहते हैं हम आपके एक और देखे क्या
2: ये है नब्बे की गप्पे।
1: हाय दिस इज मी सारा आपकी 90s की यादों का पिटारा। देखो यार जज करना है तो जज कर लो, मैं तो भाई हूँ सूरज भरजातिया फैन, अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। और हम आपके कौन को इतनी बार देखने के बाद वर्ड टू वर्ड, डायलॉग टू डायलॉग और सीन टू सीन मुझे चीजें याद हैं। नाउ देयर इज अ सीन जब घर में खुशखबरी आती है यानी कि बच्चे की किलकारी जो है वो सुनाई देती है, सब हॉस्पिटल में एक दूसरे को कहते हैं हम आपके कौन देखे क्या
2: ये है नब्बे की गप्पे।
1: हाय दिस इज मी सारा आपकी 90s की यादों का पिटारा। देखो यार जज करना है तो जज कर लो, मैं तो भाई हूँ सूरज भरजातिया फैन, अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। और हम आपके कौन को इतनी बार देखने के बाद वर्ड टू वर्ड, डायलॉग टू डायलॉग और सीन टू सीन मुझे चीजें याद हैं। नाउ देयर इज अ सीन

थे, दैट इज डॉक्टर चाची इन द मूवी हम आपके हैं कौन. उस वक्त दैट सीन वॉज एक्चुअली नॉट प्लान्ड, वो सलमान खान ने एकदम से कर दिया था. एंड हिमानी शिवपुरी का इस पर रिएक्शन ये था कि उन्होंने हल्के से ना सलमान खान को एक चाटा मार दिया था, बिकॉज वो चौंक गई एकदम से कि ये क्या हुआ. एंड शी इन एन इंटरव्यू टोल्ड कि यू नो सलमान खान वॉज अ प्रैंकस्टर एंड यू नो ऐसी हरकतें वो कुछ ना कुछ करते ही रहते थे और ये भी एक वैसी ही सी हरकत थी. अब ये सारी चीजें जो है उस सीन में कैमरे पे कैप्चर हुई, तो सूरज भरजातिया ने भी डिसाइड किया कि इस सीन को रखते हैं, हम इसमें टेक नहीं लेते हैं बिकॉज ऑफ द रीजन कि ये अच्छा लग रहा है. एंड एक्चुअली ये कितना अच्छा लग रहा है, आई एक्चुअली लव दिस सीन जब वो डॉक्टर चाची को गोद में उठा के बच्चे की तरह खिला रहे होते हैं. आज के जमाने में है कोई माइका लाल जो ऐसा कर सकता है? ना मुन्ना ना, बड़ी मुश्किल से मिल पाते हैं. यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Energy.
1: Escabana, escabana, sacabana. Cabana. Burga, burga. La vieja la burga. Energy, burga.
2: Hello.
3: Hello, Mr. Vipul, ma'am. से बोल रहा हूँ आपका कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए आपके मोबाइल का इनबॉक्स तो मैं अपना आदमी भेज दूँ या आप यहाँ पे आके जमा करा देंगे
2: इनबॉक्स चाहिए इनबॉक्स कैसा मतलब
3: मैं आपको वही समझा रहा हूँ एक्चुअली हमारी कंपनी अपना सर्वर चेंज कर रही है तो सर्वर में जो डेटा होता है अब वो सर्वर हटाएंगे तो सारा डेटा हमें कहीं तो रखना पड़ेगा ना तो हम आपके इनबॉक्स में रखेंगे कुछ दिन तक वो डेटा अब वो जब हमारा सर्वर नया लग जाएगा तो हम आपको इनबॉक्स आपका वापस कर देंगे तो मैं यहाँ से कंप्यूटर में फीड कर रहा हूँ आपका इनबॉक्स अपनी तरफ खींच रहा हूँ ठीक है सर
2: नहीं बात तो सुनो भाई साहब
3: हाँ बताइए
2: नहीं तो जो इनबॉक्स है मेरा वो तो मेरा अपने फोन मेमोरी में है ना
3: वो हम खींच लेंगे आप उसकी फिक्र मत करिए
2: नहीं तो आप कैसे उसको अपलोड करेंगे
3: मैं कुछ भी करूं यार आप ज्यादा बहस करते क्यों एक तो सर्वर वो उतार रहे हैं आप मुझसे बहस कर रहे हैं
2: बहस वाली बात नहीं मतलब मैं खुद मालूम तो करूं ना अगर आप मेरे से कोई बात पूछ रहे हैं तो कम
3: बिल्कुल,
2: से मुझे
3: बिल्कुल से, बिल्कुल सही कह रहे हैं
2: जा कहां रहा है
3: नहीं वो जा कहां रहा है जा यहीं रहा है आपकी कंपनी में जा रहा है और मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपका कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए अब उसमें आपको टेंशन क्या है हम आपके मैसेजेस रखेंगे उसको पढ़ेंगे सही से
2: मेरे प्राइवेट एसएमएस है उसमें मैं ऐसे किस तरह से दे दूं उसको
3: वैसे आप बुरा मत मानना आपके मना करने से मुझे लग रहा है कि आप मैंने उसमें सारे नॉन वेज मैसेजेस रखे हुए हैं उसमें
2: यार क्या बात कर रहा
3: हूं
2: मतलब
3: नॉन वेज एसएमएस क्यों रखे हुए यार आपने उसमें बेकार की बातें कर रहे हैं आप कंपनी को जरूरत है क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप उसपे मैं तो मुझे सिर्फ इनबॉक्स नहीं चाहिए मेरी बात सुनिए
2: चल
3: नहीं नहीं आपने फॉर्म भरा था सेकंड पेज पे मेरे हाथ में है रुकिए रुकिए सेकंड पेज पे लिखा हुआ है कि कंपनी आपका इनबॉक्स कभी भी ले सकती है उसमें कस्टमर को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा यहाँ तक कि आपके घर की बाल्टी आपके बर्तन आपके कपड़े तक उतरवा सकती है
2: कंपनी ये कर सकती है
3: बिल्कुल क्या बात कर रहे हैं मेरी बात सुनिए आप पूरी हेलो
2: हेलो
3: भाई साहब आपने फोन काट दिया यार इनबॉक्स लेने की बात कर रहा था मैं फोन काट रहे हैं यार यार बात सुनिए आप मेरी मैं आपसे सिर्फ एक बात विपुल मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ कोई तुम्हारा इनबॉक्स नहीं चाहिए मैंने मुर्गा बनाया है तुम्हारा तुम रेडियो मिर्ची पे हो
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
5: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
6: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar this 25th September at QNCC and to add the double bonanza of entertainment. Get ready to watch music and dance duo Charan and Aasi. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Tickets available in all leading ticketing platforms.

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Dear, आजकल के जमाने के नेम लेबल और हमारे टाइम में स्टिकर कहलाने वाले
2: यादों को चिट्ठी।
1: आज स्टेशनरी देखती हूँ ना तो चौंक जाती हूँ। आजकल तुम्हें पता है जो तुम्हारी आज की पीढ़ी है उन पर तो नाम लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उन पर नाम टाइप ही आते हैं मेड टू ऑर्डर। लेकिन बैक इन आवर स्कूल टाइम्स, स्कूल खुलने से पहले इट यूज्ड टू बी अ टास्क कि हम मम्मा के साथ बैठकर अपनी बुक्स और कॉपीज पर कवर चढ़ाया करते थे, फिर उसके बाद तुम्हें चेरी ऑन द टॉप की तरह बुक्स पर लगाया करते थे और फिर लास्ट लेग होता था सब किताबों पर हमारा नाम, क्लास और सेक्शंस लिखे जाना। और तुम होते भी तो कितनी वैरायटी के थे यार, कहीं फ्लावर्स वाले तो कहीं कार्टून्स वाले। और बीटी तो तब होती जब स्कूल अपनी तरफ से बोरिंग वाले लेबल्स खरीदने को कंपल्सरी कर चुके थे, तब लगता था कि कितना काम है यार। लेकिन आज जो काम करते हैं उनके बीच लगता है कि यार वो भी क्या मस्त काम हुआ करता था जिसे हम कितनी सीरियसली लिया करते थे। एक दिन अपने फन के लिए आई डिसाइडेड कि आज मैं अपने नेफ्यू की किताबों पर कवर्स चढ़ाऊंगी और स्टिकर्स लगाऊंगी और उनपे उसका नाम, क्लास, सेक्शन ये सब लिखूंगी। मैं बड़ी एक्साइटेड थी इस काम को लेकर। फिर पता लगा कि मेरी भाभी ने तो किसी को पैसे देकर ये काम करवा लिया है और लेबल पर नाम लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एवरीथिंग इज प्रिंटेड। सुन रहे हो, तुम्हारी आज की जनरेशन भी ना काफी तरक्की कर चुकी है लेकिन मुझे फिर भी तुम पसंद हो। तुम्हें आज भी अपने ख्यालों में पढ़ती तुम्हारी सारा। एंड नाउ कमिंग अप अ ट्रैक जो आज तो प्यार मोहब्बत की याद दिलाता है लेकिन ये डायलॉग हमने क्लास मॉनिटर्स से बहुत सुना है जब हम बातें खूब किया करते थे क्लास में, तो क्लास मॉनिटर्स यही कहा करते थे कि कुछ ना कहो। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Oof, ये सवाल हम अक्सर प्यार से करते ही करते हैं. कौन सा सवाल? भाई, कैसेट की साइड ए का दूसरा गाना.
2: मिर्ची 90s कैसेट.
1: सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज में दिस नशीला गाना. बट डू यू नो, इस गाने की म्यूजिक की इंस्पिरेशन एग्जॉर्सिस्ट 2 मूवी की रीगन थीम से ली गई है. बट इजंट इट कूल कि पल में डराने वाली म्यूजिक को बड़ी खूबसूरती से प्यार में गिराने वाली म्यूजिक बना दिया. और ये काम करने वाले इंसान थे द म्यूजिक कंपोजर ऑफ दिस ट्रैक, संदीप चौटा. और इस गाने में ना मुझे ये लाइन बहुत ऐप लगी कि पहली दफा उसे देख कर होने लगा कुछ ऐसा असर, खुद से हुई मैं बेखबर, मैं हूँ यहाँ, दिल मेरा है वहाँ. अरे अरे अरे अरे, आप कहाँ चल दिए, अभी तो ये गाना आपको पूरा सुनना है यार. तब इस गाने में गहराई से खो जाइएगा, पर पहले मेरा खुदा हाफिज कबूल तो करिए. तो इसी के साथ मैं आपसे कहती हूँ हम है राही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते. बाकी यहाँ के अलावा मैं आपको मिली जाती हूँ ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा. अपना ख्याल रखिएगा और हम फिर मिलेंगे, सेम प्लेस सेम टाइम बट नॉट द सेम डे. स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट.

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: आलिया, आपकी मम्मी सोनी राजदान बड़ी क्यूट है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं राजी के सेट पे वर यू नर्वस और एक्साइटेड टू वर्क अलोंग विद योर मॉम, व्हाट वाज द फीलिंग?
3: यू नो आई वाज वेरी नर्वस क्योंकि पहले तो मम्मी भी है, पर नंबर वन फर्स्ट माय को एक्टर ऑन सेट, वो मेरी पहली को एक्टर है, पहली मम्मी नहीं बन सकती। तो मैं नर्वस थी क्योंकि मुझे लगा कि अगर वो नर्वस है तो मैं ज्यादा नर्वस हो जाऊंगी। अगर उनको लाइने शायद नहीं आते हैं तो मैं ऐसा कहूंगी कि उनको नहीं आ रहा है, तो आई वाज लाइक मुझे ऐसा लगता है मैं दो लोगों के लिए एक्टिंग कर रही हूं। यू नो मतलब वो पहली बार सेट पे आई, पर तब
2: आलिया वो आपके जैसी नहीं, आप उनके जैसी हैं। चिकन और एग, व्हाट केम फर्स्ट? मेरे हिसाब से चिकन। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डर, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डर
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड। She is coming for the very first time.
5: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Tickets available in all leading ticketing platforms.

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: जी बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन, बता बेटा सवाल क्या है।
0: सर, मैंने 3 अलग अलग बिजनेस किए, उनके लिए मार्केटिंग भी किया, पर कुछ बिक नहीं रहा। मैं क्या करूं, कुछ सोल्यूशन बताओ ना।
1: अरे बेटा, सिंपल सा सोल्यूशन है। तू एक काम कर, दुकान ही बेच दे।
2: I'm joking.

0: 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट।
1: मिर्ची की स्टूडियो क्लॉक में टाइम हो गया है शाम के चार। मस्त मौला गौरव के साथ शुरू होता है शाम शानदार।
2: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।

0: 89.6 मिर्ची वन पर। नहीं नहीं घबराइए मत, मैं आ गया हूँ। और क्योंकि मेरी आवाज ऐसी हो गई इसलिए मैंने इससे भी बुला लिया है। हाँ ईशा, थैंक यू, तुम आ गई यार। मेरी स्थिति देख रही हो, पता नहीं मेरे गले को क्या हो गया है।
1: आ गई गौरव, मैं एकदम भागती हुई आई हूँ, देखो मेरा सांस भी एकदम फूल रहा है।
0: अरे बाप रे बाप, थैंक यू, तुम आ गई राइट टाइम
1: पे। तुमने अपनी आवाज को क्या कर लिया गौरव, क्या हो गया? कितनी आइसक्रीम फ्री की खा ली तुमने?
0: नहीं यार, आइसक्रीम फ्री की नहीं खाई, एक स्कूप या दो स्कूप मैक्स खाई होगी और एक कोल्ड ड्रिंक पी ली, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा गला उससे इतना बुरा।
1: बस ज्यादा हो गया गौरव, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें ना तुम्हारे गले को किसी की नजर लग गई है।
0: तो जरा नजर लग गई, नजर उतार,
1: नमक वमक उतार के ना अपनी नजर थू थू थू कर दो।
0: ओके चलिए, हम नजर उतार रहे हैं, तब तक ईशा और मेरे साथ एंजॉय करिए। अब आगे आने वाले टाइम में हम बहुत सारी बातें बताएंगे। ओनली 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La birba, la burga. Milci, burga.
1: Hello.
2: Oh, madam, good evening.
1: Hi.
2: बैंक से बोल रहे हो ना, हमारी नई स्कीम आई है मैडम, ताजी स्कीम है, बढ़िया स्कीम है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल कम।
1: सब्जी बेच रहा है या लोन के लिए?
2: पहले सब पहले सब्जी बेचता था।
1: अगर अगली बार फोन आ गया ना
2: मैडम, तमीज से बात करो वरना यहीं से चपेट मारूंगा सारे दांत। बात कर दो।
1: हेलो
2: मैडम, अगर ये स्कीम लोगी तो धनिया साथ फ्री दे दूंगा। वे
1: वहीं आके ऐसा तेरे पैर तो मारूंगी ना।
3: प्रीति, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि लड़कियों से ज्यादा पंगे लेने नहीं चाहिए, अपने ऊपर पड़ जाती है यार। आप रेडियो मिर्ची में इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? आपका मुर्गा बन गया।
2: मैडम आपका तो मुर्गा बन गया।
3: प्रीति, ये जो बीप बीप हो रहा था, ये बीप हटा दूं मैं एक बार? दिल्ली को सुना दूं?
1: नहीं नहीं नहीं नहीं।
3: से सॉरी,
1: आई एम सॉरी नवे, आई एम सॉरी।
3: प्यार से बोल दीजिए कोकड़ो को है।
1: कुकड़ू गो।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
5: हर बार वही रेगुलर रिचार्ज क्यों? अपने हाला नंबर के लिए ओरेडो का योर स्पेशल ऑफर पाइए। मोर वैल्यू मेड फॉर योर नीड्स। अभी ओरेडो ऐप पर चेक करें या करीबी रिटेलर से मिलें। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडो।
6: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड। She is coming for the very first time.
7: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and Aasi. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah live.

0: अरे नहीं भाई, इसको बुलाया तो ये पक्का आएगी।
1: मस्त मौला गौरव। कौन, मैं?
0: हाँ हाँ, तुम्हारी तो बात कर रहे हैं। आज मैंने अपने गले के हालात को देखते हुए जो वीकेंड पे सिर्फ आती थी उससे कहा वीकडे पे आ जाओ, और ईशा ने मेरी बात मान ली। कहा चलो अब मैं तुम पर
1: एक एहसान कर देती हूँ कि तुम इस एहसान को कभी भूलो ना।
0: मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान मत करना।
1: नहीं नहीं
0: लेकिन तुम्हें खुद मजा आता है ना इवनिंग में बात करने में।
1: चलो, जब से आपने मुझे वो एक अपॉर्चुनिटी दी थी ना, तो मेरा मन करता है कि मैं सच्ची में कनेक्ट कर लूं।
0: नहीं ज्यादा मत करो, नहीं तो मेरी नौकरी खतरे में आ जाएगी। इन सबके बीच तुम ये बताओ, तुम एयरपोर्ट पर जाकर लाउंज में गए, बैठ गए कि अपनी सीट पे जाके गेट के पास बैठकर वहाँ अपने मोबाइल को स्क्रॉल करती हो?
1: नो, आई एम तो भाई शॉपहोलिक, तो भाई मैं तो करती हूँ बहुत सारी शॉपिंग जिससे मेरा सामान और बढ़ जाता है,
0: और इसके साथ तुम्हारे पति का बीपी भी बढ़ जाता होगा।
1: हाँ वो भी बढ़ जाता है, नॉट टू वरी, उसके लिए दवाई है।
0: लेकिन आपको भी ढेर सारा लगेज उठाकर एयरपोर्ट पर चला नहीं जाता, तो हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने रिमाइंड कराया है कि पैसेंजर्स के लिए वहां पर एक कॉम्प्लीमेंट्री शटल सर्विस चलती है। विद इन एवरी 15 मिनट्स ये शटल सर्विस आपको मिलती है।
1: इजी रहता है वो सारा लगेज और उनको लेके जाना, या फिर कोई बुजुर्ग है आपके साथ या आपके साथ बच्चे हैं तो आई थिंक आप इजीली हैंडल कर सकते हो।
0: और इसकी अलग अलग लोकेशन है, आप एयरपोर्ट पे इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। एंड बेस्ट पार्ट इज कोई बुकिंग नहीं चाहिए इसके लिए, कोई प्री बुकिंग, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। एयरपोर्ट पहुंचो और सीधे बग्गी पर राइड करके अपने गेट तक चले।
1: लेकिन गौरव ये बहुत अच्छी बात है कि हर 15 मिनट में ये शुरू हो रही है, उसके अलावा भी आप मतलब कहीं पे भी इसको देख सकते हैं, एंड यू कैन टेल देम कि भाई हमें को यहाँ पे छोड़ना है, इस गेट पे जाना है, एंड इट्स वेरी इजी फॉर द पीपल, यू नो,
0: ऑफ कोर्स इजी फॉर योर हस्बैंड आल्सो, क्योंकि शॉपिंग बैग्स, जर्नी बैग्स, हर अलग अलग चीजों की सूटकेस अलग अलग, सो बेचारे के लिए दया तो आ ही रही है। फिलहाल मस्मोना गौरव और ईशा आपके साथ, बोलिए शाम शानदार मिर्ची 89.6
1: मिर्ची 1 इट्स हॉट।

0: गौरव क्या सोच रहे हो? गौरव
1: तुमको पता लगा क्या मैं कुछ सोच रहा हूँ?
0: नहीं बट ऐसा क्या सोच रहे हो? बहुत डीप थिंकिंग में हो तुम।
1: तुम भी सुहानी शाह की तरह सोचने लगे हो क्या? वीडियोस देख रहे हो क्या उसकी तुम?
0: नहीं ऐसा तो नहीं है, लेकिन हाँ मैं काफी वीडियोस उनकी देखी हैं, लेकिन मेरे में भी थोड़ी सी क्वालिटी है। मैं भी इंट्यूशन बहुत तेज है, मेरी भी इंट्यूशन जो बोलती है ना वो सही हो जाती है एकदम।
1: बताओ इस वक्त मेरे दिमाग में क्या चल रहा है?
0: लड्डू पेड़े स्वीट
1: खाना तो चल रहा है, लेकिन आज गला साथ नहीं दे रहा, इसलिए कुछ गर्म खाने का मन कर रहा है। तो लड्डू पेड़े की जगह ईशा तुम मुझे खिलाओ ना गर्मा गर्म समोसे। फिलहाल इन सब के बीच दिमाग में वाकई क्या चल रहा है ये एक इल्यूजन क्रिएट करके मेंटलिस सुहानी शाह जरूर दिखाती है, और वो आ रही है अपने कतर में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। सुहानी शाह लाइव इन कतर 25th ऑफ सितंबर
0: को आ रही है ये, और अगर आप अपनी टिकट्स बुक करवाना चाहते हैं तो जल्दी से जाके अपनी टिकट्स बुक करवा दीजिए।
1: यस टिकट्स अवेलेबल एट ऑल लीडिंग प्लेटफॉर्म्स यानी कि प्लैटिनम लिस्ट, क्यू टिकट्स एंड हमारे टिकटिंग पार्टनर एस सिटी स्नूनू, जहां पर बकायदा आपको अर्ली बर्ड ऑफर मिल रहा है।
0: और क्या आप जानते हैं कि ये जो सुहानी शाह हैं ये बचपन से ही मैजिक में बहुत इंटरेस्टेड,
1: जस्ट एट द एज ऑफ 7 शी इज अ स्कूल ड्रॉप आउट, उन्होंने स्कूल छोड़ दिया
0: यार।
1: और कहा कि मैं करूंगी मैजिक, और मैजिक किया ऐसा कि आज पूरी दुनिया दीवानी है, और अब उसी मैजिक को हमें यहाँ विटनेस करना है।
0: बट वही है ना यार, जज्बे की बात है, डिटर्मिनेशन अगर इंसान में आ जाए तो वो सुहानी शाह जैसा बन सकता है।
1: यार यही मेरी मम्मी भी मुझसे कहती थी कि बस डिटर्मिनेशन दिखाओ, पढ़ाई कर लो। मैं टॉपर नहीं बन पाया, लेकिन मिडिल टॉपर बन गया, 60% से थोड़ा कम रह गया, पर कर लिया।
0: वो बचपन में बोलते थे ना नीचे से टॉप किया है, नीचे से टॉप
1: मैंने मिडिल में टॉप किया था। फिलहाल आप सुहानी शाह की टिकट्स बुक करते रहिए, हमारी पंचायतें यूं ही चलेंगी। 89.6 मिर्ची वन,
0: इट्स हॉट।

0: मेरे को तो लग रहा है ये बिल्कुल गलत आ रहा है मामला।
1: क्या मामला गलत है भाई?
0: अरे गर्मी ज्यादा लग रही है पर टेम्परेचर उतना ज्यादा दिखा तो नहीं रहा है।
1: हाँ यार गर्मी तो बहुत है, मेरा तो दिमाग ही नहीं चलता है।
0: अब सोचो तुम्हारा गर्मी दिमाग नहीं चलता है, मेरा दिमाग खराब हो जाता है और कई लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन टेम्परेचर दिखा रहा है 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास।
2: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
3: वेदर अपडेट।
0: अब लग रहा है तुमको 42 डिग्री सेल्सियस है खाली ना?
1: अरे नहीं यार,
0: ये टेम्परेचर की रियल फील 47-48 वाली आ रही है। गाड़ी के अंदर बैठे तो गाड़ी तंदूर वाली फीलिंग दे रही है, पसीना अलग हो रहा है।
1: हाँ बात तो सही कह रहे हो गौरव।
0: और ईशा सच बता रहे हो, नहा के निकल लो लगता है फिर नहा लिया बाहर पसीने होते।
1: सीरियसली मतलब ऐसा गला घुटती है ना गर्मी बाहर, ऐसा लगता है
0: ह्यूमिडिटी ही है,
1: मार डालेंगे। और आजकल ना मैंने एक चीज नोटिस की है, बहुत फॉगी फॉगी दिखने लग गया है।
0: वो सोचो जो बेचारे चश्मे पहनते हैं, दिन भर वाइपर चलाते हैं अपने चश्मों पर,
1: जैसे ही बाहर निकलते हैं कहीं से भी आंखों के आगे घेरा हो जाता है बादलों का।
0: बस इतना ही कहना चाहता हूँ, अगले कुछ दिनों तक गर्मी और रहेगी। इनफैक्ट आपको वीकेंड पे डस्टी वेदर मिलने वाला है, थोड़ा आराम नाल रहिएगा। एंड अगर आपको एलर्जी है, डस्ट एलर्जी, तो बचेगा क्योंकि कुछ हवाएं काफी तेज आने वाली हैं जिसकी वजह से ये डस्टी वेदर हो जाएगा।
1: और आप एक ही गाना गाओगे
0: क्या?
1: हाय गर्मी,
0: हाय गर्मी। तो आइए अगला गाना वही सुन लेते, 89.6 मिर्ची वन, हाय गर्मी।
4: अरे यार कोई एसी चला दो यार।

0: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal. Only on Mirchi. It's hot. अर्जुन, आलिया के बारे में एक ऐसी बात बताओ जो हमें नहीं पता।
1: मैं आपको एक बात बताऊं, लोगों ने मुझे फोन करके बोला प्लीज कांग्रेचुलेट आलिया भट्ट फॉर हाईवे। तो आई सेड मेरी भी पिक्चर लगी थी पिछले हफ्ते गुंडे सर। हाँ, वो है, पर हाईवे में क्या काम किया लड़की ने?
2: पर अर्जुन ने तो हाईवे देखी नहीं है,
1: जैसे
2: तो
1: आलिया ने गुंडे देखी नहीं है। शी डजंट लाइक टू बी एंटरटेन्ड। और एक्चुअली सच बात बताऊं तो जो मैंने उसे सिखाया, फाइनली शी इज बीन एबल टू इनकल्केट इट इन हर डेली लाइफ। और इतना डिसिप्लिन लाया है इसकी जिंदगी में मैंने, बात करके समझा के इसके दिमाग में जो चीजें मैंने घुसाई है ताकि ये जिंदगी भर याद रख सके कि एक्टिंग इज प्राइमरी एंड इम्पोर्टेंट।
0: सम रियली इम्पोर्टेंट लाइफ लेसंस अर्जुन कपूर। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
3: बॉलीवुड बोल्डाल। Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
4: Only on Mirchi. It's hot.
5: जस ने सोचा था सिर्फ वाइफ क्यों, लंदन में एक गॉर्जियस गर्लफ्रेंड भी रख लूं। जस को लगा है जवानी तो इश्क होना है, पर जब पुराने रिश्ते नए सीक्रेट से टकराए तो एक लाई छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़े। एक लड़का, दो लव स्टोरीज और अनलिमिटेड केयर्स। है जवानी तो इश्क होना है। स्ट्रीम इट नाउ ओनली ऑन Z5। डाउनलोड द ऐप नाउ।
6: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड। She is coming for the very first time.
5: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and Aasi. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist, Suhani Shah, live in

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: यस ऑफ कोर्स, मिर्ची हेल्पलाइन बोलिए।
0: मेरा बॉस एआई पे ज्ञान देता रहता है और मुझे डांटता रहता है कि मुझे एआई से रिप्लेस कर देगा, क्या करूं?
1: अरे तू सिंपल है ना, उसको बोल तुझे रिप्लेस कर देगा तो डांटेगा किसे, एआई को।
2: खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़।

0: 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।
1: मिर्ची के स्टूडियो क्लॉक का टाइम शाम के 5 और मेरे साथ चल रहा है मेरा शो शाम शानदार।
2: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।

0: शाम शानदार ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1। कतर में बॉलीवुड का मिर्ची वाला तड़का, इट्स हॉट। मिर्ची फ्रेश माल,
1: एक्सप्लोसिव वाइब और पावर पैक्ड एनर्जी का डोज तबाही।

0: इस गाने को गाया है और कंपोज किया है विशाल मिश्रा ने और लिरिक्स लिखे हैं राजशेखर ने। फिल्म टॉक्सिक से सुनते रहिए तबाही, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: विशाल मिश्रा की आवाज में गाना खत्म हुआ और आज तबाही तो दो दो तरीके से आई है।
2: मस्त मौला गौरव,
1: अरे हम अकेले नहीं है, मेरे साथ
3: और गौरव, क्या तुम जानते हो कि अभी रिसेंटली ना कॉर्निश में पूरी मेंटेनेंस हुई है और सड़कें साफ हुई हैं, सड़कों को रिपेयर किया है, इतना कुछ हो गया है। तुम्हें कानों कान खबर भी हुई इस चीज की?
1: नहीं, खबर तो यहाँ हो ही नहीं पाती ना, क्योंकि रातों रात चमचमा जाती हैं सड़कें।
3: हाँ, और इसीलिए ताकि लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, रातों रात सब काम हो जाता है और सुबह आपको चमचमाती हुई सड़कें मिल जाती है।
1: और ऐसी ही एक सड़क अभी आपको मिलेगी अगर आप लुसेल ओनाइजा वाले टनल के पास है, तो उस पूरी टनल पर क्लीनलीनेस का जबरदस्त काम हुआ है ताकि आपके और हमारे लिए एक बेहतरीन माहौल तैयार किया जा सके गाड़ी चलाने का। सारे साइनेज बिल्कुल चमचमाते हुए नजर आएंगे एंड बहुत सारे पॉल्यूटेंट वहां से हटाए गए हैं, एक सेफर एनवायरनमेंट हो मोटरिस्ट के लिए इसका ध्यान रखा गया। इनफैक्ट मैं कल देर रात जब वापस आ रहा था तो वक्रा में भी स्टेशन के नीचे का टनल वहां पर भी मार्किंग्स को ठीक किया जा रहा था। ट्रस्ट मी यार, कतर में रातों रात कितनी सारी चीजें कर दी जाती है ताकि दिन के टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो।
3: और इसलिए ना हमारी भी ड्यूटी बनती है कि इस समय जब रोड साइड सिग्नल्स होते हैं कि काम हो रहा है, कुछ ऐसे
1: डाइवर्जन
3: लगाई हैं, तो हमें
1: स्पीड
3: बहुत जरूरी है कि स्पीड लिमिट्स पे ध्यान दिया जाए, आराम से गाड़ी लेके जाए, हुर हुर करते हैं ना जाए, और
1: रिस्पॉन्सिबल
3: इंसान बने।
1: बिल्कुल, मजदूर भाई लोग काम करते हैं हमारे लिए, वो सड़कें चमका रहे हैं।
3: एग्जैक्टली,
1: उनकी जिंदगी में किसी प्रकार का कोई कभी कॉम्प्रोमाइज ना हो सेफ्टी से, ये हमें और आपको मेंटेन रखना है। लेकिन एक बात बोलूंगा ईशा, जितना काम अशगल यहाँ एक रात में कर दे रहा है उससे ज्यादा घंटे तो तुम लोग एक दिन में तैयार होने में ले लेती हो।
3: इतना लिफा पोती तो हम अपना एक टाइम का मेकअप करते ना उतने में ये
1: अशगल, तो अशगल के लिए तालियां हो जाए, अशगल के लिए तालियां हो जाए। 89.6 मिर्ची वन पर,
3: इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Yabana. Burga, burga. La vedva la burga. Milci, burga.
1: Hello.
2: Hi. ये पे आपकी फ्री कॉल है। अगर आप अकेले बैठे हुए हैं और चाहते हैं किसी को अपना बनाना, किसी से अभी बात करना, तो हैश दबाइए। कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल उस तक पहुंचा रहे हैं जिससे आप बात करना चाहते हैं।
3: हेलो।
1: हेलो,
3: कौन बोल रही हैं?
1: आप कौन बोल रही हैं?
3: बोल नहीं रही हूँ, मैं बोल रहा हूँ यार, मेरी लड़की से बात करानी थी, फोन आया था मेरे पास।
1: तो भाई मेरे पास भी तो फोन आया था।
3: तो यार आप कहाँ से बीच में आ गए? वो कह रहे थे लाइफ पार्टनर, मैं लड़की से बात करना चाह रहा हूँ।
1: टाइम पे दोनों को भी, आपको भी करा होगा फोन, उन्होंने मुझे भी करा होगा, तो मैंने भी मिला दिया।
3: मैं क्या पागल हूँ यार, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, मुझे भी तो टाइम पास करना है, लड़की का इंतजार कर रहा था मैं यार। मेरे पास फोन आया था, आप अपनी चला रहे हैं, मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ क्या?
1: ये तो वहाँ से मेरे पास,
3: अरे यार
1: जैसे आपके पास आया कि अगर आप खाली बैठे।
3: हो सकता है, हो सकता है।
2: हाय, आप दोनों की कॉल गलती से मिल गई है, कृपया लाइन होल्ड रखें, आप दोनों को अपने अपने पार्टनर तक पहुंचा दिया जाएगा।
3: हेलो।
1: हेलो,
3: कौन बोल रही है? अरे भाई यार, मैं लड़की के चक्कर में यार, कहां से आ रहे हो यार बीच में? मैं मेरी लाइन,
1: भाई ये नंबर क्या है, तू बता, तू क्यों लाइन में आ रहा है?
3: मैं कहां से लाइन पे आ रहा हूँ यार, तू लाइन में आ रहा है? मैं लाइन में आ रहा हूँ। अच्छा, एक घंटे से मैं एक लड़की से बात करने के लिए चाह रहा हूँ यार, तू मुझ पर चिल्ला रहा है, मेरे पास कॉल आई है यहाँ पे। हाँ तो दो मिनट रुक, तू कर ले, तेरा कुछ जा रहा
1: है?
3: या बदतमीजी बदतमीजी मत कर, तू बड़ा शरीफ आदमी है जो यहाँ पे इस लाइन में आया हुआ है, इस सर्विस में।
2: हाय, कृपया करके लड़ाई बंद करें, अब आपकी लास्ट फाइनल कॉल, हम उस लड़की तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन लाइन तक पहुँचने के लिए आप कहिए मेरे साथ कुकड़ू कु। सर, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दुनिया आपको सुन रही है, कम से कम इतनी तमीज होनी चाहिए यार, आप लड़की से बात करना चाह रहे हैं, किस तरह का टाइम पास करना चाह रहे थे?
1: तो वो आ रहा जा रहा, मुझे लग रहा भाई मुझे भी टाइम पास करना था, मुझे भाई मालूम था ये।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: जस ने सोचा था सिर्फ वाइफ क्यों, लंदन में एक गॉर्जियस गर्लफ्रेंड भी रख लूं। जस को लगा है जवानी तो इश्क होना है, पर जब पुराने रिश्ते नए सीक्रेट से टकराए तो एक लाई छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़े। एक लड़का, दो लव स्टोरीज और अनलिमिटेड केओस, है जवानी तो इश्क होना है। स्ट्रीम इट नाउ ओनली ऑन Z5, डाउनलोड द ऐप नाउ।
5: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड। She is coming for the very first time.
4: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar, this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist, Suhani Shah, live.

0: ਓ ਪਾਪਾ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
1: तो मतलब तुम भी वैसे ही करती थी जैसे मैं करता था, गाड़ी लेके घुमाए जा रहे और पेट्रोल खत्म ही नहीं हो रहा।
0: देखती नहीं थी कि मम्मी है, पापा है, पापा का टकला सिर पे ऐसा जड़ा के ज़ूम
1: मतलब ब्रिज थे घर में। बिल्कुल मिलाकर हम ये बात कर रहे हैं फॉर्मूला वन के लिए। यस, फॉर्मूला वन कतर ग्रांड प्री 2026, जिसके लिए कतर एयरवेज ने बकायदा एक एक्सक्लूसिव हॉलीडे पैकेज लॉन्च कर दिया है।
2: #974974 द मोस्ट ट्रेंडिंग लोकल न्यूज ऑफ द डे।
1: यस, हम आपको बताना चाहते हैं कतर एयरवेज ने बकायदा कतर स्टॉप ओवर एक्सपीरियंस का एक जबरदस्त एयरवेज पैकेज लॉन्च किया है, जहां पर फॉर्मूला वन कतर एयरवे कतर ग्रांड प्री 2026 आप देख सकते हो, और 3 दिन के फॉर्मूला वन की रेस टिकट्स मिलेंगी। इसके साथ ही साथ कतर के होटल में अकोमोडेशन, साथ ही साथ यहाँ के आसपास के सारी चीजों को जाकर आप एज अ टूरिस्ट एंजॉय कर पाओगे। यस, और ये एक तरह से ग्रांड प्री का गेट अवे प्राइस है जो आपको भी मिल रहा है। सो अगर आपका कोई रिलेटिव जो प्लान कर रहा है कि हम नवंबर दिसंबर में कतर थोड़ा घूमना चाहते हैं, तो उसको बताओ कि कतर एयरवे ग्रांड प्री के टाइम पर आना ज्यादा अच्छा होगा।
0: सही में यार, ये तो बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मुझे तो ना अभी भी याद है वो जो फॉर्मूला वन से जो मुझे याद आता है ना, मेरा बचपन जब मैं जवान हो रही थी ना, आई वॉज लाइक बिग फैन ऑफ माइकल शूमाकर। भाई उसको देख के ना एकदम जज्बा आ जाता था यार, क्या ही गाड़ी चलाता था वो लाल रंग की फरारी। लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे एक साइकिल लेके दे दी थी पिंक कलर की।

0: लड़कों के साथ भी यही होता था, हम बनते तो माइकल शुमाकर थे लेकिन हमें पापा दे देते चलो ये पल्सर बाइक ले लो, और ना ज्यादा माइकल शुमाकर बनने की जरूरत नहीं है, अगर तेज चलाते दिखे अगले दिन से गाड़ी की चाबी रख लेंगे। ये सबको अड़काया गया, लेकिन ट्रस्ट मी एड्रेनलिन रश जो है एकदम बढ़ जाता है जब बात आती है फॉर्मूला 1 को देखने की। एंड थैंक यू कतर, आप हमें इतने सारे एक्सपीरियंस करने देते हो।
1: एग्जैक्टली, मतलब मैं फॉर्चुनेट मानती हूँ अपने आप को कि मैं कतर आई हूँ, क्योंकि कतर रह रही हूँ मुझे ऐसी ऐसी चीजों का एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है, मुझे नहीं लगता कि अगर मैं कहीं और होती तो मुझे मिलता।
0: वो भी इतना पॉकेट फ्रेंडली,
1: इतना पॉकेट फ्रेंडली, इतना इजी पीजी, एंड आई लव इट।
0: 89.6 मिर्ची 1, ये भी तो एक्सपीरियंस है हमारे साथ। हैव फन, इट्स हॉट।

0: ड्रिवन बाय शैकमैन ट्रक्स, जबरदस्त पावर और क्लीनर एनर्जी का नया चैप्टर। शैकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स एंड बूम ट्रक्स, पावर दैट सेव्स, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कार्मेल ग्रुप।
1: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड। She is coming for the very first time.
0: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar, this 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist, Suhani Shah, live.

0: खाकी मूवी का ये गाना मेरा ऑल टाइम फेवरेट, जिसमें सुंदर सुंदर ऐश्वर्या राय और अक्षय कुमार।
1: और मुझे भी इस फिल्म में ऐश्वर्या राय, फरे भी ऐश्वर्या राय जब दिखी थी तो मूड खराब हो गया था। आप जब अजय देवगन के साथ मिल जाती है और मेरे अक्षय कुमार को खूब मारती है। फिलहाल फिल्मों से निकलकर हम बात करेंगे दिमाग के उस खेल की जो लेकर आ रहे हमारे कतर में पहली बार सुहानी शाह। यस, हम बता दें 25th ऑफ सितंबर QNCC में दी मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर फॉर दी वेरी फर्स्ट टाइम। टिकट्स अवेलेबल एट ऑल प्लेटफॉर्म्स, जाइए अर्ली बर्ड ऑफर का फायदा उठाइए। ऐसा ना हो कि जब आप सोचेंगे अब बुक कर देते हैं तब तक अर्ली बर्ड ऑफर
0: खत्म हो जाए। भाई देर ना करिए, जल्दी से बुक करिए।
1: सुहानी शाह लाइव इन कतर प्रेजेंटेड बाय आईपे,
0: एसोसिएटेड पार्टनर डेयरी क्वीन एंड पापा जॉन्स,
1: रिफ्रेशमेंट पार्टनर बलादना,
0: हेल्थ केयर पार्टनर किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर,
1: पार्टनर बाय डाइसो जापान होम्स आर अस, रेस्ट पार्टनर एब्सोल्यूट बारबेक्यू,
0: इवेंट पार्टनर्स क्यूब इवेंट्स,
1: मीडिया पार्टनर रिहाब मीडिया,
0: प्रोडक्शन पार्टनर सिम्फनी,
1: ब्रांडिंग पार्टनर ब्रांड आर्ट्स,
0: मार्केटिंग पार्टनर्स क्यू स्क्वायर्ड
1: एंड टिकटिंग पार्टनर्स टून सिटी, जहां पर अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है। जाइए टिकट्स बुक कीजिए एंड जैसे बुक कर लो हमें थैंक यू कह देना, क्योंकि जो एक्सपीरियंस आप करने वाले हो ना वो इससे पहले कभी नहीं हो पाया।
0: एक्चुअली मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हमने ऐसे बहुत सारे सिंगर्स को परफॉर्म करते देखा है, डांसिंग परफॉर्मेंसेस बहुत सारी देखी, लेकिन ये जो सुहानी शाह है ना ये एकदम अलग है यार। मतलब ये कुछ अलग एक्सपीरियंस है, हटके है भाई।
1: ये तब एक्सपीरियंस करोगे तभी समझ
0: आएगा।
1: तो भैया जल्दी कर लो एक्सपीरियंस के लिए टिकट बुक एंड 89.6 मिर्ची वन पर हमारे साथ। अपने कान बुक किए रहो, वॉल्यूम बढ़ा लो, मिर्ची
0: इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Boulder. Only on Mirchi. It's hot.
1: पूजा भट्ट, हमने सुना है कि आपके समय में इतनी पार्टियां आपके टेरेस पे होती थी, एक किस्सा तो सुनाइए यार।
2: But I remember one such party जहां पे मनोज बाजपेयी और आशुतोष राणा आए थे और राहुल बोस मेरे दोस्त थे और वो पहली बार मेरे टेरेस पे मिले थे। तो आई रिमेम्बर आई थिंक 5:30-6 बजे तक मैं वापस आई थी एंड आई सॉ इन अ कॉर्नर मनोज बाजपेयी, आशुतोष राणा और राहुल बोस, तीन एक लाइन में, मतलब ऐसे तीनों सो गए, वन हेड ऑन द अदर पर्सन शोल्डर। सो वो मैंने देखा, मैंने बोला कि वाह क्या कवर बनता है ये।
1: मनोज बाजपेयी, आशुतोष राणा एंड राहुल बोस नीड टू डू अ फिल्म टुगेदर। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
3: घर बैठे चाहिए नया कार्ड, स्मार्ट चॉइस है ओरिरु मनी कार्ड। अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर। एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल और सुनो, हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू आईफोन 17 प्रो मैक्स। लेट मत करो, ऑर्डर योर ओरिरु मनी कार्ड स्ट्रेट अवे। TNC अप्लाई।
4: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
3: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar this 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and Aasi. शाम एक स्टेज और दो कमाल। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स। द मेंटलिस्ट सुहानी शाह।

0: दिल बेफिक्रे बैनी दयाल की आवाज में तो गाना बड़ा अच्छा था, लेकिन हाँ मेरे वॉलेट के साथ भी ऐसे ही होता है, बेफिक्रे की तरह पैसे उड़ जाते हैं उड़ जाते हैं।
1: अरे लेकिन फिर भी गनीमत होती होगी, मेरे तो 15 तारीख के बाद ढूंढने पे टुकड़े भी नजर नहीं आते। हाँ जी मेरे तो हालात ऐसे होते हैं, और तुम्हारे कैसे होते हैं, खत्म हो जाते हैं रहते हैं थोड़े बहुत?
0: नहीं देखो मेरे पे मत विश्वास रखो, पैसा मेरे हाथ में टिकता ही नहीं है, और मैं सच्ची में पैसे को ना मैल ही समझती हूँ हाथ की, इसलिए मैं इसे धो डालती हूँ शॉपिंग कर करके।
1: इसीलिए लगता है किसी ने इसको बता दिया कि गौरव पैसे उधार मांगे उससे पहले दे दो, लेकिन अगर आपके पास बचे हैं तो घर भेज दो। एक कतरी रियाल के बदले मिलने वाले इंडियन रुपीस 26.20 INR है, 26 रुपए 20 पैसे भारतीय मुद्रा। वही 1 कतरी रियाल के बदले श्रीलंकन रुपीस 91.09। पाकिस्तान रुपीस की बात करें जनाब, वाहिद कतरी रियाल के बदले 76.15 पाकिस्तान रुपीस। तपाई को नेपाली रुपीस का रेट छो 41.90 का भालचा रेट रहता है, 41.90 नेपाली रुपीस का रेट छो। अगर उसके बाद हम बांधु बांग्लादेशी टाका बात करेगा दादा, एक्टा कतरी रियाल के बदले 33.62 तो 33.62। ईशा आप सवाल तुमसे, जब तुम पैसे लेती हो वादा करती हो तब लौटा देती हो कि धोखा देती हो?
0: देखो मैं पैसे लेती ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने ले लिए तो मुझे देने भी पड़ेंगे।
1: तो तुम मेरे जैसी बिल्कुल नहीं हो, मैं ले लेता हूँ तो मैं देने की सोचता ही नहीं हूँ।
0: ओह माय गॉड गौरव, नेक्स्ट टाइम मुझे मत दिखना तुम 15 तारीख के बाद।
1: 89.6 मिर्ची वाले।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: मिर्ची घड़ी में बज गए शाम के 6 और आप सुन रहे हैं शाम शानदार मस्त मौल गौरव के साथ
2: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।

0: शाम शानदार only on 89.6 मिर्ची 1 कतर में बॉलीवुड का मिर्ची वाला तड़का इट्स हॉट मिर्ची फ्रेश माल
1: लव लॉस और होप का म्यूजिकल सफर वे जुनून

0: गाने को गाया है सुबोध शर्मा ने, म्यूजिक दिया है मिथुन ने और लिरिक्स लिखे हैं सईद कादरी ने। फिल्म आवारापन 2 से सुनते रहिए बेजुनून, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: ये आवाज भूले तो नहीं ना बच्चों, अब भूलना भी नहीं क्योंकि अब इसके दिन पास आ गए। 89.6 मिर्ची 1 पर पेरेंट्स के लिए तो बहुत ही सुकून भरे पल आने वाले, क्योंकि एक बार बच्चे स्कूल गए, रिमोट पे अपना कब्जा और घर में मम्मियों को मिलेगा मी टाइम। 89.6 मिर्ची 1 पर मस्तमौला गौरव बात कर रहा है उस बैक टू स्कूल कैंपेन की, जो 2026-27 सीजन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन ने लॉन्च कर दिया है। भाई अब फाइनली घर पे थोड़ा समय तो पेरेंट्स को शांति के साथ टीवी पर अपने कब्जे के रूप में मिलेगा, वहीं बच्चों के लिए इमोशनल मोमेंट है, वो अभी तक थोड़ी देर और सोने दो और मम्मी पापा कहते थे ठीक है छोड़ो ना वेकेशन ही चल रहे, लेकिन बच्चों अब बैक टू स्कूल आ गया है, यानी कि कंधे पर बस्तों का बोझ होगा, स्कूल में पढ़ाई का लोड और शाम को लौटते ही दोस्तों से थोड़ी देर मस्ती के बाद फिर अगले दिन स्कूल जाने की होड़। तो तैयार हो जाओ, आपके लिए आपके बेस्ट डेज आर कमिंग एंड ट्रस्ट मी, आज आपको भले ही ये लोड लगता है बच्चों, लेकिन उनसे पूछो जिन्होंने आज से कई साल पहले स्कूल जाना छोड़ दिया, आज मौका मिले तो वो फिर चले जाएं। 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।
2: Authentic, original and better than our rivals.

0: Mirchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Murga, murga. La virba la murga. Mirchi, murga.
2: Mirchi.
3: It's Navid.
2: बोल रहा हूँ।
3: अगर किसी का वो जो बनाते हैं आप उल्लू, उसके लिए क्या करना पड़ेगा?
2: वो आपको मुझे बताना होगा।
3: तो मैं अभी बता दूँ?
2: एक सेकेंड, ये फॉर्म भर देते हैं। क्या नाम है आपका?
3: संजना।
2: संजना, किसका मुर्गा बनवाना है आपको?
3: अपने हस्बैंड का।
2: क्या बात कर रही है, और कोई नहीं मिला आपको?
3: फिलहाल अभी कोई और दिमाग में नहीं आ रहा।
2: अच्छा संजना, मुझे प्लीज आप ये बता देंगे कि ये इनको कितना गुस्सा आता है, ताकि मैं उसी हिसाब से इनसे बात करूँ, फिर मुर्गा बनाऊँ। बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं?
3: भड़क भी जाते हैं।
2: अरे बाप रे। तो मुझे संजना प्लीज बता देंगे किस तरह भड़कते हैं ये?
3: अब्यूजिंग वे में, थोड़ा
2: अब्यूजिंग वे में। जैसे कि कैसे?
3: आप मुझे शुरू कीजिए, फिर मैं बताता हूं।
2: ओके चलिए।
4: हेलो सर, मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ, फलाना बैंक से। सर आपको लोन देना है, दो मिनट दे सकते हैं?
3: नहीं, मेरे पास अभी टाइम नहीं है।
4: सर थोड़ा सा दो मिनट दे दीजिए यार, क्या बात जाती है आपकी? अरे शर्म किस बात की यार, हम लोन बेच रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए। सर आप एक तो तमीज से बात करिए, आप लोन लेना है ले लीजिए, तमीज से बात करिए, बदतमीज कहीं का।
2: मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं इस तरीके से किसी का मुर्गा बनाऊं। और संजना मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा था कि तुम्हारा मुर्गा बन चुका है। रेडियो मिर्ची पे।
3: मैंने अपना बनवाने के लिए फोन दे दिया था।
2: हम तो किसी का ही बना देते हैं, आपके हस्बैंड से ज्यादा हमदर्दी हो गई, किसी दिन उनका ही बनाएंगे। फिलहाल आपका बन गया है, मेरे साथ प्यार से कह दो एक बार, कुकुड़ुकू। थैंक यू।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
5: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड। She is coming for the very first time.
6: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and Aasi. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, presented by iPay.
7: Laya iPay, best action.
6: Shah live in Qatar this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and Aasi. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani

0: ऊपर वाले की इबादत के लिए अगले साल हज पर जाना चाहते हो तो कुछ आपके लिए लाया हूँ।
1: हज सीजन 2027 की इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट।
0: हाँ जी, तो हम आपको यहाँ बताना चाहते हैं कि ऊपर वाले की इबादत के लिए अगर आप जाना चाहते हो, अगले साल हज प्लान कर रहे हो, तो ये आप ही के लिए है। प्राइमरी हेल्थ केयर कॉर्पोरेशन PHCC ने हज पिलग्रिम्स के लिए मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट की सर्विसेज स्टार्ट कर दी हैं, यानी कि अब आप सर्टिफिकेट ले सकते हो कि आप हज पे जाने लायक हो कि नहीं।
1: और बड़ी बात ये कि किसी भी अपॉइंटमेंट का झंझट नहीं है, आप पूरी तरह किसी भी वीक में फ्री हैं तो जाके PHCC फैमिली मेडिसिन क्लिनिक में अपना सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं।
0: और बड़ी बात यह है, कतरी सिटीजंस और जो भी वैलिड हेल्थ कार्ड वाले रेसिडेंट्स हैं उनके लिए ये सर्विस बिल्कुल फ्री है। लेकिन अगर आपका हेल्थ कार्ड एक्सपायर हो चुका है तो ज्यादा नहीं 30 कतरी रियाल की फीस है। और

0: आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बन जाएगा। वेल, एक अच्छी चीज कि हज पर आप जाएंगे और ऐसे में आपकी हेल्थ जो है वो आपको सपोर्ट करती कि नहीं, उसी का ये सर्टिफिकेट है। एंड आई एम श्योर जब आप जाएंगे तो अपनी दुआ में हमारे नाम को भी याद रखेंगे।
1: जी हाँ, जाइए और दुआ में हमें भी याद रखिए और
0: ऊपर वाले से मानाइए कि हमारे जेब में पैसे बहुत रहे, एकदम खाली हो जाते 15 तारीख के बाद
1: और खुशियां भी बहुत सारी हों।
0: ये देखिए लड़की बात पॉइंट कमा लेती 89.6 मिर्ची वाली।
1: इट्स हॉट।

भाई घबराहट तो मेरे मन में भी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये ऐसे कैसे कर सकती है, ये हमारे दिमाग को इतना ज्यादा कैसे पढ़ सकती है स्वानिशा? मैं इस बात से बहुत नाराज हूँ कि इतना अच्छे से पढ़ ले रही है, मुझे तो बहुत घबराहट हो गई है, मैं इनके सामने आऊंगा ही नहीं। 89.6 मिर्ची 1 पर बात करो द मेंटलिस्ट स्वानिशा लाइव इन कतर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम प्रेजेंटेड बाय आईपे। यस सुहानी 25 सितंबर को हमारे कतर आ रही है। ये वो मेंटलिस्ट है जिन्होंने दुनिया भर में अपना डंका बजा रखा है और अब हमारे कतर में इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी को एक्सपीरियंस करने के लिए आपको अपनी टिकट्स बुक करानी है। टिकट्स अवेलेबल एट ऑल लीडिंग प्लेटफॉर्म्स, यानी कि जहां भी जाइए आपको ये टिकट्स मिल जाएंगी। ये सिटी पर फिलहाल ये आपको अर्ली बर्ड ऑफर के साथ मिल रही हैं। इन सब के बीच मैं आपको बता दूं कि सुहानी शाह वो छोटी सी बच्ची जिसने 7 साल की एज में स्टेज पर मैजिक शो करना शुरू किया और करते करते करते करते वो आज दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड रेनाउंड मेंटलिस्ट बन गई हैं। और वो हमारे कतर हमारा दिमाग पढ़ने आ रही है। सलमान खान का पढ़ चुकी है, आमिर खान का, विराट कोहली का, केएल राहुल का, केविन पीटरसन का, नामों की लिस्ट लंबी है। रवि शास्त्री भी खुद परेशान हो गए और कदम छू दिए लोगों ने इनके, अनु मलिक जैसे कि भैया कैसे कर लेती हो। अब ये एक्सपीरियंस करने के लिए आपको अपनी टिकट्स बुक करानी है एंड विश्वास कीजिए बहुत सारे एसोसिएट पार्टनर्स जो हमारे साथ मिलकर आए हैं उनको भी दिल से थैंक यू। यस डेयरी क्वीन, पापा जॉन्स, साथ ही साथ रिफ्रेशमेंट पार्टनर बलादना, हेल्थ केयर पार्टनर किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर, हमारे रेस्टोरेंट पार्टनर एब्सोल्यूट बारबेक्यू, इवेंट पार्टनर क्यूब इवेंट्स, मीडिया पार्टनर रिहैब मीडिया एंड पार्टनर्ड बाय डाइसो जापान होम्स आर अस, प्रोडक्शन पार्टनर सिम्फनी, प्रिंटिंग एंड ब्रांडिंग पार्टनर ब्रांड आर्ट्स एंड मार्केटिंग पार्टनर क्यू स्क्वाड, टिकटिंग पार्टनर एस सिटी स्नूनू जहां पर अभी ये टिकट्स मिल रही है। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, गो एंड बुक योर टिकट्स क्योंकि ये एक्सपीरियंस लाइफ में इससे पहले आपने कभी नहीं लिया है। ले लो, कहोगे मस्त मौला गौरव कमाल की चीज बता दी तुमने, मिर्ची इट्स हॉट।

गोल प्रेजेंटेड बाय बलाना मिल्क लबान योगर्ट एक्सपीरियंस द फ्रेश क्रीमी टेस्ट दैट कतार लव्स रिफ्रेशिंग एवरी मोमेंट विद एवरी सिप एंड स्पून पावर्ड बाय आईपे

0: जस ने सोचा था सिर्फ वाइफ क्यों, लंदन में एक गॉर्जियस गर्लफ्रेंड भी रख लूं। जस को लगा है जवानी तो इश्क होना है, पर जब पुराने रिश्ते नए सीक्रेट से टकराए तो एक लाए छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़े। एक लड़का, दो लव स्टोरीज और अनलिमिटेड केयर्स। है जवानी तो इश्क होना है। स्ट्रीम इट नाउ ओनली ऑन Z5। डाउनलोड द ऐप नाउ। ड्रिवन बाय Shackman Trucks, जबरदस्त पावर और क्लीनर एनर्जी का नया चैप्टर। Shackman हैवी ड्यूटी ट्रक्स एंड बूम ट्रक्स, पावर दैट सेव्स। डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कार्मेल ग्रुप।
1: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड। She is coming for the very first time.
0: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Tickets available in all leading ticketing platforms.

0: गौरव क्या सोच रहे हो? गौरव नहीं बट ऐसा क्या सोच रहे हो? बहुत डीप थिंकिंग में हो तुम।
1: तुम भी सुहानी शाह की तरह सोचने लगे हो क्या? वीडियोस देख रही हो उसकी तुम?
0: नहीं ऐसा तो नहीं है, लेकिन हाँ मैं काफी वीडियोस उनकी देखी हैं, लेकिन मेरे में भी थोड़ी सी क्वालिटी है। मैं भी इंट्यूशन बहुत तेज है मेरी, मेरी इंट्यूशन जो बोलती है ना वो सही हो जाती है एकदम।
1: बताओ इस वक्त मेरे दिमाग में क्या चल रहा है?
0: लड्डू पेड़े स्वीट्स
1: खाना तो चल रहा है, लेकिन आज गला साथ नहीं दे रहा इसलिए कुछ गर्म खाने का मन कर रहा है। तो लड्डू पेड़े की जगह ईशा तुम मुझे खिलाओ ना गर्मा गर्म समोसे। फिलहाल इन सब के बीच दिमाग में वाकई क्या चल रहा है ये एक इल्यूजन क्रिएट करके मेंटलिस्ट सुहानी शाह जरूर दिखाती है, और वो आ रही है अपने कतर में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। सुहानी शाह लाइव इन कतर 25th ऑफ सितंबर
0: को आ रही हैं ये, और अगर आप अपनी टिकट्स बुक करवाना चाहते हैं तो जल्दी से जाके अपनी टिकट्स बुक करवा लीजिए।
1: यस टिकट्स अवेलेबल एट ऑल लीडिंग प्लेटफॉर्म्स यानी कि प्लैटिनम लिस्ट, क्यू टिकट्स एंड हमारे टिकटिंग पार्टनर एस सिटी नूनू, जहां पर बकायदा आपको अर्ली बर्ड ऑफर मिल रहा है।
0: और क्या आप जानते हैं कि ये जो सुहानी शाह हैं ये बचपन से ही मैजिक में बहुत इंटरेस्टेड,
1: जस्ट एट द एज ऑफ 7 शी इज अ स्कूल ड्रॉप आउट, उन्होंने स्कूल छोड़ दिया
0: यार।
1: और कहा कि मैं करूंगी मैजिक, और मैजिक किया ऐसा कि आज पूरी दुनिया दीवानी है और अब उसी मैजिक को हमें यहाँ विटनेस करना है।
0: बट वही है ना यार, जज्बे की बात है, डिटर्मिनेशन अगर इंसान में आ जाए तो वो सुहानी शाह जैसा बन सकता है
1: यार। यही मेरी मम्मी भी मुझसे कहती थी कि बस डिटर्मिनेशन दिखाओ, पढ़ाई कर लो। मैं टॉपर नहीं बन पाया लेकिन मिडिल टॉपर बन गया, 60% से थोड़ा कम रह गया पर कर लिया।
0: वो बचपन में बोलते थे ना नीचे से टॉप किया, नीचे से टॉप
1: मैंने मिडिल में टॉप किया था। फिलहाल आप सुहानी शाह की टिकट्स बुक करते रहिए, हमारी पंचायतें यूं ही चलेंगी। 89.6 मिर्ची वन
0: इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: विक्रांत, गेटिंग इनटू अ कैरेक्टर, क्या आपके लिए चुटकियों का खेल है या फिर बहुत ज्यादा मेहनत लगती है?
3: नहीं यार, मेहनत तो है, मेहनत तो है, एंड आई लव इट, आई लव एक्टिंग, एंड मजा आता है अलग अलग पार्ट्स प्ले करने।
2: किसी दिन वरदाना के पूछो पापा एक्टिंग या मैं
3: ये क्या सवाल है
4: पापा बच्चे ऐसे ही सवाल पूछते हैं
5: ये थे विक्रांत मैसी ऑन मिर्ची इट्स हॉट
0: बॉलीवुड Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
6: कभी प्यार का एहसास और कभी खुद को दिया हुआ एक खूबसूरत तोहफा. Festival of Diamonds is back at Tanishq. रोज पहनने के लिए स्टाइलिश डिजाइन्स हो या किसी खास मौके के लिए स्टनिंग डायमंड ज्वेलरी, हर पीस में है तनिष्क का भरोसा और बेहतरीन क्राफ्ट्समैनशिप. यही नहीं, गेट अ फ्री गोल्ड कॉइन ऑन एवरी 3,000 रियाल्स स्पेंट ऑन डायमंड परचेसेस. तो आज ही विजिट करें तनिष्क एट लुलू हाइपरमार्केट, ईरिंग रोड एंड दोहा फेस्टिवल सिटी टुडे. Supply.
7: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
8: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. शाम एक स्टेज और दो कमाल. टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स. द मेंटलिस्ट सुहानी शाह.

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: हाय देयर, व्हाट्स अप, टेल मी।
0: सर मैं नोटिस पीरियड पे हूँ और हाथ में दूसरी जॉब भी नहीं है, क्या करूँ?
1: वेल, ये बात तुझे पहले नोटिस करनी चाहिए थी सेनोरिटा। अब सेम जॉब ना मिलेगी दोबारा।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: मिर्ची की स्टूडियो क्लॉक में टाइम हुआ है शाम के साथ और मस्त मौला गौरव के साथ आप बने हुए हैं दी शो शाम शानदार
2: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।

0: गौरव एक बात बताओ, अगर एक माशूका ऐसी मिल जाए तुम्हें जो तुम्हारा दिमाग पढ़ ले तो क्या करोगे?
1: अरे तो हम हो जाएंगे पागल आशिक।
0: पागल तो तुम ऑलरेडी हो।
1: नहीं और ज्यादा। वैसे सच बात है कि हम पागल हैं और ये मस्ती का पागल आपके साथ आ जाता है, लेकिन आज ईशा इसलिए भी आई क्योंकि उसने सुना गौरव तुम्हारा गला इतना खराब है, अकेले मत बोलो साथ में आऊंगी
0: आग में घी डालने
1: का काम करती है, तो मैंने प्लीज आ जाओ। और हम बुला रहे हैं कतर में दी मेडलिस्ट सुहानी शाह को, जिसकी बात हम कर रहे हैं कि सोचिए सच में अगर कोई माशूका ऐसी मिल जाए जो आपके दिमाग को पढ़ ले, आप उसके लिए कुछ प्लानिंग नहीं बना पाओगे, आगे मुझे इसके साथ क्या करना है ये सोच ही नहीं पाओगे क्योंकि वो आपका दिमाग पढ़ रखी होगी।
0: देखो वैसे लड़कियों की ये प्रॉब्लम रहती है, लड़कियां हमेशा यही बोलती हैं अपने हस्बैंड्स को बॉयफ्रेंड्स को कि भाई देखो अगर आपने मुझे सरप्राइज करना है तो मुझे पहले थोड़ा सा बता दिया करो कि क्या मुझे लेके देने वाले हो, क्या करने वाले हो, थोड़ा सरप्राइज बताओ मुझे।
1: सब कुछ बता दो,
0: सब कुछ पहले से बता दो,
1: छुपाओ मत मुझसे।
0: तो चलो लेकिन सरप्राइज भी चाहिए,
1: सरप्राइज भी चाहिए, लेकिन सरप्राइज बता के
0: सरप्राइज चाहिए। अरे वाह
1: ये भी कमाल है। लेकिन फिलहाल हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो ये कि इस वक्त ये टिकट आपको अर्ली बर्ड ऑफर के तहत डिस्काउंट में मिल रही है एट ऑल लीडिंग प्लेटफॉर्म्स, गो एंड बुक योर टिकट्स क्योंकि दिस विल बी वन ऑफ इट्स काइंड एक्सपीरियंस जो आप हमारे कतर में लेने वाले हो।
0: एग्जैक्टली, अपनी टिकट्स बुक करवा लीजिए, डेट सेव कर लीजिए, 25 सितंबर को आप उनको लाइव देखेंगे सुहानी शाह को, जहां पे वो अपने देखिए कर्तव्य दिखाएंगी भाई, जो दिमाग के कर्तव्य होते हैं ना वो करके दिखाएंगी आपको,
1: और आपके दिमाग चक्कर खा जाएंगे। फिलहाल टिकट्स बुक कर लो ये सारे एक्सपीरियंस के लिए और चुनरी लहरा दो, अगर आपने टिकट बुक कर लिए अपनी चुनरी लहराओ। हाँ,
0: लेट्स गो।
1: मिस यू सो मच।

0: Milci.
1: Iskabana, poskabana, sakabana. Rabana. Murga, murga. Murga. La viva la murga. Milci, murga.
2: Hello.
3: Hello, Mr. Vipul, man. से बोल रहा हूँ आपका कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए आपके मोबाइल का इनबॉक्स तो मैं अपना आदमी भेज दूँ या आप यहाँ पे आके जमा करा देंगे
2: इनबॉक्स चाहिए इनबॉक्स कैसा मतलब
3: मैं आपको वही समझा रहा हूँ एक्चुअली हमारी कंपनी अपना सर्वर चेंज कर रही है तो सर्वर में जो डेटा होता है अब वो सर्वर हटाएंगे तो सारा डेटा हमें कहीं तो रखना पड़ेगा ना तो हम आपके इनबॉक्स में रखेंगे कुछ दिन तक वो डेटा अब वो जब हमारा सर्वर नया लग जाएगा तो हम आपको इनबॉक्स आपका वापस कर देंगे तो मैं यहाँ से कंप्यूटर में फीड कर रहा हूँ आपका इनबॉक्स अपनी तरफ खींच रहा हूँ ठीक है सर
2: नहीं नहीं बात तो सुनो भाई साहब
3: हाँ बताइए
2: नहीं तो जो इनबॉक्स है मेरा वो तो मेरा अपने फोन मेमोरी में है ना
3: नहीं वो हम खींच लेंगे आप उसकी फिक्र मत करिए
2: नहीं तो आप कैसे उसको अपलोड करेंगे
3: मैं कुछ भी करूँ यार आप ज्यादा बहस करते क्यों एक तो सर्वर वो उतार रहे हैं आप मुझसे बहस कर रहे हैं
2: बहस वाली बात नहीं है मतलब मैं खुद मालूम तो करूँ ना अगर आप मेरे से कोई बात पूछ रहे हैं तो कम
3: बिल्कुल,
2: से कम मुझे
3: बिल्कुल,
2: से,
3: बिल्कुल सही कह रहे हैं
2: जा कहाँ रहा है
3: नहीं वो जा कहाँ रहा है जा यहीं रहा है आपकी कंपनी में जा रहा है और मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपको कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए अब उसमें आपको टेंशन क्या है हम आपके मैसेजेस रखेंगे उसको पढ़ेंगे सही से
2: मेरे प्राइवेट एसएमएस है उसमें मैं ऐसे किस तरह से दे दूँ उसको
3: वैसे आप बुरा मत मानना आपके मना करने से मुझे लग रहा है कि आप मैंने उसमें सारे नॉनवेज मैसेजेस रखे हुए हैं उसमें
2: यार क्या बात कर रहा
3: हूँ नॉनवेज एसएमएस क्यों रखे हुए यार आपने उसमें बेकार की बातें कर रहे हैं आप कंपनी को जरूरत है क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप उसपे मैं तो मुझे सिर्फ इनबॉक्स नहीं चाहिए मेरी बात सुनिए
2: चल
3: नहीं नहीं आपने फॉर्म भरा था सेकंड पेज पे मेरे हाथ में है रुकिए रुकिए सेकंड पेज पे लिखा हुआ है कि कंपनी आपका इनबॉक्स कभी भी ले सकती है उसमें कस्टमर को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा यहाँ तक कि आपके घर की बाल्टी आपके बर्तन आपके कपड़े तक उतरवा सकती है
2: बिल्कुल
3: क्या बात कर रहे हैं यार मेरी बात सुनिए आप पूरी हेलो
2: हेलो
3: भाई साहब आपने फोन काट दिया यार इनबॉक्स लेने की बात कर रहा था मैं फोन काट रहे हैं यार
2: फोन मत करो मैं इनबॉक्स बना दूंगा दिमाग खराब कर
3: दिया क्या क्या क्या यार बात सुनिए आप मेरी मैं आपसे सिर्फ एक बात एक विपुल मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ कोई तुम्हारा इनबॉक्स नहीं चाहिए मैंने मुर्गा बनाया है तुम्हारा तुम रेडियो मिर्ची पे हो
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट

फीफा वर्ल्ड कप 2022 का उरुग्वे वर्सेस घाना का मैच याद आ रहा है मुझे, क्योंकि इस मैच को ना मैंने 2 दिसंबर के दिन अल जनूब स्टेडियम में देखा था। मेरा पहला एक्सपीरियंस फीफा वर्ल्ड कप में इसी मैच के साथ हुआ और मैं इतना ही कहूंगा कि अब वहां पर कुछ नया होने जा रहा है। #974 अल जनूब स्टेडियम अब नई इबारत लिख रहा है। अब वहाँ 27th August को ऑफिशियली ओपन होने जा रहा है बास्केटबॉल का अरीना, और अल जनूब अरीना में हम देखेंगे कतर एंड चाइना का मैच। यस, हम आपको बता दें फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप हमारे कतर के लिए एक और बड़ी कामयाबी जो कि 2027 में होने जा रही है। ये तैयारियां एक तरह से प्री ट्रायल होंगे एंड फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप कतर 2027 के लिए ही कतर अब चाइना से 4th विंडो के तहत जो कि एशियन क्वालिफायर्स है, एंड आई एम श्योर एक शानदार बास्केटबॉल मैच देखने को मिलेगा। इस गेम को समझने के लिए भी हमारे पास मौका है एंड फीवा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप कतर 2027 भी मिडिल ईस्ट रीजन में, यस अरब कंट्रीज में हुआ, नॉर्थ अफ्रीका में हुआ, पहला बास्केटबॉल वर्ल्ड कप होगा, होने जा रही है। ये तैयारियां एक तरह से प्री ट्रायल होंगे एंड फीवा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप कतर 2027 के लिए ही कतर अब चाइना से 4th विंडो के तहत जो कि एशियन क्वालिफायर्स है, एंड आई एम श्योर एक शानदार बास्केटबॉल मैच देखने को मिलेगा। इस गेम को समझने के लिए भी हमारे पास मौका है एंड फीवा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप कतर 2027 भी मिडिल ईस्ट रीजन में, यस अरब कंट्रीज में हुआ, नॉर्थ अफ्रीका में हुआ, पहला बास्केटबॉल वर्ल्ड कप होगा।

जब फीबा का बास्केटबॉल वर्ल्ड कप हमारे यहाँ कतर में होगा। 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट। अरे टिकट्स बुक कर लो, चाइना मैच वाली हम बास्केटबॉल में भी चीयर करेंगे।

0: घर बैठे चाहिए नया कार्ड, स्मार्ट चॉइस है ओरिरू मनी कार्ड। अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर। एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल, और सुनो हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू आईफोन 17 प्रो मैक्स। लेट मत करो, ऑर्डर योर ओरिरू मनी कार्ड स्ट्रेट अवे। TNC अप्लाई।
1: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड। She is coming for the very first time.
0: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar this 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist, Suhani Shah, live.

0: मस्त मौला करो, मस्त मौला करो।
1: ओ पापा की करो, पेट्रोल खत्म ही नहीं हुंदा।
2: तो मतलब तुम भी वैसे ही करती थी जैसे मैं करता था, गाड़ी लेके घुमाया जा रहे पेट्रोल खत्म ही नहीं हो रहा।
1: देखती नहीं थी कि मम्मी है, पापा है, पापा का टकला सिर पे ऐसा जड़ा के जूम जूम जूम,
2: मतलब ब्रिज थे घर में। बिल्कुल मिलाकर हम ये बात कर रहे हैं फॉर्मूला वन के लिए। यस, फॉर्मूला वन कतर ग्रांड प्री 2026, जिसके लिए कतर एयरवेज ने बकायदा एक एक्सक्लूसिव हॉलीडे पैकेज लॉन्च कर दिया है।
3: #974974 द मोस्ट ट्रेंडिंग लोकल न्यूज ऑफ द डे।
2: यस, हम आपको बताना चाहते हैं कतर एयरवेज ने बकायदा कतर स्टॉप ओवर एक्सपीरियंस का एक जबरदस्त एयरवेज पैकेज लॉन्च किया है, जहां पर फॉर्मूला वन कतर एयरवेज कतर ग्रांड प्री 2026 आप देख सकते हो, और 3 दिन के फॉर्मूला वन की रेस टिकट्स मिलेंगी। इसके साथ ही साथ कतर के होटल में अकोमोडेशन, साथ ही साथ यहाँ के आसपास के सारी चीजों को जाकर आप एज ए टूरिस्ट एंजॉय कर पाओगे। यस, और ये एक तरह से ग्रांड प्री का गेट अवे प्राइज है जो आपको भी मिल रहा है। सो अगर आपका कोई रिलेटिव जो प्लान कर रहा है
1: अच्छा
2: कि हम नवंबर दिसंबर में कतर थोड़ा घूमना चाहते हैं, तो उसको बताओ कि कतर एयरवे ग्रांड प्री के टाइम पर आना ज्यादा अच्छा होगा।
1: सही में यार, ये तो बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मुझे तो ना अभी भी याद है वो जो फॉर्मूला वन से जो मुझे याद आता है ना, मेरा बचपन जब मैं जवान हो रही थी ना, आई वॉज लाइक अ बिग फैन ऑफ माइकल शूमाकर। भाई उसको देख के ना एकदम जज्बा आ जाता था यार, क्या ही गाड़ी चलाता था वो, लाल रंग की फरारी। लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे एक साइकिल लेके दे दी थी पिंक कलर की, यही है तेरी माइकल शूमाकर, तू इसी को बन।
2: पहले लड़कों के साथ यही होता था, हम बनते तो माइकल शूमाकर थे, लेकिन हमें पापा दे देते चलो ये पल्सर बाइक ले लो, और ना ज्यादा माइकल शूमाकर बनने की जरूरत नहीं है, अगर तेज चलाते दिखे अगले दिन से गाड़ी की चाबी रख लेंगे।
1: और क्या,
2: ये सबको अड़काया गया। लेकिन ट्रस्ट मी, एड्रेनलिन रश जो है एकदम बढ़ जाता है जब बात आती है फॉर्मूला वन को देखने की। एंड थैंक यू कतर, आप हमें इतने सारे एक्सपीरियंस करने देते हो।
1: एग्जैक्टली, मतलब मैं फॉर्चुनेट मानती हूँ अपने आप को कि मैं कतर आई हूँ, क्योंकि कतर रह रही हूँ, मुझे ऐसी ऐसी चीजों का एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है, मुझे नहीं लगता कि अगर मैं कहीं और होती तो मुझे मिलता।
2: वो भी इतना पॉकेट फ्रेंडली,
1: इतना पॉकेट फ्रेंडली, इतना इजी पीजी, एंड आई लव इट।
2: 89.6 मिर्ची वन, ये भी तो एक्सपीरियंस है हमारे साथ। हैव फन, इट्स हॉट।

0: What a track from Zindagi Na Milegi Dobara Sunaya Kisne. Hey, देखिए कैसे पीछे खे खे खे खे करके हंस रही है. नाम है इसका. लेकिन ये सच्चाई है कि जब दोस्तों के साथ मेमोरीज और ट्रिप की बात करो ना तो आपके चेहरे पे एक ऐसी खिलखिलाती हंसी आ जाएगी. माइक के पीछे हम यही बात कर रहे थे कि कैसे अपने स्कूल टाइम में दोस्तों के साथ इतनी प्लानिंग बनाई. खैर स्कूल के दोस्तों के साथ तो नहीं जा पाए लेकिन उन्हीं के साथ लाइफ के किसी और मोड़ पर फैमिलीज के साथ पिकनिक गया मैं. और मुझे आज भी याद है हम जब गोवा गए पूरा एक हफ्ते का टूर करने तो हम दोस्तों ने अपने स्कूल लाइफ में जो वादे किए थे ना वो तो पूरे किए. फैमिली कमिटमेंट के साथ भी वादे पूरे किए. जिसकी पत्नी जैसे डांट रही थी सब वैसे काम कर रहे थे. ये खूबसूरती होती है जो आप स्कूल फ्रेंड्स में पा पाते हो.
1: ये तो कुछ भी नहीं गौरव, कमिटमेंट की बात कर रहे हो ना. हम फ्रेंड्स अब जब मिलते हैं ना तो अब सबके बच्चे भी थोड़े थोड़े बड़े 5-6 साल के हो चुके हैं. किसी का लड़का है किसी की लड़की है तो अभी से ही हम रिश्ते जो है वो बनाने लगे. भाई अब जो है ना, हाँ ये मैं इसकी सास बनूंगी और तुम हमारी सास बनोगे, हमारे समधी बनोगे और ये सब रिलेशनशिप जो है वो हमारे आगे बढ़ रहे.
0: मतलब तुम लोग जो बचपन में गुड्डे गुड़िया का खेल खेलते थे खत्म नहीं हो पा रहा है. बचपन में जान
1: हम अपने बच्चे पैदा कर लिए वो गुड्डा गुड्डी हो गए हमारे लिए. उनकी शादी करा के अब हम मजे करेंगे.
0: वो बात अलग है कि अपना फ्यूचर वो अलग ही डिसाइड कर चुके हैं. तुम लोग टेंशन में मत लो. और क्लास 9th 8th 9th के बाद तो वो बात करना भी बंद कर देते हैं. फिर वो अपने हिसाब से जिंदगी जीते हैं.
1: और क्या,
0: और आप उन्हें बस गाइड कर रहे होते हैं प्लीज बेटा ऐसा कर लो
1: देखो
0: अच्छा कॉलेज मिल जाएगा.
1: वही मैं इतनी हैरान होती हूँ ना आजकल के जो बच्चों का थॉट प्रोसेस है ना दैट इज टोटली डिफरेंट. कल ही मेरी बेटी मुझसे गले आके मिली, आंखों में आंसू थोड़े से आए उसके और मुझे बोल रही है अगर आप कल को स्टार बन जाओगे ना मैं आपको बहुत मिस करूंगी.
0: वो तुम ही थी जो बताती है कि हर आदमी मरने के बाद इंसान स्टार
1: बन जाता है. और शी इज जस्ट 6 years old. आप
0: और
1: देख रहे हो
0: तुम भी स्टार बनोगी जल्दी.
1: बच्चों का क्या मेंटल लेवल है. हाँ अब वो आगे भी पूछेगी कि आप मरने के बाद ये सारी प्रॉपर्टी करोगे क्या.
0: कुल मिलाकर बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, इन्हें अच्छे से गाइड कीजिए, ये दुनिया जीत लेंगे मुझे पूरा विश्वास है. इस उम्मीद के साथ कि फिलहाल हमने आपके दिल को आज थोड़ा सा जीता. अब बस मौला गौरव जाएगा टाटा बाय करेगा
1: और मिर्ची ईशा भी मिलेगी आपको
0: वीकेंड पर.
1: वीकेंड पर यस.
0: मुझे पता है कल मतलब मेरी ड्यूटी में फिर से अपने.
1: हाँ मैं सोच रही थी कि यार तो बोलोगे कि कल भी आओगे. लेकिन हाँ कोशिश रहेगी कल मिलने की, आप लोगों से बातचीत करने की, बहुत मजा आता है.
0: चलिए जी तो बातें करते रहेंगे और मिर्ची आप यूं ही सुनते रहेंगे. मिर्ची 89.6
1: इट्स हॉट.

0: 89.6 मिर्ची 1. It's hot.
1: बज चुके हैं रात के 8. पुरानी जीन सुन रहे हैं आप मिर्ची पे.
2: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी करता है आपका इस्तकबाल। और अपनी अब तक की जिंदगी में ज्यादातर जब भी किसी को ऊपर वाले को याद करते हुए देखा है ना मैंने, तो हमेशा वो कुछ ना कुछ मांग ही रहे होते हैं। हमेशा हर किसी को कुछ ना कुछ मांगते हुए ही देखा है। तजम्मुल कलीम साहब का बड़ा खूबसूरत शेर सुना मैंने हाल में और सोचा कि आपको भी सुनाऊंगा। लिखते हैं, सूली टंगना नहीं आंदा, ओनू संगना नहीं आंदा, सूली टंगना नहीं आंदा, ओनू संगना नहीं आंदा, रब्बा तू ही रहम करे, मैनू मंगना नहीं आंदा। आए हाय क्या बात है भाई। ऊपर वाले से मांगने वाला तो हर कोई है शायद, मगर बस उसकी बनाई खूबसूरत दुनिया का शुक्रिया अदा करने वाले शायद कम। सिर्फ मिर्ची महफिल पर आपका ताशी है आपके साथ। इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी है आपके साथ और अब वक्त है
2: मिर्ची महफिल पे रूबरू।
1: कि आपका ताशी आपको रूबरू कराए हमारे आज के शायर फहमी बदायूनी साहब से। वक्त के साथ गजल के भी मौसम बदलते रहते हैं, कुछ शोरा उस मौसम के मुताबिक फसलें पैदा करते हैं और कुछ उन फसलों के लिए नई जमीनें तैयार करते हैं। 21वीं सदी में फहमी बदायूनी साहब वही जमीन तैयार कर रहे हैं जिन पर गजल की कई नई फसलें लहलाएंगी। फहमी साहब की वन ऑफ माय फेवरेट गजल्स हैं, देखें कि जाहिलों को सलाम करना है, जाहिलों को सलाम करना है और फिर झूठ मूठ डरना है। काश वो रास्ते में मिल जाए, मुझको मुंह फेर कर गुजरना है। आए हाय हाय। ऐसे ही और शायरों को जानने के लिए, गजलों नज्मों और नगमों के लिए स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल। आपका ताशी है आपके साथ। इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी है आपके साथ और एक हल्का सा डर, एक हल्की सी झिझक कुछ भी बड़ा काम करने से पहले हम सबके जीवन में होती है। ये हम सबके जीवन का एक सत्य है। राजेश कमल साहब इसी फीलिंग से डरने से बेहतर इसे एक्सेप्ट करने को बड़े खूबसूरती से रखते हैं हमारे सामने अपनी कविता में। कहते हैं, पहली बार पिता की जेब से रुपये निकालते हुए हाथ कांपे थे, पहली बार साइकिल की फुल पैडल लगाते पांव कांपे थे, पहली बार किसी स्त्री को चूमते हुए होंठ कांपे थे, पहली बार कॉन्डम खरीदते पूरा जहन ही कांप गया था। धीरे धीरे डर जाता रहा। बेहतर है कि डर को रोमांच पढ़ा जाए, पहली बार होने वाली चीजों का इंतजार किया जाए। है ना खूबसूरत, कितनी सरलता के साथ एडवेंचर के असली नेचर को दर्शा दिया राजेश साहब ने। क्या बात है। मिर्ची महफिल पे आपका ताशी है आपके साथ। इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: और ये नगमा हमारे आजकल के मौसम पे एकदम फिट बैठता है।
2: मिर्ची महफिल पे ताशी अनप्लग्ड।
1: मिर्ची महफिल पे आपका ताशी है आपके साथ और हाँ जी, मौका आ गया है कि आपको आज का पहला ताशी अनप्लग्ड जो है वो सुनाया जाए। और राशिद खान साहब मेरे बड़े पसंदीदा सिंगर, बड़े पसंदीदा क्लासिकल म्यूजिशियन रहे और ये मैं अपना दुर्भाग्य मानता हूँ कि मैं उनको इंटरव्यू नहीं कर पाया, उनसे कभी यू नो फेस टू फेस मिल नहीं पाया, बातचीत नहीं कर पाया। लेकिन ये जो नगमा है, ये जो बंदिश कह लें इसे, ये बड़ी खूबसूरत है और मेरी बड़ी पसंदीदा है। और जिस तरीके का मानसून का मौसम हमारे भारत के ऊपर छाया हुआ है उसमें बिल्कुल उपयुक्त है। इट्स कॉल्ड सजना बरसे।

ऐसे ही दिल को सुकून पहुंचाने वाले, वक्त को थोड़ी देर के लिए रोक देने वाले नगमे, गजलें, किस्से सुनने के लिए बने रहे मिर्ची महफिल के साथ। आपका ताशी है आपके साथ। इट्स हॉट।

तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना, नहीं जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं, दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे, मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम।

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: जी बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन, बता बेटा सवाल क्या है।
0: सर, मैंने 3 अलग अलग बिजनेस किए, उनके लिए मार्केटिंग भी किया, पर कुछ बिक नहीं रहा। मैं क्या करूं, कुछ सोल्यूशन बताओ ना।
1: अरे बेटा, सिंपल सा सोल्यूशन है, तू एक काम कर, दुकान ही बेच दे।
2: I'm joking.

0: 89.6 मिर्ची वन. It's hot.
1: घड़ी में राइट एंगल का इशारा हो चुका है, यानी कि रात के 9 बज चुके हैं. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स राइट हियर ऑन मिर्ची.

ये दोनों एक्टर्स ना ऑलरेडी साउथ में बहुत बड़े स्टार्स थे, लेकिन उन्हें लगता था कि शायद हिंदी इंडस्ट्री में वो इतना बड़ा मार्क नहीं बना पाएंगे। पुरानी जीन्स में हेलो हेलो वेलकम, दिस इज मी श्रेया। और आज मैं जिस फिल्म की बात कर रही हूँ ना, वो फिल्म मैं एक्चुअली मैं देखना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि उस फिल्म को देखने के बाद ना, वो कहते हैं हैंगओवर होता है, एक्चुअली मैं इस फिल्म को देखने के बाद ना मेरा मूड ऑफ होता है। तो जब भी ये फिल्म बहुत सारे यू नो चैनल्स पे आती रहती है, आई ट्राई नॉट टू वॉच दिस मास्टरपीस, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट सदमा। कमल हसन और श्रीदेवी जी ऑलरेडी साउथ के बहुत बड़े एक्टर्स थे, लेकिन हिंदी फिल्म में दोनों ने एक साथ पहली बार इसी फिल्म से काम किया था। आज इसी फिल्म की बातें होंगी श्रेया के साथ, एंड ऑफ कोर्स सदमा के बहुत खूबसूरत गाने। तो बस कहीं भी मत जाना, कम बैक राइट हियर ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची।
2: हेलो
3: मैडम, गुड इवनिंग।
2: हाय,
3: बैंक से बोल रहे हो ना? हमारी नई स्कीम आई है मैडम, ताजी स्कीम है, बढ़िया स्कीम है। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल कम।
2: तो सब्जी बेच रहे हैं या लोन के लिए?
3: पहले पहले सब्जी बेचता था।
2: अगर अगली बार फोन आ गए ना
3: मैडम, तमीज से बात करो वरना यहीं से चपेट मारूंगा सारे दांत। बात कर दो।
2: हेलो
3: मैडम, अगर ये स्कीम लोगी तो धनिया साथ फ्री दे दूंगा। वे
4: प्रीति, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि लड़कियों से ज्यादा पंगे लेने नहीं चाहिए, अपने ऊपर पड़ जाती है। यार आप रेडियो मिर्ची में इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? आपका मुर्गा बन गया
2: है।
3: मेरा आपका तो मुर्गा बन गया है।
4: प्रीति, ये जो बीप बीप हो रहा था ये बीप हटा दूं मैं? एक बार दिल्ली को सुना दूं?
2: नहीं,
4: से सॉरी।
2: प्यार
4: से बोल दीजिए कोकड़ो को।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट। शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड। She is coming for the very first time.
5: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar, this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and Aasi. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist, Suhani Shah.

सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

गुलशन ग्रोवर तो फिल्म की सिर्फ शूटिंग देखने गए थे, उन्हें क्या पता था कि उन्हें इस फिल्म का इतना इम्पोर्टेंट रोल भी मिल जाएगा। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ, और आज बात हो रही है फिल्म सदमा की। एक ऐसी फिल्म जिसका क्लाइमैक्स देखने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक ऐसी फिल्म जिसको मैं ना अगर किसी भी चैनल पे आ रही होती है मैं देख नहीं पाती हूँ। मतलब मुझे पता होता है कि इसका क्लाइमैक्स देख करके ना मेरा मूड एटलीस्ट फॉर अ कपल ऑफ डेज खराब रहेगा। हाँ जी, सो सदमा में गुलशन ग्रोवर विलन का रोल करते हैं, लेकिन एक्चुअली में उनको कभी इस रोल के लिए अप्रोच नहीं किया गया था। ये तो बाय एक्सीडेंट था कि उनको ये रोल मिल गया। अब हुआ ये कि अनिल कपूर ऑलरेडी एक कन्नड़ मूवी के लिए शूटिंग कर रहे होते हैं और सदमा की शूटिंग ना वहीं कहीं उनके ही सेट के आसपास होती है। तो अनिल कपूर श्रीदेवी से मिलने चले गए थे वहां पर। जब वहां गए तो भाई फिल्म के जो कैमरामैन थे जिनका नाम था बालू महेंद्र, उन्होंने गुलशन ग्रोवर को देख करके अनिल कपूर से कहा कि अपने दोस्त से पूछो क्या वो इस फिल्म में विलेन का रोल करेगा। और सोचिए, अनिल कपूर ने जैसे ही पूछा, गुलशन ग्रोवर तो उस समय उनके पास खास काम नहीं था, उन्होंने झट से हाँ कह दी, एंड दैट वॉज हाउ ही लैंडेड इन द रोल। पुरानी जीन्स पे सदमा के गाने होंगे और सदमा की बातें विद मी श्रेया। कम बैक राइट हियर।

0: सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
1: वेकेशन ओवर हुआ है अब जाना होगा स्कूल. लेट मॉर्निंग उठने का बंद होगा रूल. बैग्स ऑन योर शोल्डर्स, एनर्जी रखना फुल.

यही फिल्म कमल हसन और श्रीदेवी जी ने पहले तमिल में की थी। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ। सो ओरिजिनली दिस फिल्म वाज मेड इन तमिल, उसके बाद इसको हिंदी वर्जन में बनाया गया, टेकिंग अगेन द सेम एक्टर्स श्रीदेवी एंड कमल हसन। वेल आई एम टॉकिंग अबाउट द फिल्म सदमा। लेकिन आपको पता है, हिंदी वर्जन बनाते समय श्रीदेवी काफी नाराज थी, और वो भी खुद से। उनको लगा कि तमिल वर्जन में ना वो और कमल हसन बहुत सारे सीन्स को इम्प्रूव कर पा रहे थे बिकॉज दे अंडरस्टूड द लैंग्वेज, लेकिन हिंदी क्योंकि श्रीदेवी की मदर टंग नहीं थी, उनको बहुत ज़्यादा नहीं समझ में आ रही थी, तो श्रीदेवी सेट के हम बहुत सारे सीन्स को ना इम्प्रोवाइज नहीं कर पाए। जैसे डायरेक्टर बोलते गए हम बस वही करते गए, लेकिन अगर जैसा डायरेक्टर ने कहा सिर्फ उतना किया तो भी क्या खूबसूरत किया। सदमा रिमेन्स वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म्स ऑफ श्रीदेवी जी। मतलब इस फिल्म के बाद ना, अगर आप जब ये फिल्म देख लोगे तो आपको लगेगा कि श्रीदेवी कितनी मंझी हुई कलाकार थी। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, इस फिल्म की बातें और गाने चलते रहेंगे। सो डोंट गो एनीवेयर, कम बैक राइट हियर।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: अर्जुन, आलिया के बारे में एक ऐसी बात बताओ जो हमें नहीं पता।
4: मैं आपको एक बात बताऊं, लोगों ने मुझे फोन करके बोला प्लीज कांग्रेचुलेट आलिया भट्ट फॉर हाईवे, तो आई सेड मेरी भी पिक्चर लगी थी पिछले हफ्ते गुंडे सर। हाँ हाँ वो है, पर हाईवे में क्या काम किया लड़की ने?
5: पर अर्जुन ने तो हाईवे देखी नहीं है,
4: जैसे
5: तो
4: आलिया ने गुंडे देखी नहीं है। शी डजंट लाइक टू बी एंटरटेन्ड। और एक्चुअली सच बात बताऊं तो जो मैंने उसे सिखाया फाइनली शी इज बीन एबल टू इनकल्केटेड इन हर डेली लाइफ, और इतना डिसिप्लिन लाया है इसकी जिंदगी में मैंने बात करके समझा के इसके दिमाग में जो चीजें मैंने घुसाई है ताकि ये जिंदगी भर याद रख सके कि एक्टिंग इज प्राइमरी एंड इम्पोर्टेंट।
3: सम रियली इम्पोर्टेंट लाइफ लेसंस अर्जुन कपूर। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड, शी इज कमिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम।
7: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर दिस 25th सितंबर एट QNCC एंड टू एट द डबल बोनांजा ऑफ एंटरटेनमेंट। गेट रेडी टू वॉच म्यूजिक एंड डांस डुओ चरण एंड आरसी। एक शाम एक स्टेज और दो कमाल। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

द डर्टी पिक्चर विद्या बालन की याद है आपको, ये किस पे बनी थी? साउथ की सेंसेशनल एक्ट्रेस विद्या बालन पे। अब ये साउथ की एक्ट्रेस यानी सिल्क स्मिता उस टाइम पे एक्सट्रीमली पॉपुलर थी और क्राउड भर भर के जाता था सिनेमा हॉल में इनकी फिल्में देखने के लिए। तो भाई जब हिंदी फिल्म बना रहे थे डायरेक्टर बालू महेंद्र, तो उनको लगा कि उन्हें अब सिल्क स्मिता को ना हिंदी फिल्मों वालों से भी इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, हिंदी फिल्म ऑडियंस को भी दिखाना चाहिए। तो ही वांटेड टू शो समथिंग सेंसेशनल बिटवीन द यू नो स्टोरी ऑफ कमल हासन एंड श्रीदेवी जी। सो उन्होंने ना साउथ की इंडस्ट्री की ये फैसिनेटिंग यंग गर्ल सिल्क स्मिता को लेकर के आए। सो इनका तमिल वर्जन वाली जो फिल्म थी उसमें तो बहुत ही अच्छा काम किया, और उसके बाद हिंदी फिल्म में जब वो लेकर के आए, दैट वाज हर इंट्रोडक्शन, सिल्क स्मिता का इंट्रोडक्शन टू हिंदी ऑडियंस। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, सदमा की बातें चलती रहेंगी, वापस सब।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
2: जी बिल्कुल, बताइए सवाल क्या है।
1: कॉल सेंटर वालों से कंटाल गया हूँ, पूरे दिन लोन के लिए इतने कॉल आते हैं, क्या करूँ।
2: अरे तो सिंपल है ना, लोन भर दे फिर फोन ही नहीं आएगा।
3: रॉक रॉक।

0: बाल कपड़ों वाली मेम साहब।
1: कौन? मैं?
0: जी हाँ, आप ही से कह रहा हूँ। यहाँ आएंगे आप? क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम सुनीता।
0: लवली नेम।
1: थैंक यू।
0: गाएंगे आप मेरे साथ?
1: ना, डर लगता है।
0: डरने की क्या बात है, मैं आपके साथ गाता हूँ।
1: अच्छा।

अगर ये दोनों हमारे साथ गा सकते हैं तो आप सब क्यों नहीं गा सकते? Yes, 1, 2, 3, 4. La la la la la la. बस बहुत हो गया. Musicians, आप लोग मत बजाइए. Ready? 1, 2, 3, 4. La.

इस फिल्म से एज म्यूजिक कंपोजर अपनी शुरुआत की थी इलैयाराजा जी ने, और इसी फिल्म से अपना डेब्यू इलैयाराजा के असिस्टेंट बन करके पता है किसने किया था? डी ए आर रहमान। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द फिल्म सदमा, यानी श्रीदेवी जी और कमल हासन की फिल्म। इसी फिल्म से ये दोनों द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स म्यूजिक कंपोजर्स हमें मिले थे। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, इस फिल्म की बातें और गाने बहुत सारे आज लेकर के आई हूँ, तो बस कहीं भी मत जाना।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची इसका बना उसका बना सबका बना बना मुर्गा मुर्गा नफीस वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा
2: मिर्ची
3: नवीद
2: बोल रहा हूँ।
3: अगर किसी का वो जो बनाते हैं आप वो लुक के लिए क्या करना पड़ेगा
2: वो आपको मुझे बताना होगा।
3: तो मैं अभी बता दूँ?
2: एक सेकेंड, ये फॉर्म भर देते हैं। क्या नाम है आपका?
3: संजना।
2: संजना किसका मुर्गा बनवाना है आपको?
3: अपने हस्बैंड का।
2: क्या बात कर रही हैं, और कोई नहीं मिला आपको?
3: फिलहाल अभी कोई और दिमाग में नहीं आ रहा।
2: अच्छा संजना, मुझे प्लीज आप ये बता देंगे कि ये इनको कितना गुस्सा आता है ताकि मैं उसी हिसाब से इनसे बात करूँ फिर मुर्गा बनाऊँ। बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं?
3: भड़क भी
2: जाते हैं। अरे बाप रे, तो मुझे संजना प्लीज बता देंगे किस तरह भड़कते हैं ये?
3: अब्यूजिंग वे में, थोड़ा
2: अब्यूजिंग वे में। जैसे कि कैसे?
3: आप मुझे शुरू कीजिए फिर मैं बताता
2: हूं। ओके चलिए। हेलो सर, मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ, फलाना बैंक से। सर आपको लोन देना है, दो मिनट दे सकते हैं?
3: नहीं मेरे पास अभी टाइम नहीं है।
2: सर थोड़ा सा दो मिनट दे दीजिए यार, क्या बात जाती है आपकी? अरे शर्म किस बात की यार, हम लोन बेच रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए। सर आप एक तो तमीज से बात करिए, आप लोन लेना है ले लीजिए, तमीज से बात करिए, बदतमीज कहीं का। मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं इस तरीके से किसी का मुर्गा बनाऊं। और संजना मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा था कि तुम्हारा मुर्गा बन चुका है। मैं रेडियो मिर्ची पे।
3: गॉड, मैंने अपना बनवाने के लिए फोन नहीं किया था।
2: हम तो किसी का ही बनाए थे, आपके हस्बैंड से ज्यादा हमदर्दी हो गई, किसी दिन उनका ही बनाएंगे, फिलहाल आपका बन गया। मेरे साथ प्यार से कह दो एक बार, कुकड़ुकू। थैंक यू।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
4: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड। She is coming for the very first time.
5: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Tickets available in all leading ticketing platforms.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, और जब बात हो फिल्म सदमा की तो ना एक जगह चुप हो जाना चाहिए क्योंकि गाना ये आ रहा है। एंड इस गाने से, यानी इस फिल्म के गानों से इलैयाराजा जी ने अपना डेब्यू किया था, और उनके असिस्टेंट पता है कौन थे? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इट वाज नन अदर देन एआर रहमान साहब। इतना खूबसूरत गाना ये सुदास जी ने गाया। कमिंग अवर राइट नेक्स्ट सुरमई अखियों, ये गाना जो है श्रीदेवी को देख करके कमल हसन गाते हैं, और श्रीदेवी के चेहरे पे इतना इनोसेंस। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, ये गाना शुरुआत से एंजॉय करो। मैं हूँ श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
2: The mentalist Suhani Shah live in Qatar this 25th September at QNCC and to add the double bonanza of entertainment. Get ready to watch music and dance duo Charan and Aasi. एक शाम एक स्टेज और दो कमाल। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

बालू महेंद्र ने जब इस फिल्म का क्लाइमैक्स लिखा था तो उन्होंने बहुत सिंपल सा लिखा था कि कमल हसन श्रीदेवी को बस देख रहे हैं, ऐसी आंखों से देख रहे हैं, ऐसे इमोशंस के साथ देख रहे हैं कि बस अब तो मत जाना। आई एम टॉकिंग अबाउट द फिल्म सदमा, जिसका क्लाइमैक्स ओ गॉड रोंगटे खड़े कर देता है। और इसीलिए ना, जब भी ये फिल्म आती है किसी भी चैनल पे तो मैं देख नहीं पाती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि इसका क्लाइमैक्स ना मुझे 2-3 दिन तक मेरे दिल में एकदम जगह करके रहेगा, एंड यू नो आई विल फील वेरी वेरी सैड। सो बालू महेंद्र ने तो कोशिश की थी कि बस कमल हसन सिर्फ एक ग्लिम्स दे रहे हैं श्रीदेवी को, उनकी आंखों में है कि तुम मुझे छोड़ के कभी मत जाओ, और श्रीदेवी चलती जा रही है। लेकिन इट वॉज कमल हसन सेड कि नहीं, ऑडियंसिस के लिए ये सिर्फ एक ग्लिम्स, एक एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए, इसमें कुछ और होना चाहिए। एंड दैट वॉज द टाइम व्हेन कमल हसन सेड कि मैं इस रोल, इस पूरे सीन को ना इम्प्रोवाइज करना चाहता हूँ। तो जो वो ट्रेन में बैठी हैं श्रीदेवी और कमल हसन उनको उछल उछल के दिखा रहे हैं कि शैतानियाँ हम लोग करते थे, ये मस्ती हम लोग करते थे, और श्रीदेवी उनको यू नो कुछ खाने को देती हैं कि अरे भाई लगता है यू नो ही इज़ लॉस्ट हिज माइंड, इसको कुछ खाने को दे दें, ये सब कमल हसन ने सोचा था। और ये ऐसा सीन निकला जिसकी वजह से ये फिल्म आज तक जानी जाती है। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, सदमा की बातें चलती रहेंगी, बस कहीं भी मत जाना।

फिर से वो टाइम आ गया जब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बिकॉज अगला गाना इज़ अ कल्ट सॉन्ग। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ सदमा की बात हो रही है, तो वो गाना ना हो जो जब भी हम थोड़ा सा डगमगाते हैं या ज़िंदगी से नाराज़ होते हैं, निराश होते हैं, तो ये गाना सबसे पहले जहन में आता है। सुरेश वाडकर की आवाज़ है, इलिया राजा की कॉम्पोजिशन है और गुलजार साहब ने लिखा था ये। यही गाना तमिल में, यानी जब ये फिल्म तमिल में बनी थी, ओरिजिनली तो ये तमिल की फिल्म थी जिसको हिंदी में फिर से बनाया गया था, यही गाना था पुंगात्रु पुथी नाथू, कुछ ऐसे करके, मैं ठीक से शायद प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगी। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ये वाला, ए जिंदगी गले लगा ले। कौन लिख सकता था ये गुलजार साहब के अलावा, कि हमने भी तेरे हर गम को गले से लगाया। कमिंग अप राइट नेक्स्ट, मैं हूं श्रेया ऑन पुरानी जीन्स।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर 89.6 मिर्ची।

ಚತುರ ನಾರ ಅಮ ಜೋಡಗನ.

0: ಗೋಳ ಚತುರ ಗೋಳ ಬೋಲ ಯಾ ಚತುರ ಬೋಲ ಗಾ
1: ಯಕ ಚತುರನ್ನ.

श्रीदेवी की सारी फिल्मों में से सबसे बेहतरीन मानी जाती है सदमा फॉर हर एक्टिंग स्किल्स। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, और जैसे दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम, वैसे ही रोल रोल पे लिखा होता है एक्टर का नाम। एक्चुअली मैं ये रोल पहले करने वाली थी डिम्पल कपाटिया, बट एट दैट टाइम उनके पास ना बल्क में डेट्स नहीं थी इस फिल्म को देने के लिए। दो शी वॉन्टेड टू डू द फिल्म बिकॉज उनको स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई थी, तो उनको ना उस समय सागर के लिए रोप इन किया हुआ था सिप्पी साहब ने, एंड शी कुड नॉट गिव डेट्स फॉर दिस फिल्म। एंड देन केम श्रीदेवी जी, जिन्होंने इस रोल को चार चांद लगा दिए। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं ये फिल्म ना अगर किसी भी चैनल पे आ रही होती है ना, आई अवॉइड सीइंग दिस फिल्म, क्योंकि सदमा ना आपको एक सदमा दे के जाती है। इसका क्लाइमैक्स आपके साथ रहता है फॉर अ कपल ऑफ डेज। यू कीप थिंकिंग अबाउट द फिल्म, यू कीप थिंकिंग अबाउट कमल हसन, यू कीप थिंकिंग अबाउट श्रीदेवी जी। पुरानी जीन्स पे इसी फिल्म की बातें, मैं हूँ श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सका बना मुर्गा मुर्गा नफीस वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हेलो मिस्टर विपुल, मैं से बोल रहा हूँ। आपका कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए, आपके मोबाइल का इनबॉक्स। तो मैं अपना आदमी भेज दूँ या आप यहाँ पे आके जमा करा देंगे?
3: इनबॉक्स चाहिए, इनबॉक्स कैसा मतलब?
4: मैं आपको वही समझा रहा हूँ। एक्चुअली हमारी कंपनी अपना सर्वर चेंज कर रही है, तो सर्वर में जो डेटा होता है, अब वो सर्वर हटाएंगे तो सारा डेटा हमें कहीं तो रखना पड़ेगा ना, तो हम आपके इनबॉक्स में रखेंगे कुछ दिन तक वो डेटा। अब वो जब हमारा सर्वर नया लग जाएगा तो हम आपको इनबॉक्स आपका वापस कर देंगे। तो मैं यहाँ से कंप्यूटर में फीड कर रहा हूँ, आपका इनबॉक्स अपनी तरफ खींच रहा हूँ, ठीक है सर?
3: नहीं, बात तो सुनो भाई साहब।
4: हाँ बताइए।
3: नहीं तो जो इनबॉक्स है मेरा वो तो मेरा अपने फोन मेमोरी में है ना।
4: नहीं, वो हम खींच लेंगे, आप उसकी फिक्र मत करिए।
3: नहीं तो आप कैसे उसको अपलोड करेंगे?
4: मैं कुछ भी करूँ यार, आप ज्यादा बहस करते क्यों? एक तो सर्वर वो उतार रहे हैं, आप मुझसे बहस कर रहे हैं।
3: बहस वाली बात नहीं है, मतलब मैं खुद मालूम तो करूँ ना, अगर आप मेरे से कोई बात पूछ रहे हैं तो कम
4: बिल्कुल
3: से कम मुझे
4: बिल्कुल
3: मालूम
4: से होना बिल्कुल सही कह रहे हैं।
3: जा कहाँ रहा है?
4: नहीं, वो जा कहाँ रहा है, जा यही रहा है, आपकी कंपनी में जा रहा है। और मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपका कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए। अब उसमें आपको टेंशन क्या है, हम आपके मैसेजेस रखेंगे, उसको पढ़ेंगे सही से।
3: मेरे प्राइवेट SMS है उसमें, मैं ऐसे किस तरह से दे दूँ उसको?
4: वैसे आप बुरा मत मानना, आपके ये मना करने से मुझे लग रहा है कि आप मैंने उसमें सारे नॉन वेज मैसेजेस रखे हुए हैं उसमें।
3: यार क्या बात कर रहा
4: है,
3: मतलब
4: नॉन वेज SMS क्यों रखे हुए हैं यार आपने उसमें? बेकार की बातें कर रहे हैं, आप कंपनी को जरूरत है। क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप उस पर? मैं तो मुझे सिर्फ इनबॉक्स नहीं चाहिए, मेरी बात सुनिए।
3: चल
4: नहीं नहीं, आपने फॉर्म भरा था, सेकंड पेज पे मेरे हाथ में है, रुकिए रुकिए, सेकंड पेज पे लिखा हुआ है कि कंपनी आपका इनबॉक्स कभी भी ले सकती है, उसमें कस्टमर को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा, यहाँ तक कि आपके घर की बाल्टी, आपके बर्तन, आपके कपड़े तक उतरवा सकती है।
3: बिल्कुल
4: क्या बात कर रहे हैं यार, मेरी बात सुनिए आप पूरी। हेलो
3: हेलो
4: हेलो भाई साहब, आपने फोन काट दिया यार, इनबॉक्स लेने की बात कर रहा था मैं, आप फोन काट रहे हैं यार।
3: आपको से फोन मत करियो, मैं हाँ? इनबॉक्स बना दूंगा, दिमाग खराब कर दिया।
4: क्या क्या क्या क्या यार, बात सुनिए आप मेरी। मैं आपसे सिर्फ एक बात, एक बार विपुल, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, कोई तुम्हारा इनबॉक्स नहीं चाहिए, मैंने मुर्गा बनाया है तुम्हारा, तुम रेडियो मिर्ची पे हो।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

तमिल में जब ये फिल्म रिलीज हुई थी इसका नाम था मुंद्रम पिराई और लोगों का कहना है कि फ्रेम टू फ्रेम सेम फिल्म उठा करके रखी गई इन हिंदी। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, मैं बात कर रही हूँ फिल्म सदमा की, जो सबसे पहले तमिल में बनी उसके बाद इसको हिंदी में बनाया गया। सो अ लॉट ऑफ पीपल से अ लॉट ऑफ क्रिटिक्स ऑल्सो से कि ये ना ये रीमेक नाम की कोई चीज ही नहीं थी इसमें एज इट इज फ्रेम टू फ्रेम काम कराया था। और इसमें भाई तमिल वर्जन में भी ऑफकोर्स श्रीदेवी और कमल हसन थे, लेकिन हिंदी में किसी हिंदी फिल्म के लिए दोनों एक साथ पहली बार काम कर रहे थे एंड दैट वॉज सदमा। पुरानी जीन्स पे इसी फिल्म की बातें आज श्रेया के साथ होती रहेंगी। इनकेस आपको मुझे सदमा के बारे में कुछ बताना है, आई एम श्योर अगर आप रेट्रो फैन हैं आपने ये फिल्म देखी होगी, तो डू शेयर योर फीलिंग्स फेसबुक और इंस्टा पे। माई हैंडल इज RJ श्रेया विद लव, दैट्स RJ SHREYA विद लव।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
1: वेकेशन ओवर हुआ है अब जाना होगा स्कूल. लेट मॉर्निंग उठने का बंद होगा रूल. बैग्स ऑन योर शोल्डर्स एनर्जी रखना फुल क्योंकि मिर्ची लेके आ

मूवी के मेकर्स का ऐसा सोचना था कि सदमा फिल्म इतनी चलेगी नहीं। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, इस फिल्म ने तमिल वर्जन में तो बहुत कमाल किया था, लेकिन जब इसको हिंदी में बनाया जा रहा था ना, तो सबके डाउट्स थे। डाउट्स इसलिए थे क्योंकि उस टाइम पे 1980s में एक तरफ बच्चन साहब की एक्शन फिल्में आ रही थी, दूसरी तरफ काका की रोमांटिक फिल्में आ रही थी, उसके बीच में इतनी इमोशनल फिल्म जिसका इतना डिप्रेसिव एंड हो, सो द मेकर्स थॉट कि भाई फिल्म बॉक्स ऑफिस पे कमाल नहीं करेगी, व्हिच एक्चुअली हैपेंड। भाई बॉक्स ऑफिस पे बहुत ज़्यादा क्राउड उस समय नहीं आया, लेकिन हाँ, इस फिल्म ने कल्ट का स्टेटस लिया, एंड स्पेशली आज के दौर में दिस फिल्म इज अ माइलस्टोन दैट एक्चुअली श्रीदेवी जी एंड कमल हसन अचीव्ड। पुरानी जीन्स पे मैं हूं श्रेया, सदमा की बातें चलती रहेंगी, कहीं भी मत जाना।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड, शी इज कमिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम।
2: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर दिस 25th सितंबर एट QNCC एंड टू एट द डबल बोनांजा ऑफ एंटरटेनमेंट। गेट रेडी टू वॉच म्यूजिक एंड डांस डुओ चरण एंड आरसी। एक शाम एक स्टेज और दो कमाल। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ जाने का टाइम, यानी गड्डी में बैठो और हवा बहुत अच्छी चल रही है। आज हाईवे पे जाने से पहले गाड़ी के शीशे नीचे करेंगे। Alright, आज का मेरा हाईवे हेट मैं उन दीवानों को डेडिकेट करना चाहती हूँ जो अपने आप को सबसे बड़ा दीवाना मानते हैं अपने प्यार के लिए और कहते हैं
1: मुझसा नहीं
0: इस अंबर के नीचे। अगर आप ऐसे दीवाने हैं तो ये गाना आज आपको सेलिब्रेट करते हुए। रफी साहब की आवाज, मैं हूँ श्रेया, जाने का टाइम हो गया। विल सी यू टुमारो। इन केस मुझसे कुछ कहना है तो फेसबुक और इंस्टा पे आरजे श्रेया विद लव, ये है मेरा हैंडल। गुड नाइट।
1: दीवाना

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot. Mirchi. Fresh Maal.
1: इमरान हाशमी के सॉन्ग्स और प्लेलिस्ट हिट्स दोनों का रिश्ता पुराना है. उनकी अगली म्यूजिकल ऑफरिंग है ये आवारापन.

इस गाने को आवाज दी है अरिजीत सिंह ने, म्यूजिक दिया है अमाल मलिक ने और लिरिक्स लिखे हैं रश्मि विराग ने। आवारापन 2 से सुनते रहिए ये आवारापन, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ। 89.6, 89.6, मिर्ची।

0: इस गाने को गाया है और कंपोज किया है विशाल मिश्रा ने और लिरिक्स लिखे हैं राजशेखर ने। फिल्म टॉक्सिक से सुनते रहिए तबाही ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ। 89.6, 89.6,
1: it's hot.

वो कौन है जिसे मैं सुनना चाहता हूँ।

जाना कभी, ऐसा न था हाल मेरा पहले, हाल ये मेरा हुआ है अभी। वो ख्वाब है या हकीकत है, वो जो भी है